101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि और दिनांक 3 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित

0: निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला टी20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और आइए अब चलते हैं आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
2: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

वंदनवार कार्यक्रम में सबसे पहले आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती झरोखा में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी सुबह 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208। 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला का तीसरा भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति मनीषा जैन की है। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप आज शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। 7:00 सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत हम है राही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 से। 8:15 पर त्रिवेणी का प्रसारण होगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। प्रस्तुत करता है रमेश गोखले। 10:00 पिटारा में सेल्यूलाइट के सितारे। इस कार्यक्रम में सुनिए बांसुरी वादक पारसनाथ से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम होगा। 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी और 1:00 से तय करेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर के साथ सुरीले गानों का सफर। 2:00 त्रिवेणी कार्यक्रम सुनिएगा। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। 3:00 सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त है। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। 4:00 पिटारा में आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर गायत्री आहूजा से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुत करता है जुबेर खान। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर आप सुनिए संध्या रंजन। 7:00 जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष में सुनिए रागों पर आधारित फिल्म संगीत राग अनुराग कार्यक्रम में। 8:00 हवा महल में सुनिए नाटिका चिट्ठी। लेखक हैं नंदलाल पाठक और निर्देशक हैं सीबी मंडाली। 8:15 पर सुनिए चित्रलोक। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनिए जो केंद्रित है अभिनेता आर माधवन पर। प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।

11 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। झरोखा में अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 208।

भरत को चतुरंगिणी सेना के साथ चित्रकूट आते देख निषादों की भांति लक्ष्मण के मन में भी आशंका हुई कि राजपद पाकर भरत को प्रभुता का मद हो गया है और श्री राम को वन में अकेला असहाय समझ वे युद्ध करने आ रहे हैं। अतः लक्ष्मण ने भरत से युद्ध करने की ठान ली। श्री राम के चरणों की वंदना कर चरण रज माथे से लगाते हुए बोले, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, भरत ने वैसे भी हमारा कम अहित नहीं किया है और अब युद्ध करने आ रहे हैं, आखिर हम ये सब कहां तक सहन करेंगे, जबकि आप हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। अग्रज से युद्ध की आज्ञा मांगते हुए लक्ष्मण साक्षात वीर रस के अवतार दिख रहे थे। सिर पर जटाजूट और कमर में बंधा बाणों भरा तरकस, भरत का सामना करने को वो पूरी तरह तैयार हैं। उपस्थित समाज के वहां एकत्रित होने के कारण उनका हौसला और भी बढ़ गया है। मन में दृढ़ निश्चय हो गया है कि आज वो अपना सारा पिछला क्रोध अच्छी तरह प्रकट करेंगे। क्रोधित लक्ष्मण को युद्ध के लिए उद्यत देख सारा जगत भयभीत हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे तात, जो बिना विचारे जल्दी में कुछ करके बाद में पछताते हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं, फिल्म संगीत में तबले का दौर इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं हमारे अतिथि श्री रविंद्र खासनीस जी से। रविंद्र जी, जब संगीत की रचना होती है तो उसमें लय ताल का विचार करना क्यों जरूरी है?
2: देखो, सुर और ताल
1: जी,
2: ये संगीत की बुनियाद है। मतलब वो एक रथ के दो पहिए हैं और जब वो दोनों पहिए सही तरीके से चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तभी वो रथ आगे जाता है या अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। मतलब संगीत की जो मधुरता है वो सुर और ताल है। तो सुर और ताल में हम अभी तो ताल का विचार कर रहे हैं
1: जी,
2: तो ताल का जो अंग है वो है लय। अभी किसी भी गीत को हम लोग जब सुरों में ढालते हैं
1: हाँ,
2: तो वो एक गीत की तर्ज बन गई। अब वो तर्ज बनने के बाद अक्सर जो संगीतकार होते हैं वो इसका विचार जरूर करते हैं कि ये जो संगीत हमने दिया है इसको किस लय में होना चाहिए। मतलब उसका ताल कौन सा होना चाहिए और वो ताल जो है वो किस लय में होना चाहिए
1: जी।
2: तो जैसे हमारा जो काव्य है जिसकी संगीत रचना की गई है, तो काव्य की अंदर ही उसके एक लय छुपी रहती है।
1: अच्छा,
2: मतलब हर कोई काव्य जो है वो काव्य एक लय भी दर्शाता है। वो लय जो है उस लय को संगीतकार पकड़ता है। दूसरा ये है कि गाना जो है वो किस लय में अच्छा लगेगा सुनने के लिए। जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त इस बात का ज़रूर विचार करते हैं कि ये गाना गायक जो है वो किस स्वर में गाएगा।
1: अच्छा,
2: मतलब जैसे काली एक काली दो, सफ़ेद एक सफ़ेद दो, ये जो स्वर है
1: जी,
2: तो इसमें कौन से स्वर में उसका होना उचित रहेगा, ये जब विचार आता है उसी के साथ में
1: जी
2: उसका लय क्या होना चाहिए, जिसे अंग्रेजी में टेम्पो कहते हैं
1: जी।
2: तो टेम्पो ऑफ द सॉन्ग, गाने का लय कौन सी होनी चाहिए, उसका विचार जरूर किया जाता है। अभी ये लय की जो विविधता है तो वो विविधता हमको एक अलग रंग उसमें लाती है गाने में। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, आज गावत मन मेरो झूम के
1: जी,
2: ये जो बैजू बावरा फिल्म का गीत है, तो ये गीत जो है वो विलंबित तीन ताल में है। मतलब तीन ताल की जो लय है उसमें

वो विलंबित लय है। अभी दूसरा गीत है कि आए सुर के पंछी आए, सुर संगम फिल्म का ये गीत है। तो ये जो गीत है ये भी तीन ताल में है लेकिन ये मध्य लय में है। और पिछले एपिसोड के अंत में हमने जो सुना था मैं क्या जानूं क्या जादू है, वो द्रुत गति तीन ताल है। तो ये जो अलग अलग रंग आते हैं वो लयकारी जो हमने

0: श्रोताओं, तीन ताल का जो उदाहरण हम देख रहे थे, इसके लिए राग मालकांश पर आधारित सुर संगम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गायक कलाकार पंडित राजन मिश्र। रविंद्र जी, त्रिताल के कोई और अन्य आविष्कार भी हुए हैं जिसे फिल्म संगीत में इस्तेमाल किया गया?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि नाट्य संगीत की परंपरा महाराष्ट्र में रही
0: जी,
1: तो नाट्य संगीत में तीन ताल का एक रूप बदला हुआ है।
0: हाँ।
1: कैसे? अभी जो तीन ताल है वो है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। अभी ये तीन ताल जो है इसी का अद्धा
0: जी,
1: अद्धा मतलब धा, उसका एक अवग्रह के बाद में धा।
0: अच्छा,
1: तो अवग्रह जो

0: है हाँ। उससे वो होता है अद्धा। तो ये कैसे होता है, मतलब धा धिन धिन धा का रूप कैसे बदला? धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो है धा आ धिन धा धा आ, तो ये आकार है उसके बीच में। तो उसमें क्या होता है कि वजन बदल गया, उसमें कैसे धा धिन धिन धा, वो धा धिन धा धा धिन धा धा। तो ये जो बदला हुआ वजन है इसका इस्तेमाल करते हुए भी गीत पहले जैसे नाट्य संगीत में प्रचलित थे
1: जी,
0: तो फिल्मों में भी वो उस तरह के गीत आए, और अद्धा तीन गाल के गीत तो काफी अच्छे अच्छे गीत है उसमें,
1: एक निराला और सुंदर रिदम पैटर्न इसमें दिखाई दे रहा है।
0: जी जी जी।
1: तो कोई ऐसा गीत जिसमें अद्धा त्रिताल हाँ, हमें सुनने को मिले?
0: हाँ बिल्कुल है, बैया ना धरो, ये जो है दस्तक फिल्म का गाना
1: जी जी,
0: लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है जो राग चारुकेशी पर आधारित है
0: जी।

0: श्रोताओं, मदन मोहन साहब का संगीतबद्ध किया हुआ दस्तक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता जी के स्वर में। इस गीत में अद्धा तीन ताल का सुंदर आविष्कार हमने देखा और इसी के साथ आज श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना। शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की थी और संगीत से सवारा था सचिन देव बर्मन ने।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे।

के बीच हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: फिल्म पटरानी का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोलों को संगीत में पिरोया था शंकर जय किशन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आकाशवाणी मुंबई से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, अमृत कलश सुनिएगा 7:30 पर, सुर संगम कार्यक्रम आपके लिए होगा 8:15 पर और प्रणाम अयोध्या 8:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे आज की बात में विश्व साइकिल दिवस के विषय में। साथ ही होगी वार्ता, वर्तमान के वैश्विक संघर्ष का भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव, जानकारी देंगे वेद प्रकाश वेदी। इसके अलावा सुनिएगा फिल्म संगीत और समाचार पत्रों से। 9:00 कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और 9:30 पर सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 10:00 हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 11:55 पर आकाशवाणी अयोध्या से सुनेगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 साल। अवधि लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग आपके लिए होगा 12:30 पर। कुछ तुमने कहा ये कार्यक्रम होगा 1:00। 2:00 सुनेगा गीतांजलि। अंगना कार्यक्रम होगा 2:30, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा विश्व साइकिल दिवस के बारे में और आज का विशेष आकर्षण होगा फरमाइसी लोकगीत का कार्यक्रम लोक सुरमाला। युवाणी शाम 5:00, जिसमें होगी चर्चा विश्व साइकिल दिवस और ई वेस्ट को कम करने के विषय में। व्यक्ति विशेष में आप जानेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई के बारे में। साथ ही सुनेगा आकाशवाणी एट 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिखा मौर्य की बातचीत। खेल संसार पर चर्चा होगी, साथ ही जानकारी मिलेगी अत्यधिक गर्मी में कर्मचारी क्या करें। 8:30 पर लोक संगीत। शाम सुहानी 6:10 पर गूंजे स्वर गांव के 6:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। कृषि जगह 6:45, जिसमें होगी चर्चा कृषि विविधीकरण पर। भेंटवार्ता में सुनेगा ग्राम्य विकास में प्रधानों की भूमिका। वार्ताकार होंगे अमरनाथ यादव। बाजार भाव और मौसम के विषय में जानकारी मिलेगी। गीत गुंजन 8:15 पर। महफिल गजल 9:15 पर। हेलो अयोध्या 9:30 पर। तो श्रोताओं, ये थी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ

0: عبد الكلام.
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। सीबीएसई ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गयी और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीबीएसई ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीबीएसई के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
3: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में

0: 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
1: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दो दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की इंटरलॉक सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर सचिवालय RRC सेंटर लैब लाइब्रेरी ऐसे बहुत से कार्य करे गए, सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया भारत इंडोनेशिया ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबी

0: एससी द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम अमृत कलश।
4: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
5: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम अंगनामा होए वाला है का खास?
10: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
9: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर।
10: और व्हाट्सएप नंबर 830-321-9911 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
11: लोक सुरमाला, आपकी पसंद।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अमृत कलश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल के गाए इस भजन के साथ।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे भक्ति गीतों का कार्यक्रम अमृत कलश। और आई कार्यक्रम में अब अगले भजन को शामिल करते हैं, स्वर है ओम व्यास का।

0: जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: ये है आपकी अपनी आकाशवाणी, बहुजन हिताए बहुजन सुखाए, जन जन की सेवा में शिक्षा और मनोरंजन के लिए सनसनी नहीं तथ्य के लिए, लोकप्रियता और सत्य के लिए प्रसारण के गौरवपूर्ण इतिहास के 90 वर्ष में प्रवेश कर चुकी है आकाशवाणी।
4: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
5: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
4: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
5: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
4: ध्यान रहे मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
5: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
4: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
6: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश, और आइए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं लता मंगेशकर की स्वर में ये भजन।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com
4: आकाशवाणी अयोध्या से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पर आइए सुनते हैं समाचार।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।

0: आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की, भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
3: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डी के शिवकुमार बेंगलुरु के लोक भवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डी के शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नो में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफी नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने

0: पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का भी सलाह है कि जन औषधि से दवाई
0: खोजे। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट

0: मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डॉक्टर खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉक्टर रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल, अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद आपके साथ है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। और अब आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है

0: कार्यक्रम सुर संगम।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988908।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
0: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुनने जा रहे हैं कार्यक्रम सुर संगम, और कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं रूना लैला की गाई इस गजल के साथ।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वर संगम, और कार्यक्रम में चलते चलते शामिल करते हैं गुलाम अली की गाई इस गजल को।

तो दोस्तों गुलाम अली की गाई इसी गजल के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम सरसंगम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आकाशवाणी अयोध्या से प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
2: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
4: आपके संदेश,
5: संदेश से आते हैं
4: आपके गीत।
5: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
4: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें। आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303210

0: 9991 पर।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात
3: आकाशवाणी अयोध्या से। प्रणाम, अयोध्या कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त दीपिका। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रेडियो के माध्यम से हम आपसे अक्सर विशेष दिवसों की बातें करते रहते हैं, जैसे कि उन्हें हम क्यों मनाते हैं, उनके पीछे का इतिहास क्या है और उस दिवस से जुड़ी अन्य बातें। और आज है 3 जून और आज का दिन दर्ज है विश्व साइकिल दिवस के रूप में। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को साइकिल से स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रति जागरूक करना है और इसे परिवहन के एक किफायती, भरोसेमंद और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रस्ताव को बढ़ावा देने में पोलिश सामाजिक वैज्ञानिक प्रोफेसर लेजिक सिबिलस की और उनके छात्रों का महत्वपूर्ण योगदान था। साइकिल पर्यावरण संरक्षण में अपना विशेष योगदान दे सकती है, क्योंकि साइकिल बिना किसी ईंधन के चलती है जिससे कोई कार्बन उत्सर्जन या प्रदूषण नहीं होता। साइकिल सिर्फ पर्यावरण की ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य की भी मित्र है। साइकिलिंग एक बेहतरीन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है। ये वजन नियंत्रित करने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और मानसिक तनाव कम करने में मदद करती है। विश्व साइकिल दिवस 2026 का विषय है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। ये विषय इस बात पर केंद्रित है कि साइकिल चलाना किस प्रकार प्रदूषण को कम करने, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद कर सकता है। साइकिल का डिजाइन सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली है। ये लोगों को ईंधन के बिना कम दूरी तय करने में मदद करती है, दैनिक व्यायाम में सहायक है और विभिन्न आयु वर्ग और आय स्तर के लोगों के लिए एक सुलभ परिवहन विकल्प प्रदान करती है। इस दिवस को आत्मसात करके हम ईंधन आधारित वाहनों पर निर्भरता कम कर सकते हैं, स्वास्थ्य दैनिक गतिविधि को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि साइकिल की हर सवारी एक स्वस्थ शरीर और एक स्वच्छ ग्रह में योगदान दे सकती है। विश्व साइकिल दिवस परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विकास के लिए एक व्यवहारिक समाधान के रूप में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस सरकार और समुदायों को साइकिल के अनुकूल सड़कें, समर्पित साइकिल लेन और सुरक्षित परिवहन प्रणालियां बनाने की भी याद दिलाता है। साइकिल चलाना केवल एक मनोरंजक गतिविधि नहीं है, ये स्वच्छ और स्वस्थ समुदायों के निर्माण का एक शक्तिशाली साधन भी है। नियमित साइकिल चलाने से छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और बुजुर्गों में सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है। तो आइए आज भी हम सब मिलकर मनाते हैं विश्व साइकिल दिवस।

0: तो दोस्तों ये गीत था कैलाश खेर की आवाज में फिल्म सात चक्के से, और अब हम प्रणाम अध्याय कार्यक्रम के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में वार्ता, वर्तमान के वैश्विक संघर्ष का भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव। जानकारी दे रहे हैं वेद प्रकाश वेदी।
1: आज की वैश्विक संलग्नता में युद्ध, व्यापारिक तनाव और ऊर्जा संकट भारतीय क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान वैश्विक संघर्ष का भारतीय क्षेत्र के व्यापार पर पड़ने वाले प्रभावों की। चूंकि भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला बड़ा व्यापारिक देश है, इसलिए अधिकतर स्थितियों में वैश्विक संघर्ष के कारण यहाँ का व्यापार घाटा बढ़ता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में यह घट भी जाता है। वैश्विक संघर्ष के कारण तत्समय समुद्री मार्ग बाधित होते हैं, आपूर्ति श्रृंखला टूटती है और आयात महंगे हो जाते हैं। इसका सीधा असर भारतीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। वर्तमान वैश्विक संघर्ष ने भारतीय क्षेत्र में ऊर्जा संकट उत्पन्न किया है, लेकिन पूरी तरह से गहरा ऊर्जा संकट नहीं। वर्तमान वैश्विक संघर्ष ने गंभीर दबाव और आंशिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न की है। संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें $70 से बढ़कर $95 से $100 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। कुछ समय तक तो यह वृद्धि 20% तक दर्ज की गई। इसका असर ये रहा कि भारतीय क्षेत्र के आयात बिल, थोक मूल्य सूचकांक व महंगाई पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उल्लेखनीय है कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 88% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से लगभग 40 से 45% हिस्सा खाड़ी या मध्य पूर्व के देशों जैसे इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आयात करता है। पहले यह हिस्सा 60% से अधिक हुआ करता था, लेकिन अब घट गया है क्योंकि रूस से सस्ता तेल आयात विशेषकर 2022 के बाद बढ़ा है। इसके साथ ही अन्य देशों से भी आयात बढ़ाया गया और भारत ने उल्लेखनीय रूप से ऊर्जा विविधीकरण नीति अपनाई। फिर भी खाड़ी क्षेत्र अभी भी सबसे बड़ा एकल स्रोत बना हुआ है। इसी प्रकार भारतीय क्षेत्र अपनी आवश्यकता का लगभग 60 से 65% LPG या रसोई गैस आयात करता है। कुल आयातित LPG का लगभग 80 से 90% हिस्सा खाड़ी देशों से आयात करता है। इस प्रकार

कच्चा तेल हो या रसोई गैस, इनके आयात की अधिकतर आपूर्ति हार्मुज जलडमरू मध्य, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, से होती है। यहाँ से विश्व का 20% तेल गुजरता है। भारतीय क्षेत्र के लिए यह समुद्री मार्ग बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। वर्तमान वैश्विक संघर्ष से यह समुद्री मार्ग सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। वैश्विक तेल आपूर्ति में लाखों बैरल प्रतिदिन की कमी हुई और 190 मिलियन बैरल स्टॉक घटा। इन सब का भारतीय क्षेत्र पर यह प्रभाव पड़ा कि सरकार को रूस से वैकल्पिक तेल खरीदना पड़ा और अप्रैल 2026 के दूसरे सप्ताह में सरकार ने लगभग 4 मिलियन बैरल ईरानी कच्चा तेल आपात स्थिति में खरीदा। यह घटना करीब 7 साल बाद यानी 2019 के बाद पहली बार हुई। यह खरीद वर्तमान वैश्विक संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज संकट के कारण हुई आपूर्ति कमी के चलते की गई। वर्तमान वैश्विक संघर्ष का भारतीय क्षेत्र की खाद्य सुरक्षा पर प्रत्यक्ष बड़ा संकट नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष दबाव के रूप में अस्पष्ट प्रभाव पड़ा है। जैसे भारत अपनी उर्वरक जरूरत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, लगभग 40% यूरिया व फास्फेट खाड़ी क्षेत्र से आता है। हार्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक यूरिया का लगभग 50% परिवहन होता है। वर्तमान वैश्विक संघर्ष अगर आगे और अधिक दिनों तक जारी रहा तो अधिक संभावना है कि भारतीय क्षेत्र में उर्वरक आपूर्ति बाधित होगी, कीमतें बढ़ेंगी और फसल उत्पादन घटेगा। भारतीय क्षेत्र कुछ खाद्य वस्तुओं के लिए ईरान पर निर्भर है, विशेषकर कुल बादाम आयात का लगभग 38% आयात ईरान से होता है। वैश्विक संघर्ष के कारण ये आयात बाधित होंगे और बाजार में सस्ते फलों की कमी होगी, लेकिन फिलहाल खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय क्षेत्र सुरक्षित है, क्योंकि हाल के वर्षों में रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन, भारतीय खाद्य निगम का पर्याप्त बफर स्टॉक और आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली जैसे सकारात्मक तत्व मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से तत्काल खाद्य संकट नहीं हुआ, लेकिन अप्रत्यक्ष दबाव स्पष्ट रूप से बढ़ा है। इसी तरह खाद्य तेल आपूर्ति पर प्रत्यक्ष संकट नहीं है, लेकिन आपूर्ति में बाधा, कीमतों में वृद्धि और आयात में गिरावट के रूप में स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। वर्तमान वैश्विक संघर्ष के कारण भारतीय क्षेत्र से होने वाले निर्यात पर शिपिंग बाधा, बढ़ी लागत और वैश्विक मांग में कमी के कारण नकारात्मक प्रभाव देखा गया, लेकिन ओवरऑल भारत के निर्यात पर मिश्रित प्रभाव देखा गया। जहां मध्य पूर्व को निर्यात में 3.5 अरब डॉलर की गिरावट और जेम्स ज्वेलरी जैसे क्षेत्रों में कमी आई, वहीं पेट्रोलियम निर्यात में वृद्धि तथा अमेरिका जैसे बाजारों से मांग बढ़ने से कुल निर्यात पर सीमित प्रभाव पड़ा। खाड़ी क्षेत्र में लगभग 80-90 लाख भारतीय रहते हैं। वर्तमान वैश्विक संघर्ष के कारण मिसाइल, हवाई हमलों का खतरा, कार्यस्थलों पर अनिश्चितता के साथ साथ प्रवासियों का वेतन और रोजगार प्रभावित हुआ है। भारतीय क्षेत्र को हर साल लगभग 125 अरब डॉलर रेमिनेंस या प्रेषण प्राप्त होता है। खाड़ी क्षेत्र इसका बड़ा हिस्सा देता है। वर्तमान संघर्ष के कारण इस रेमिटेंस के कम होने का खतरा बना हुआ है। वर्तमान वैश्विक संघर्ष के दौरान भारत द्वारा यद्यपि कोई बड़ा आधिकारिक निकासी अभियान शुरू नहीं किया गया, लेकिन भारत सरकार ने आवश्यक तैयारी बनाए रखी। इस तरह के वैश्विक संघर्ष विदेश नीति को भी प्रभावित करते हैं। वर्तमान वैश्विक संघर्ष के संदर्भ में भारत की रणनीति
संतुलित कूटनीति की रही है।

0: भारत ने युद्ध में शामिल सभी पक्षों से अच्छे संबंध बनाए रखा है, किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है, शांति और संवाद की अपील की है। यही भारत की नॉन अलाइनमेंट अप्रोच टू मानी जाती है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, अर्थात वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को बनाए रखा है। इस प्रकार यद्यपि वर्तमान के वैश्विक संघर्ष ने भारतीय क्षेत्र को कमोवेश प्रभावित किया है, लेकिन भारत एक मजबूत और उभरती हुई शक्ति है। संतुलित विदेश नीति, आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास और नवाचार के माध्यम से भारत इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें वैश्विक घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उनका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है।
1: प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम में आप सुन रहे थे वार्ता, वर्तमान के वैश्विक संघर्ष का भारतीय क्षेत्र पर प्रभाव। जानकारी दे रहे थे वेद प्रकाश उवेदी। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ विज्ञापन।
2: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
3: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा, आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
7: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
6: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
7: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
6: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, यह आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
7: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, और अब बारी है उन खबरों की जो हम आपके लिए लेकर आते हैं समाचार पत्रों से। तो समाचार पत्रों की कुछ खबरें आज की इस तरह से हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है। पहले ये तिथि 31 मई निर्धारित थी। यह विस्तार संबद्ध महाविद्यालयों के अनुरोध पर किया गया है। अगली खबर है समाचार पत्रों से ही आपके लिए। रामनगरी में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। रामपथ पर पुराने पोस्ट ऑफिस से श्रीराम जन्मभूमि और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक के मार्ग को नो वेंडिंग जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में संचालित ठेले, खोमचे और अन्य अस्थायी दुकानें हटाई

और अन्य अस्थायी दुकानें हटाई जाएंगी, जिससे फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त होंगे और आवागमन सुगम बन सकेगा। बैठक में तय किया गया कि नो वेंडिंग जोन से प्रभावित पटरी दुकानदारों का पहले सर्वे कराया जाएगा। इसके साथ ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नए वेंडिंग जोन विकसित कर व्यवस्थित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब जिला अस्पताल को मिले हैं 2 नए ईएनटी सर्जन, जिससे कि अब ऐसे व्यक्ति जिन्हें नाक कान या गला से संबंधित कोई समस्याएं होंगी, वो हमारे जिला अस्पताल में जाकर ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और गीत आपके लिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से हम सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या, और जैसा मौसम चल रहा है इस तरह के मौसम में हमें अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, हीट वेव से खुद को बचाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही हमें खुद पर भारी पड़ सकती है। जो भी चेतावनियां हमारे प्रचार माध्यमों के से मिल रही हैं हीट वेव के संबंध में, हम उन्हीं सभी चेतावनियों पर ध्यान दें। हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना के लक्षणों जैसे कि कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, उबकाई, घबराहट, धड़कन और सांसों में तेजी, मूर्छा आदि को पहचानें। अगर किसी भी लक्षण और हीट रैश, हीट क्रैम्प का अनुभव हो तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हमें ये पूरा प्रयास करना है कि हम खुद को हाइड्रेटेड रखें, यानी कि शरीर में जल की कमी ना होने पाए। अधिक से अधिक पानी पीजिए, यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी पीजिए। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाएं। ORS, घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की ज्यादा से ज्यादा मात्रा वाले मौसमी फल जैसे कि तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, इन सभी फलों का प्रयोग जरूर अपने खान पान में करें। तली भुनी चीजें कम खाएं, लेकिन सलाद का इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए। शरीर को ढककर रखिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए। अगर आप खुले में काम करते हैं तो धूप से बचने के लिए शरीर को ढककर रखना बेहद जरूरी है। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा, जो भी आपके पास हो उसका उपयोग जरूर करिए। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा पहने और पैरों के बचाव के लिए जूते या फिर चप्पल का प्रयोग जरूर करें। प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपको अपने कार्यालय के अंदर ही रहना पड़े। उचित वायु संचरण वाले शीतल स्थानों पर रहें। सूर्य की सीधी रोशनी और शुष्क हवा को रोकने के लिए उचित प्रबंध करें। अपने घर को ठंडा रखें। दिन में खिड़कियां, पर्दे और दरवाजे बंद रखें, विशेषकर घर और कार्यालय के उन क्षेत्रों में जहां सूरज की सीधी रोशनी पड़ती हो। घर या कार्यस्थल से बाहर किए जाने वाले कार्यों को सुबह और शाम को करने की यथासंभव कोशिश करें। शाम और रात के समय घर और कमरों को ठंडा करने के लिए इन्हें खोल दें। जानवरों को छायादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त पीने का पानी दें। जी हाँ बिल्कुल, हमें जानवरों की भी देखभाल करनी है। हमारे आसपास अगर हमारे घर में पालतू जानवर हैं उनकी भी, और जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं उनकी भी, क्योंकि वो अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों, ये वो कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बरत कर हम हीट वेव में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और इस मौसम के कष्ट को थोड़ा सा कम जरूर कर सकते हैं।
4: प्रणाम अयोध्या।
3: आकाशवाणी अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर, और अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम, आपके संदेश आपके गीत।
5: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
6: बिना सुन, बिना दर्द, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी।
5: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
6: फोन नंबर 91-61-877-347।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
9: Hello.
10: Hello. No. Telephone number.
11: My number is
5: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से, और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें

0: मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
1: आकाशवाणी अयोध्या से कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम कार्यक्रम में शुरू करते हैं उन संदेशों को पढ़ने का सिलसिला जो आपने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं। तो सबसे पहला संदेश है मित्रनगर बीच शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे का। और हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म आन मिलो सजना का गीत। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म आन मिलो सजना से ये गीत।

आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं व्हाट्सएप पर भेजी गई आपकी फरमाइशों को। और कार्यक्रम में अगली फरमाइश है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा। और हमारे सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म माँ का गीत। तो आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज को। फिल्म का नाम है माँ।

दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत और अगली फरमाइश को हम शामिल करते हैं अयोध्या मऊ शिवाला से। फरमाइश करने वाले हमारी श्रोता हैं श्वेता यादव और लवी यादव और हमारी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म क्या दिल ने कहा का गीत। तो आइए अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म का नाम है क्या दिल ने कहा।

0: शिकायतें टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जो आधारित होता है व्हाट्सएप पर आई फरमाइशों पर, जिसका नाम है आपके संदेश आपके गीत। और आइए अब कार्यक्रम में शामिल करते हैं अगली फरमाइश को, जो है फिल्म तेरी मेहरबानियां के गीत के लिए। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं चीकू भाई, सद्दाम हुसैन, अजीम भाई, जिला बलसाड, वापी, गुजरात से। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम में अब शामिल है शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज। फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ।
1: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
0: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
1: जी हाँ, और वो है योग।
0: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
1: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
0: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
1: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
0: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
1: योग करिए, निरोग रहिए।
2: सुना थे सखी, सुना थे कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास?
3: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुना थे। अब फरमाइशी लोकगीत, लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
2: हाँ, जहाँ ज्यादा से सखी जुड़ सकती अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कई सकती फरमाइश हर

0: बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत, और कार्यक्रम में चलते चलते शामिल करते हैं एक और फरमाइश को, जो है फिल्म सौदागर के गीत के लिए। और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं कपिल यादव, सुखदेव यादव, खुशबू यादव, विवेक यादव, सुनील, राहुल, और आप सभी ने हमें ये संदेश भेजा है ग्राम दत्रीपुर पोस्ट जिला जौनपुर से। तो आइए कार्यक्रम में आप शामिल करते हैं आप सभी की पसंद पर आशा भोसले की आवाज में फिल्म सौदागर से ये गीत।

0: अयोध्या से अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
3: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
2: अब ECHS से इम्पैनल्ड। आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज।
3: आयुष्मान भारत योजना पंडित

0: दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
1: कैशलेस इलाज। आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या। कॉल करें 6386907006।
2: आकाशवाणी अयोध्या लाया है आपके लिए एक सुनहरा मौका।
3: भेजिए फेसबुक पेज पर अपने सुविचार, शायरी, कोट्स
2: या वो लाइंस जो हो आपको पसंद,
3: और साथ में अपना नाम, पता
2: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
3: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
4: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
5: दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सभी के साथ लेकर हाजिर है आपकी दोस्त दीपिका, आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और दोस्तों, बिल्कुल आपका समय बहुत कीमती है और आप लगातार हमें नंबर डायल कर रहे हैं, तो हम आपका समय किसी भी ऐसी वैसी बात में बर्बाद नहीं करेंगे। बिल्कुल आपकी फोन कॉल को रिसीव करेंगे और आपसे कहेंगे हेलो।
6: हेलो
5: जी, क्या नाम है आपका?
6: नमस्कार।
5: नमस्कार, क्या नाम है आपका, कहाँ से बातें कर रही हैं आप? सपना सिंह जी, अयोध्या से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, बातें तो हमें करनी है, ये बता दीजिए गाना कौन सा सुनवा दें आज आपको?
6: मैम, किस्मत मूवी का।
5: चलिए, आपको हम किस्मत मूवी का सुनवा देंगे। ये बताइए सपना, की किस्मत में कितना यकीन रखती हैं आप?
6: पूरा यकीन रखती हूँ, जितना कि भगवान में यकीन है।
5: मतलब बराबर वाला मामला चल रहा है कि भगवान ऊपर है, किस्मत नीचे है, क्या है मतलब?
6: नहीं, पहले भगवान है, फिर किस्मत है।
5: चल, तो ये बताइए कि कभी कुछ ऐसा फील हुआ कि मतलब कुछ काम ऐसा था बिगड़ने वाला था, लेकिन आपको लगा कि आपकी किस्मत की वजह से बन गया वो?
6: मैम, अगर भगवान से सच्ची, अगर सच्चा प्यार है ना
5: जी,
6: तो वो इंडिकेट कर देते हैं, पर वो समझना अपना काम होता है।
5: चलिए, ये बात अच्छी आपने कही कि अगर हमें एक जो सर्वोच्च सत्ता होती है उसमें अगर हमें यकीन है, सच्चा यकीन है, तो वो हमें गाइड करती ही रहती है।
6: भगवान हमेशा इंडिकेट करता है, अच्छा होने वाला होता है, गलत होने वाला होता है, बट वो कोई समझ नहीं पाता तो अलग बात है, अगर समझ या समय रहते ही तो कभी गलत नहीं होगा।
5: बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं कि इंडिकेशन मिलते रहते हैं हमें, दिशा निर्देश ऊपर से मिलते रहते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं कभी कभी। और अगर ये भी सही है कि अगर हमें भगवान में पूरा भरोसा है तो वो हमें कुछ गलत करने देंगे ही नहीं।
6: नहीं,
5: चलिए और सपना बताइए।
6: वाला गाना रहेगा छल्ला पवारे माही।
5: अच्छा, आपने तो गाने की भी फरमाइश कर ली। चलिए और बताइए, हाँ, क्या करती हैं आप?
6: मूवी बता दिए मैम। ठीक मैम, सुनिए
5: जी।
6: हेलो सहेली, जो सैटरडे को आता है वो सारी ऑल मैम को ये गाना डेडिकेट है और आपको।
5: थैंक यू आपके इस प्यार के लिए, और आपने इतना खूबसूरत गाना चुना, तो चलिए हम वो प्ले करते हैं आपके लिए, और आपके फोन कॉल का हम दोबारा इंतजार जरूर करेंगे।
6: ठीक है मैम, नमस्कार।
5: नमस्ते।

0: तो दोस्तों प्रोग्राम की बिल्कुल एक एनर्जी वाली शुरुआत हो ही चुकी है. बहुत ही खूबसूरत गाना था, बहुत ही खूबसूरत आवाज थी हमारे पहले कॉलर की. और अब देखते हैं कि हमारे साथ दूसरे कॉलर के रूप में कौन जुड़ा है. हेलो जी, नमस्ते. हेलो, लगता है कि हमारी दूसरी कॉल जो थी वो ऑफ एयर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं. हेलो.
1: हेलो, नमस्कार.
0: नमस्कार, कहाँ से बातें कर रहे हैं आप, नाम बता दीजिए अपना.
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से.
0: राकेश जी शिमला से, इस गर्मी के मौसम में ना बस ये शिमला का नाम ही ठंडक दे जाता है. गाना कौन सा सुनेंगे आज आप?
1: जी आज मुझे गाना सुनना है दिल का क्या कसूर, गाने की बोले गा रहा उसमें फिल्म में.
0: जी बिल्कुल, आप इस महफिल में गा सकते हैं, आपकी आवाज तो शामिल हो ही गई है. ये बताइए कि क्या करते हैं आप?
1: हम तो सेब की बागवानी करते.
0: ओहो, तो अभी कैसे चल रही है बागवानी?
1: अभी तो फूल आए तो अभी जुलाई तक देखते हैं आ जाएंगे.
0: अच्छा, तो कब तक फल एकदम लग जाएंगे सेब के?
1: मतलब जुलाई तक सेब बड़े बड़े फल लग जाएंगे.
0: अच्छा, कैसा लगता है? अभी आपने अपने मतलब बगीचे से तोड़ के सेब खाए अभी?
1: बिल्कुल, हम तो खाए कई बार खाए.
0: आपको मेरा क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा ना, लेकिन अब मेरे लिए तो ये ख्वाबों वाली बातें हैं ना, तो पूछना बनता है कि कैसे लगता होगा अगर हम खुद सेब के बगीचे में खड़े हों.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, मैं समझता हूँ कि आपको लगता बाकी जो कुछ आप ताजे ताजे सेब खाते तो हम तो भाई खा लेते सेब कभी बगीचे से तोड़ के.
0: चलिए तो अच्छा, कभी खरीद के भी खाए कि बस वही बगीचे वाले तोड़ के खा लिए? बिल्कुल सही बात है, जो बिल्कुल खजाने पे बैठा हो तो उसे खरीदने की क्या ही जरूरत है. और बताइए क्या करते हैं आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: हेलो, हाँ राकेश जी, मैंने पूछा कि क्या करते हैं आप?
1: कैसे
0: क्या करते हैं आप?
1: बस घर पे रहते हैं और अपने जो है बगीचे की देखभाल करते रहते हैं.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और आकाशवाणी अयोध्या सुनते रहते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ, और खासकर जो है आपका जो युवा संवाद आता है युवा में, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ.
0: चलिए अच्छा, आप वहाँ से पार्टिसिपेट भी करते रहते हैं?
1: जी जी जी, वहाँ से भी मैं पार्टिसिपेट करता रहता हूँ.
0: ये तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ और नया ऐड होना चाहिए युवा साथियों के लिए क्या उस प्रोग्राम में?
1: युवा साथी के लिए नया ऐड तो सभी अच्छा है, लेकिन जो युवा संवाद है जैसे कि हर गुरुवार को होता है
0: जी,
1: तो कम से कम 3 दिन होना चाहिए ताकि युवा को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले.
0: अच्छा, मतलब आपको लगता है कि उसका समय और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए?
1: जी जी जी जी, और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि और युवा जुड़े और अच्छा लगे. कम से कम
0: बिल्कुल
1: 5 से 5:30 तक तो कम से कम 1 घंटे का कम से कम जरूर होना चाहिए.
0: चलिए बिल्कुल, तो आपके ऐसे जो मतलब राय होती है हम उसको बिल्कुल कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं. तो आपने हमें कॉल किया उसके लिए धन्यवाद, और आपकी का फरमाइश किया हुआ गीत आपके रेडियो सेट पर.
1: जी जी.

0: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
1: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कहते हैं अगर अपने मन की हो जाए तो वो बहुत अच्छा, लेकिन अगर अपने मन की ना हो तो वो और भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो होता है फिर ऊपर वाले के मन की। हेलो
2: जी। जी नमस्ते।
1: नमस्ते, क्या नाम है आपका, कहाँ से बातें कर रहे हैं आप?
2: जी मेरा नाम विजय प्रताप है, ग्राम औरंगाबाद पड़ता है मेरा, जिला बस्ती।
1: जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। और गाना कौन सा सुनेंगे आज?
2: जी ये फिल्म का नाम है सौतन की बेटी और गाने का बोल है हम भूल गए हर बार।
1: चलिए आपको हम यही गीत सुनवा देंगे। क्या करते हैं आप?
2: जी अपने मतलब ड्राइविंग का काम है।
1: अच्छा, ड्राइविंग का काम करते हैं आप?
2: जी।
1: चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि जब किसी को किसी की मंजिल पे पहुंचा देते हैं तो आपको कैसा लगता है?
2: जी जी बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में किसी को कोई जल्दी थी और आपकी गाड़ी कुछ खराब हो गई, उसकी वजह से उसे लेट हो गई हो और आपको कुछ सुनना पड़ा हो?
2: जी जी मतलब ऐसा मतलब एक बार मतलब मैं उदयपुर राजस्थान से आ रहा था।
1: जी
2: जी। तो ये रास्ते में जो लिपस्टिक का पेड़ होता है ये मतलब रेल मतलब था, इससे मतलब पूरा रेल ही जाम हो गया था, इससे 2 घंटा ट्रेन लेट हो गई थी।
1: अच्छा, तो फिर जो भी कस्टमर थे उन्होंने आपकी समस्या को समझा कि नहीं समझा?
2: जी जी सब समझे, सब बहुत परेशान है, सबने मदद।

0: करके उसको निकाला हमने।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि समस्याएं तो आती रहती हैं लेकिन कभी भी उनसे घबराना नहीं चाहिए, हमें उनके समाधान पे जोर देना चाहिए। तो चलिए विजय प्रताप जी, आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका गाना हम प्ले कर दें। चलिए, थैंक यू।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: तो दोस्तों आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। हेलो,
2: नमस्ते।
1: क्या नाम है आपका और कहाँ से बातें कर रही हैं आप?
2: ज्योति मौर्य बोल रहे हैं अयोध्या।
1: अयोध्या से बातें कर रही हैं ज्योति जी। और गाना कौन सा सुनेंगी आज?
2: जिगर फिल्म का सुनेंगे।
1: जिगर फिल्म का कौन सा गाना?
2: पहली बार सलाम लिखा मैंने खत महबूब के नाम लिखा।
1: अच्छा, और बताइए ज्योति जी क्या करती हैं आप?
2: जी मैं हाउसवाइफ हूँ।
1: हाउसवाइफ हैं, तो घर के काम वाम निपट गए आपके?
2: जी मैम, सारा

0: काम हो गया।
1: सारा काम निपटा लिया आपने? अभी तो बस 10 बजे हैं। कितने बजे उठ जाती हैं आप?
0: नहीं मैम, अभी कपड़ा धुला है और तो खाना पीना हो गया सारा।
1: अच्छा, किचन वाला काम हो गया।
0: हाँ मैम।
1: अच्छा, तो घर में बताइए, आप इतनी सारी मेहनत करती हैं, घर में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट आपको कौन करता है, सबसे ज्यादा आपकी तारीफ कौन करता है?
0: मम्मी पापा करते हैं।
1: अच्छा, आपकी तारीफ सबसे ज्यादा

0: अच्छा, आपकी तारीफ सुन रहे मम्मी मम्मी पापा होते ही ऐसे ना, उन्हें अपने बच्चों में हमेशा अच्छाइयां ही दिखती हैं, क्यों ज्योति? अरे इसे धीमे धीमे बोली, अगर सबने सुन लिया तो लोग कहेंगे हम लोग ऑन एयर क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली क्या होता है ना ज्योति, कि कभी कभी ना कुछ लोग कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते, ये ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है ना। हाँ, अगर आपने इस चीज को मतलब ऑब्जर्व किया होगा तो आपने पाया होगा कि कभी कभी आपके हस्बैंड आपसे बहुत कुछ कहना चाहते होंगे लेकिन वो नहीं कह पाते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ
1: रहता।
0: चलिए कम से कम आपने इस चीज को समझा तो, और हम बाल बाल बच गए, आप हम झगड़ा लगवा नहीं पाए बिल्कुल भी। चलिए तो भाई, आपने ज्योति आपने कॉल किया और इतनी प्यारी बातें के लिए उसके लिए थैंक यू, और आपके लिए हम गाना प्ले कर दें। चलिए ज्योति, हमें कॉल दोबारा जरूर कीजिएगा।

0: तो दोस्तों, आकाशवाणी अयोध्या से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या, और अब देखते हैं कि चलते चलते हमारे प्रोग्राम में कौन से कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका और कहाँ से बातें कर रहे हैं आप?
1: हमारा नाम है दीदी राजेंद्र कुमार, मैं ग्राम डेरा मुंशी पोस्ट बड़ा गाँव से मेरा दीदी जी बोल रहा हूँ। जितने कार्यक्रम है हमारे लिए तो सबके लिए ढेर सारी शुभकामना।
0: कौन सा गाना सुनवा दें आपको? अरे तो बड़ा कठिन सा गाना आपने बता दिया। फिल्म का नाम आपको याद है? चलिए, और ये
1: हम बहुत दिल से ट्राई करते रहे, लेकिन हम कैसे मन बोली कैसे बदलावा चाहते।
0: अरे तो कैसन बोली, एकदम सही तो बोल रहे हैं आप, अच्छा लग रहा है आपकी आवाज सुन के हम लोगों को।
1: हाँ दीदी बोली तो
0: है। हाँ बिल्कुल,
1: एक बार और फोन लगा था
0: जी,
1: तो हमको तो कांप रहे थे।
0: आपका फोन जी, एक बार फोन आपने और लगाया था इसके पहले?
1: और 9 मार्च को करे थे।

0: चलिए आपको तो दिन भी याद है, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपके बोलने का अंदाज बहुत ही सुंदर है और इतनी सुंदर सी अवधि आपने हमारे प्रोग्राम में बोली, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए आपके लिए हमने गाना एक सिलेक्ट कर लिया है जी, उसे हम प्ले कर दें कि अभी आप कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ और बताना चाहते हैं या गाना हम बजा दें आपके लिए?
1: बोलना चाहती हूँ, दोस्तों
0: के
1: नाम ले लें।
0: जी जी बिल्कुल ले लीजिए, और आपके लिए गाना भी हमने प्ले कर दिया है।
1: विजय कुमार, अमरेश कुमार, परवीन कुमार, अभय।
0: चलिए ठीक है राजेंद्र जी, आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके लिए ये गाना आकाशवाणी अयोध्या से।

तो दोस्तों हमारे हेलो अयोध्या का सफारिसी गीत के साथ बस यहीं तक. इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति. और आज इस कार्यक्रम में हमें कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दिया स्वप्निल जी ने.

हेलो अयोध्या, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार दिन के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: बदंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत

0: करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
0: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
0: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
0: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
0: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
0: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
1: जी।
0: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
0: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
0: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर
0: श्रोताओं, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
0: जी।
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
0: जी।
1: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम
0: जी। अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोभी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है
1: जी।
0: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
1: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं
0: जी।
1: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
0: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं जैसे मोरिन खोर।
1: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
0: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे। ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
1: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोवी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
0: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी।

0: जानकारी गोभी के शीत मरुस्थल की।
1: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गोभी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
1: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ थे यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर।
5: अरे वो देखो चिड़िया।
6: अरे वो देखो बंदर।
7: ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
8: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
9: हाँ, ये तो सही कह रहे हो।
10: अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
11: क्या करेंगे?
12: देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
13: ये तो रीच की आवाज है।
14: अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है।
15: ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
16: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
17: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
18: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
18: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
19: ओह, अब मैं क्या करूं?
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
19: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर ले जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
19: मुझे सूंघा, ऐसा करता हूँ, सांस रोक के इधर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
19: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
18: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
18: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
2: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
19: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
2: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
1: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान, अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
6: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं,
7: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
6: हाँ?
7: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
5: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
7: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
7: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
5: बढ़िया ही रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
8: मार, मार, मार, मार, मार, मार, मार,

0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगों का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो?

0: कहाँ से आ रही हो?
1: घर माँ, वो लोग आ रहे हैं।
0: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
1: गौरमा,
0: हाँ?
1: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
0: क्या?
1: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके, उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
0: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
2: बिल्कुल,
0: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
3: हाँ, हम सब तैयार हैं।
4: किसी भी हाल में जंगल कटने
2: नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
5: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
0: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बयान।
0: मिट्टी पानी और बयान।
7: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
8: अरे क्या कर रहे हो? मेरा मुंह के ताक रहे हो? अरे शुरू मारो पेड़।
2: अरे भाई कौन है? रुको, इस पेड़ पर जाएंगे पेड़ से।
0: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: आगे बढ़ो।
2: अरे कहां से
8: आए? इनकी बातों में बताओ, मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए।
2: चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम।
0: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
4: नहीं लगाने देंगे।
0: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे। सारे नहीं
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
7: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
5: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
7: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।

0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
2: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
4: ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है।
5: कहाँ से लाए?
4: नॉर्मल, जहाँ से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
5: अच्छा अच्छा।
4: सो अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स। उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में
5: जी।
4: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था, क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे
5: जी जी।
4: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है
5: बिल्कुल,
4: इसका साउंड में सुना था आपको
5: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी।

0: इनटू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है,

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको
1: जी,
0: म्यूजिक में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे।
1: बिल्कुल,
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: है।
1: जी वाह,

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी।
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या
0: जी?
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर देगा मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक
0: जी जी।
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह।
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी।
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले
0: जी। जी
1: तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा नीसा आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूँ
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है
0: जी जी।
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारे काम है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है, मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं ये रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है
0: जी।
1: इस महफिल को यहाँ रोकते
0: आपका,
1: हुए
0: आपका और अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है जी, मेरा खुद का मन नहीं करते जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है।
1: मैं समझ सकता
0: आपका हूं। भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको

0: बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे. ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी.
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए.
0: हीरो
1: देखिए फरमाइश भी आ गई.
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है.
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश.
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूँ उनको शायद.
1: अच्छा क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया.
0: कॉम्प्लीमेंट है.
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है.
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने.
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली डेडिकेशन टू यू.
1: शुक्रिया.
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है.

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माई गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी,
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है, ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हो, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरीवादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना, तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया, तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूँ
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है, इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था, वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूँ आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस, जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन सिंगर गा जाते हैं, ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है
0: जी।
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था, उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके।
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: गाने, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली।

0: क्या बात, अद्भुत।
1: थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारसी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत
1: तुझको चलना होगा तुझको चलना होगा
0: बातें जो देती हैं हौसला शब्द जो देते हैं सुकून
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ
1: तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी
1: तुम आ गए हो नूर आ गया है
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर

सारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

हम सुन रहे थे हिंदुस्तानी गजल एल्बम से निर्मला देवी की आवाज में, शकीक बदायूनी ने इसे लिखा और खान साहिब अब्दुल रहमान ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगली नज्म, जो कि है उर्दू गजल एल्बम से, बेगम अख्तर की आवाज में है और जिगर मुरादाबाद ने इसे संगीतबद्ध किया है।

हम सुन रहे थे मुकेश गजल्स एल्बम से, मुकेश की आवाज़ में जान निसार अख्तर के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस नगमे को। आइए सुनते हैं अगली गजल जो होगी हिंदुस्तानी क्लासिकल गजल एल्बम से, तलत महमूद की आवाज़ में एहसान मीरती के बोलों के साथ चित्ता रॉय का संगीत है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि हिंदुस्तानी गजल्स एल्बम से लिया गया है, मोहम्मद रफी की आवाज है। सबा अफगानी ने इसे लिखा और इकबाल ने संगीतबद्ध किया है।

0: हम सुन रहे थे मिराजे गज़ल एल्बम से आशा भोसले गुलाम अली की आवाज़ में। नासिर काज़मी ने इसे लिखा और गुलाम अली ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं उर्दू मॉडर्न गजल एल्बम से लता मंगेशकर की आवाज में गालिब के द्वारा लिखे गए इस नगमे को।

हम थे खामोश एल्बम से सुन रहे थे उत्कर्ष शर्मा की आवाज में सिया सचदेव के बोलों से सजे हुए देव बसक ने इसे संगीतबद्ध किया है। ये है एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में अगला नगमा, जो कि पृथ्वी गंधार की आवाज में है।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष श्रृंखला।

0: इसी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
1: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखें तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं, इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है। दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं, और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुलते, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जो पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहां बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया, और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स न हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े न हो। जी
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइन सो ब्यूटिफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज in the approach of the government towards the agriculture sector. We would like to know from you the stability and the momentum that we have seen in the agriculture sector. Even in the difficult years of COVID, the agriculture sector kept growing. How do you see the approach of the government? What, according to you, have been the, you know, major areas where the government, you feel, has hit the bullseye, and which is why

0: फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही, तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई? ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया सरकार का सब्सिडी का सीधे सीधे बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30 से 70% तक पानी बचता है। जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी, फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि भैया अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता
1: है। रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता
0: है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला। तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने इसके अलावा, सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य अगर आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से ये परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश ये होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले, यानी MSP का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपये क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर, मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले।

0: जी सरकार ने बहुत बेहतर
1: बिल्कुल सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है. मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड एंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो. सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रैटेजी and have been successful.
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price.
1: Right.
2: And after that, at the time of harvest, he needs some financial help to take care of the expenditures. Then after the produce is harvested, he needs a market and a good price that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood.
1: Mm-hmm.
2: So towards this end, what that we revised, keep into account the rise in the input cost. And as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Sinsab was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, with the e-NAM, and along with that, now the lot of attention is being given for storage facilities. Okay. See, the biggest problem is when the prices, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. Yes. So therefore, he requires good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore, particularly to take into account this particular problem.
1: Yes.
2: Because you need to see financial risk management, and what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity.
1: Yes.
2: So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of cold storage chains in everywhere.
1: Yes.
2: Because invariably when you hear stories of farmer in distress because the production there is, like for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, cost by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: Yes. Coming to you, Mr. Singh, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही है?
0: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% केले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2-4-5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पर पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. अब समझिए कि हमें लगता है कि 60-70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पर मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी

0: इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं। हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं। अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं। एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में। कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी बोलते हैं, उसका आज की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में का, सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ प्रति की रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है। आपने जो कहा ना कि सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और, जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानते ही नहीं थे, उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 lakh farmers have enrolled. And also another very interesting enlightening statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the Scheduled Caste, Scheduled Tribe, OBC categories. And of course you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop more crop. That is for every drop that is being, you know, water, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. Okay. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention.
1: Yes.
2: Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture and productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticides, spreading the pesticide, spraying of pesticides.

0: pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we've had a vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa unhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hai. 2014 se dekhe to 37% bade hai humare agriculture exports. $51 billion ho gaye hai. Aur isme jo processed food एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है. सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
2: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 20-21 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के, तो जैसे टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
1: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
2: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी, कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया, मत्स्य संपदा हो चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट है. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है. और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण. प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है.
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट. प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, these have been defined as the focus areas. So you think, you know, this kind of very focused approach that the government is taking, looking at the very vast and varied geography of India, that is the way to go forward? यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑपर्चुनिटी।

0: अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: बलराम यादव व साथियों की आवाज में आइए सुनते हैं ये किसानी गीत।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं समाप्त होता है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है,
2: उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: अभी आप सुन रहे थे अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग 101.9 MHz और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दी और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से।

0: लोक रंग कार्यक्रम
1: नमस्कार दोस्तों, शुभ दोपहर। मैं हूं आपकी दोस्त रक्षा श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। दोस्तों, कुछ बातें जुबान से बयां हो जाती हैं तो कुछ सिर्फ धड़कनों में ही रह जाती हैं, लेकिन जब इन अनकही बातों को संगीत का साथ मिल जाता है तो वो अमर हो जाती हैं। आज हमारी सुरमई दोपहर की महफिल सजी है बेहद खूबसूरत फिल्म संगीत के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ तुमने कहा कार्यक्रम का ये सुहाना सफर। ये पहली फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह। आप सबने पसंद किया है फिल्म खूबसूरत का गीत। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है बागपत यूपी से संजय ढींगिया, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, शाहजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा यूपी से आफताब अंसारी, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल। फिल्म खूबसूरत के ही गीत की फरमाइश हमारे पास आई है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से उदयभान पाल, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर यूपी से मोहम्मद फरमान और खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म खूबसूरत का ये गीत। आवाज है कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की, संगीत दिया है जतिन ललित ने।

जी हाँ दोस्तों, सपने बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए। कुछ तुमने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म हमराज के गीत के लिए। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, भावखेड़ी जिला सीहोर से राजेश बनासिया, बरेड़ी एमपी से हुकुम करमरकर, बाजार रोड मुंगीसपुर से जाकिर मंसूरी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा। आप सबने पसंद किया है फिल्म हमराज का गीत। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है उन्हें जिला उज्जैन एमपी से भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, बड़ी गैबी चौराहा से अरुण कुमार मालवीय, गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, छिंदवाड़ा बरेड़ी एमपी से नाना लाम से, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, गुलबालोद तहसील जिला आलोट से विक्रम मालवीय। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म हमराज का ये गीत। आवाज है महेंद्र कपूर की, समीर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है रवि ने।

दोस्तों कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और हमरा ही अगर हर परिस्थिति में साथ दे दे तो दोस्तों कहना ही क्या। श्रोताओं अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा से तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के पोस्टर कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में भेजिए अपने विचार या शायरी और सुनिए अपनी पसंद का गीत। और श्रोताओं आप अपने विचार शायरी और पसंद का गीत हमें दिन के 11 बजे के अंदर ही भेज दीजिएगा क्योंकि हम लोग केवल 11 बजे तक की ही फरमाइशें शामिल करते हैं। कुछ तुमने कहा, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म दिल ने फिर याद किया के गीत के लिए। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से मसरूर हसन, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, लोहरदगा जिला बागपत से जगमोहन प्रजापति, बनभगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, हनुमानगढ़ राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म दिल ने फिर याद किया का ये गीत। आवाज है मुकेश मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं सच में खुश हूँ या सिर्फ जी रहा हूँ?
2: हर दिन की थकान, मन का बोझ और अंदर की बेचैनी, कहीं ना कहीं ये सब हमें खुद से दूर कर देती हैं।
1: लेकिन एक रास्ता है जो आपको फिर से आप से मिलाता है।
2: जी हाँ, और वो है योग।
1: जब आपका मन, शरीर और आत्मा एक हो जाएं, वही सच्चा योग है।
2: एक ऐसी ऊर्जा जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है।
1: थोड़ा समय अपने लिए निकालिए, तन को वज्रासन की मजबूती दीजिए,
2: मन को पद्मासन की शांति दीजिए
1: और दिमाग को सूर्य की तरह तेज बनाइए।
2: योग करिए, निरोग रहिए।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।

0: की पावन नगरी और आपके अपने शहर की प्यारी सी धड़कन।
1: जी हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
0: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
1: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज, हमारी पहचान।
0: आकाशवाणी अयोध्या, अपना रेडियो, अपनी धड़कन, FM 101.9 या फिर न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर। मन

दोस्तों, हीट वेव की स्थिति शरीर की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें कुछ तथ्यों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमें अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए। यदि प्यास ना लगी हो तब भी पानी अवश्य पिएं। घर से बाहर जाते समय पीने का पानी साथ लेकर जाएं। ORS घर में बने हुए पेय पदार्थ जैसे लस्सी, चावल का पानी, नींबू पानी, छाछ आदि का उपयोग करें, जिससे कि शरीर में पानी की कमी की भरपाई हो सके। जल की अधिक मात्रा वाले मौसमी फल एवं सब्जियों जैसे तरबूज, खरबूज, संतरे, अंगूर, अनानास, खीरा, ककड़ी, सलाद, पत्ता इत्यादि का उपयोग करें। शरीर को ढककर रखें। हल्के रंग के हल्के वस्त्र पहने। अगर आप खुले में कार्य करते हैं तो धूप से बचाव के लिए शरीर को ढककर रखें। सिर ढकने के लिए छाता, टोपी, तौलिया, गमछा आदि का उपयोग करें। धूप में जाते वक्त आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा अवश्य पहने और पैरों के बचाव के लिए जूते चप्पल का प्रयोग करें।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म शूरवीर के गीत के लिए। भवानीपेठ सोलापुर से विष्णु मिस्कीन, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ यूपी से दिलशाद हुसैन, नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद प्रकाश मिर्ढा, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, रामगढ़ कैंट झारखंड से कमल सानवे, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, बत्रे बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ एमपी से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, रघुवीर नगर से दिलावर खान। फिल्म शूरवीर के गीत की ही फरमाइश हमारे पास आई है शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, कमर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मौनाथ भंजन यूपी से राजेश कुमार वर्मा, कस्बा उगहती से धीरज गुप्ता, बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू। आप सबने पसंद किया है फिल्म शूरवीर का गीत। आवाज है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की। शब्द रचना है एसएच बिहारी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

हमको ना भुलाना कभी हमको ना भुलाना। जी हाँ दोस्तों, आप सब आकाशवाणी अयोध्या से यूं ही अपना प्यार हमेशा बना के रखिए और सुनते रहिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों को। कुछ तुमने कहा, आप सुने आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म इज्जत के गीत के लिए। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, जलालाबाद वेश से सुरेश गगनेजा, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज। इसी फिल्म के गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है गांव टोरवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, शिवाजी नगर वडाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, भोजपुर तगा सहारनपुर से मोहम्मद इंतजार, जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त नाभा, जवानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, अक्कलकोट रोड जिला सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोढ़े। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म इज्जत का ये गीत। आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर के लिखे गीत को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म निकाह के गीत के लिए। गांव बांडीवाला फाजिलका से ओम बगौड़िया, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, ग्राम गुलबालोद तहसील आलोट जिला रतलाम एमपी से कुंवर कृपाल सिंह परिहार, बनारस से परवेज अहमद, मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल। इन्होंने कहा है, गांव की मिट्टी में वह ताकत है जो इंसान को अपनी जड़ों से जोड़कर रखती है। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। इसी गीत की फरमाइश हमारे पास आई है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, कस्बा हाफिजगंज जिला बरेली यूपी से शकील अहमद इदरीसी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का फिल्म निकाह का ये गीत। आवाज है आशा भोसले, महेंद्र कपूर और सलमा आगागी। हसन कमाल के लिखे गीत को संगीत दिया है रवि ने।

कार्यक्रम में अगली फेसबुक फरमाइश हमारे पास आई है फिल्म राजा हिंदुस्तानी के गीत के लिए, आष्टी जिलाना जालना मराठावाड़ से सैयद यूनुस, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, मेरठ से दिग्दर्शन गौड़, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूड़त, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिगलानी, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद मखीजा, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, गांव खोखरावाली श्री गंगानगर से विनोद बरांसा, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह राजपूत, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खांडवा से मोहम्मद रफीक पंवार। आप सबने पसंद किया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी का गीत। आवाज है उदित नारायण की। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: तेज धूप और बढ़ती गर्मी इंसानों के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी मुश्किल समय लेकर आती है।
3: आइए इन पशु पक्षियों के लिए घर के बाहर और छत पर किसी खुले बर्तन में स्वच्छ पानी और चिड़ियों के लिए दाना रखें।
2: अपने घर के आसपास जानवरों को पानी और भोजन दें, शेड लगाकर छांव की व्यवस्था करें और घायल पशु पक्षियों की मदद करें।
3: आपकी छोटी सी पहल इन बेजुबान पशु पक्षियों की जिंदगी बचा सकती है।
2: आइए इस गर्मी इंसानियत दिखाएं,
3: जीव जंतुओं और पशु पक्षियों का ध्यान रखें।
2: छोटा सा प्रयास बड़ा उपकार।
3: पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से ही सजे ये संसार।
4: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
5: नहीं अछूता हो जिस
4: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक।

0: मन की बात प्रधानमंत्री के साथ मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं मन की बात।
1: अभी आप सुन रहे थे फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि।
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
3: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
3: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया। 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से सौम्या राव की आवाज में आइए सुनते हैं प्राइवेट एल्बम से ये गीत

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम।

0: केसरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: तानिया की आवाज में आइए सुनते हैं प्राइवेट एल्बम से ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि 101.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे अपने दिल्ली केंद्र

0: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गाँव और व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए।
3: जनजातीय समुदाय के अनेक गाँव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तली इलाकों में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।
0: सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को सरकार

साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋता प्रताप बनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिंद्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट पूरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि ये कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि ये लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसे प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री

0: ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहले नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए RBI ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचा इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन ग्वेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओमबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंग कांग और आरोय ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा कोंकण गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब जम्मू कश्मीर लद्दाख गुजरात मध्य प्रदेश उड़ीसा राजस्थान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में HS प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे।

0: के साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एक से 1.9 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम अंगना।

0: हरि आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरि आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9161877347।
2: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
3: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
4: जग घूमे थर जैसा न कोई।
2: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
3: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
2: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
5: कार्यक्रम लेके अंगना हाजिर है आपके रेडियो सखी वंदना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी का आपके रेडियो सखी वंदना के वारी से प्यार भरा नमस्कार। और बहनी, आज के कार्यक्रम में बहुत कुछ है खास। तो सबसे पहले जो चर्चा की जाए वह है विश्व साइकिल दिवस पे, और एक साथ साथ आज है फरमाइशी लोकगीत। तो सखियों, शुरू की जात है चर्चा विश्व साइकिल दिवस पे। बहनी, आज 3 जून के पावन अवसर पे हम सब विश्व साइकिल दिवस मनाए थे। ये दिन पूरी दुनिया में साइकिल के महत्व, उपयोगिता और मानव जीवन में एक योगदान का याद करने के खातिर मनावा जाता है। साइकिल एक साधारण लेकिन बहुत उपयोगी साधन है। हम ये न केवल एक जगह से ही हमका दूसरी जगह पहुंचावे में मदद करते हैं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति का भी मजबूत बनावत है। आज जब दुनिया प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और बहुत बीमारियों जैसी समस्या से जूझता है, तब साइकिल एक सरल, सस्ता और प्रभावी समाधान बनके हमारे सामने आवत है। साइकिल चलावे से हमारा शरीर स्वस्थ और सक्रिय रहत है, हृदय मजबूत होते हैं, फेफड़ा अच्छा काम करते हैं और शरीर बा ऊर्जा बनी रहत है। और बनी ऐसे सभी की ऊर्जा बनी रहे और सुना जाए फरमाइशी लोकगीत, लल्ला की पैजनिया बाजे रे। इका सुना चाहती हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल पूजा परिहार। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य। यही गीत के फरमाइश है बमलेश्वरी रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, नेहा देवी, यशोदा देवी, कुंती देवी यादव, गंगोत्री देवी, मानिकपुरी, जूनवानी, स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से तारा विद्या, सुनीता, जमीनी देवी, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी से ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, दयानंद कॉलेज भवानी सेठ सोलापुर महाराज से विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वानी आरव, चंद्रकाला, गणेश, काशीनाथ, संगीता आरोही, प्रियांशी सोनी, और यही गीत के खातिर दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल, ग्राम चरौंदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला।

बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, ग्राम गुदुनपुर पोस्ट जगदीशपुर जिला बस्ती से अजिता रावत, जया, अंतिमा, रागनी, अनन्या, अंशु, निशु, शिवानी, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योति नगर नोरवा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का।

मैनी आजकल मोबाइल कंप्यूटर और टीवी के बढ़त उपयोग के कारण लोगन के शारीरिक गतिविधि कम हो जाता है। ऐसे मोटापा, मधुमेह, रक्तचाप और हृदय रोग जैसी बीमारी बढ़त जात है। और साइकिल चलावे की आदत इन समस्या से बचाओ मां बहुत मददगार साबित हो सकत है। मैंने आज आवश्यकता ही बात किया है कि हमरे सभी साइकिल के महत्व का समझी। यदि दूरी कम हुए तो मोटर वाहन के बजाय साइकिल के उपयोग करी। इसे स्वास्थ्य अच्छा रही, पैसा बची और पर्यावरण भी सुरक्षित रही। मैंने बात बात कही आगे और हुए तो चलो सुना जाए एक दूसर फरमाइशी लोकगीत जहिया से गैली सैया। इका सुना चाहती आरीनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन, आरुषी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश। लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, कुमकुम कुमारी। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष।

0: सुनत है सखी, सुनत है कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कह सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पे
1: और व्हाट्सएप नंबर 8303991111 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
2: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
6: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
7: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोकगीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
9: तो बहनी, आज के दिन हम सभी संकल्प लें कि जहां संभव हुए साइकिल के प्रयोग बढ़ाए, दूसरे का भी प्रेरित कर और एक स्वस्थ स्वच्छ हरित और खुशहाल भारत के निर्माण में अपन योगदान देवे। और बहनी, एक और प्यारा सा लोक गीत, ननंद मुरी आए गई मैं घर में ना थी, और ये फरमाइशी लोकगीत का सुना चाहती सागर लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी, रिमझिम और सक्षम चौबे। यही गीत के फरमाइश किया है रणजीत सिंह गोरखपुर से, नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीश और राहुल।

बहनी, आज के भागदौड़ जिंदगी में लगभग हर आदमी केहू न केहू प्रकार के चिंता और मानसिक दबाव से जूझता है, चाहे पढ़ाई हुए, नौकरी हुए, व्यापार हुए या घर परिवार की जिम्मेदारी। हर जगह तनाव हमारे जीवन के हिस्सा बना जात रहा, लेकिन एक ऐसा सरल और प्रभावी उपाय बाय जो हजारों साल से हमारे भारत देश के अमूल्य धरोहर रहा है, और वो है योग। योग के सबसे बड़ा लाभ यह है कि तनाव कम करे में मदद करत है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और ध्यान लगाई थे, तब हमार मस्तिष्क शांत होए लागत है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़त है और मन ताजगी महसूस करत है। तो भाई चलो, यही के साथ ही एक और लोकगीत सुना जाए, रेलिया बैरन सैया का लिए जाए रे। ये लोकगीत के फरमाइश किया है राशिद हुसैन अंसारी, नशरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ, जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।

तो बहनी प्राणायाम भी तनाव दूर करे में बहुत प्रभावी है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपाल भाती और गहरी श्वास के अभ्यास मानसिक शांति प्रदान करत है। जब हम नियमित रूप से प्राणायाम करी थे ना, तब हमारा मन स्थिर होते है और नकारात्मक विचार कम हो लागत है। तो बहनी हम तो यही कहा कि योग अपनाई, तन मन स्वस्थ बनाई, तनाव दूर भगाई, खुशहाल जीवन पाई। और साथ ही माँ एक और लोकगीत सुना जाता है, हम तो चली नई हरवा बलम सुस की लई लई रोवे। और ई लोकगीत के फरमाइश किया है यवतमाला विदर्भ महाराष्ट्र से श्रीमती अनीता बाई खट से और प्रियंका खट से, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाच, नवाजी शेख, दानिश अमन आफरीदी, ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया मारहरा दरवाजा, एटा से नवी हसन अब्बासी, अनम सुहेल सहनाज, नावेद यशफ अब्बासी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका बलविंदर, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी, गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका

0: तो यह गीत के साथ है अपन रेडियो सखी वंदना गुप्ता का दे अनुमति नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम अंगना। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा।

0: ヘイリー。サカリカサレディ、サンササン。サカリカサレディ、サンササン。सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो सजावट देख कर लगा की कल के उत्सव की जो रौनक
0: है आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
0: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता। और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती है और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
0: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
1: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा, विचार आपके। तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन। जी, तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
1: और 3 जून का दिन

0: होता है विश्व साइकिल दिवस, तो साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
1: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायने रखती थी उस जमाने में, है ना।
0: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं, लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
1: नजर आते हैं,
0: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार की सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
1: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दुपहिये वाहन या चार पहिये के वाहन को कार को लेकर जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
0: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है, तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं।
1: हाँ।
0: ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है, अरबी
1: है,
0: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या की बनाए क्या।
1: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना हमारी सखियों के, वो मुंह फुला लेते हैं, क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
0: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
1: अरे सारा मत बताओ,
0: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तक ये गीत सुन लेते हैं सखियों के,
1: सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: और ये उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मंदाकिनी जी,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी,
0: अहंकार और अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल।
1: हाँ।
0: और इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता, और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता है, भाई बहन है, ये हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेमपूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं। और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी बहुत मदद होता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर लोग दोस्ती करते थे वही कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हमें हम कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भैया आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार, दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और

0: मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्ते में ही तो कई बार हम प्यार से सोना
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओ मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल की, रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आप बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे एक श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता, ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और जीवन का वो आधार है।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके लिए हम अपनी जो आपकी धर्मपत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहां एक और अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो सबसे अच्छा तरीका यही है, आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
0: बच्चों को दें।
1: जी
0: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना। ये तो है कि टिट फॉर टैट होता ही, अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथी कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए, त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और

0: आगे एक छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।

0: चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है तो उसे महिलाएं खासतौर पर बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: तो आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घटचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वही

0: इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है, घट चोला, यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर जिसका मतलब होता है
1: घर
0: और चोला इसका मतलब है कि पोशाक। और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
1: करती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घट चोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
0: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। गठचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
0: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी गठचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
1: में रख लेते हैं वो
0: जी। और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
1: हालांकि गठचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें गठचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
0: गठचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
1: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो गठचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के रूप पर जो है गठचोला साड़ी डालती है तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
0: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और गठचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत महत्व
1: होता है। बिल्कुल, और गठचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाप से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं जो खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं।
0: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
1: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगा देते हैं।

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की. कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह
1: कहेंगे. बिल्कुल ही इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है,
1: याद हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में जब हमें पहली साइकिल मिली थी, तो आज भी भुलाई नहीं भूलती.
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना. और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है.
1: बहुत बड़ी बात. और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल. इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है. साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है.
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है. और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात. और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
0: अब देखो ना हमारे जो साथी वो क्या लिख रहे हैं. साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी. जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था. और इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने. हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं.

0: पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था और ये कहानी हास्य से भरपूर है, जिसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ी
1: जाए। बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में दुखी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे कन्याश्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे, सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे। आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल निकाल दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए मुझे मोबाइल चाहिए तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयान नहीं कर सकता। और आज 2-2 दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और मैं ये गाना नहीं सुना, ये गाना कोई दूसरा सुनवा देंगे, गाने सभी अच्छे हैं। और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
0: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
1: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
0: तो पढ़िए ना।
1: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
0: क्या बात है।

0: चंचल वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे, और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं, और
0: साइकिल दे दी जा रही
1: है, दुपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: आज उल्टा है चंचल, आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है, नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें, इसके जो अन्य शब्द हैं योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
0: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
1: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन, और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकाल कर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
0: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
1: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा, और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसे हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
1: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
0: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
1: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था,
1: बहुत सुंदर गीत था और सुनने के बाद एक मन में अलग सा नशा आ गया है
0: जी।
1: और चंचल हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है।
0: तो हमारे इसलिए होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना करते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती है महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला दी जाए किसी भी तरह से,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए, आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने सब्जी खाई भी है
0: जी।
1: वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक हल्दी अदरक मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो जंजल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सिख सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है
1: जी।
0: तो कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। यह संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित है और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो है स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज पे काम करती हैं, पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहां पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एजुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट, लिसनिंग

0: डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना। अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीजों से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आंख वाँख भी यू नो इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ। ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है। तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल। कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा। तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना। तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है, अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी। तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं। तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर और बातें करते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियाँ
0: और विविध भारती और अलिया वर्जंग।
1: क्या बात है, सुनते हैं।
2: बड़े अच्छे लगते हैं

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल, बट जब चाइल्ड इज बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं, बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है, उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इसी घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत जरूरी है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें, टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4 साल 5 साल के बाद हो जाता है, तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो यस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मेनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट टाइमली और एप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर

0: पॉसिबल.
1: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
2: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है. ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, एप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे. हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो बीएसएलपी जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी. ओके, एजुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं. बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ. टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं. प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs आल्सो यू विल फाइंड.
1: क्या बात है.
2: तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल. प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत जरूरी है. टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस, थिंग्स आर पॉसिबल.
1: बिल्कुल. अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
2: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूं तो आप जोर से आवाज बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है. आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देयर इज नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन. हमें जब आवाज आती है तो हम उस तरफ देखते हैं. ओके, जहां से आवाज आती है हम उस तरफ देखते हैं तो बच्चा वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है. अगर बहुत जोर से कोई आवाज आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल. ओके, अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है तो दीज आर सर्टन साइंस जहां पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोरबेल. तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो यस, द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज. बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड, मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है. पर उसके लिए जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहां पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा जोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है. बट व्हेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं. तो ये सब एक बिहेवियर रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए. और अगर ऐसा कोई बिहेवियर रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है. तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉक्लियर इम्प्लांट लगे या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं. तो दिस इज द बेसिक.
1: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है.
2: एग्जैक्टली.
1: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है. यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
2: पल पल दिल के पास
1: तुम रहती हो.
2: हाँ जी, किशोर कुमार जी.
1: जी सुनते हैं.

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जरा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व्ड हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व्ड हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व्ड हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ या

0: कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं. तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था. RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग. एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफी अलग हैं. तो ये दोनों चीजें अलग हैं.
1: बिल्कुल. और कुछ बच्चे जो बोल तो सकते हैं लेकिन ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जिनको हकलाना कहते हैं.
0: राइट राइट राइट. हाँ,
1: तो उनके लिए भी
0: उनके लिए भी थेरेपीज होती हैं. एंड जैसे आपने खुद ने पहले कहा, जितना जल्दी आप जानोगे उतना जल्दी आप उसका निवारण कर सकते हैं, उतना जल्दी इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हो सकता है. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हकलाता है, तो आप उसको प्लीज एक इंटरवेंशन प्रोग्राम में लेके जाएं या थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं. टू ऐड वन थिंग कि जैसे जनरल स्कूल्स में, रेगुलर स्कूल्स में यू विल फाइंड कि कुछ बच्चे हैं जिनको हियरिंग इश्यूज हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक प्रशस्त ऐप बनाया है. तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. तो वो स्क्रीनिंग करने में काफी आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में, सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बिठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल है, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे मैं तो कहूंगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोले आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. पेरेंट का होना बहुत इम्पोर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊं, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प. बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफी अलग होता है. तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज इज जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है. तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है, उसको भी जांचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दिया मशीन पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो, तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है, तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देयर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें, और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो पता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफी रीइंफोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज्यादा इश्यूज और कंसर्न्स नहीं आते हैं. पर जहां पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो

0: तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम। तो ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है। तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं। एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहां पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहां से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में। अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके, बाकी वो एनवायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो। फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं, इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स आल्सो।
1: बिल्कुल।
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स है ना हम सबके, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स, ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विद योर स्पीच, ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है। तो बिहेवियर्स plays an important role because जो hearing impaired होते हैं वो mostly visual learners होते हैं, they are more of visuals, okay? तो आपका बर्ताव, आपका attitude, आपका body language, ये सब बहुत important role play करता है। यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो that means that will affect the child।
1: बिल्कुल सही बात है। इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को।
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली। एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं। दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो जरूरत है या लर्निंग नीड्स है बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की जरूरत है, ठीक है। अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फर्क है। मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा। हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उनको सिखाया जाता है कि ये आवाज कौन सी है, इस आवाज का मतलब क्या है, आवाज आ कहां से रही है। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहां पे बहुत ज्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है। तो ये एक लर्निंग नीड है जहां पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा, हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा, एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूअसली पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए, जितना ज्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा, जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज अफेक्टेड।

0: सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूं मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट व्हाट आई फील इज हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं वो संकल्पना संदर्भ के अकॉर्डिंगली सीखना बहुत जरूरी है. अब एग्जांपल अगर मैं आपको एक शब्द बोलूं खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीजें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है तो दैट क्रिया इज डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है. नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं. कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है. और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज लिखते हैं पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे उतना ज्यादा आप अच्छा प्रोग्रेस होगा. हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊं रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊं, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं. तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड. ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हाँ जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं. अमूमन होता होगा पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है. तो उनकी जो समझ थिंकिंग प्रोसेस है क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से इट इज गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके एंड देन इट इज लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं. नहीं, देयर आर नो कॉग्निटिव इश्यूज, नो अंडरलाइंग इश्यूज एज सच. बट यस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है एंड इट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं.

0: क्या कैसे करूंगी वो मुझे कैसे पता, जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे या मुझे उस चीज का संदर्भ ही नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल जहां हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जी, ये जी सुनते हैं ये गाना.

0: जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: डॉक्टर गायत्री हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
2: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीजें आपके पास एक्सेसिबल है तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज को पार्टिसिपेट करूं तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दैट इज एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं

0: कि नहीं है ओके और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट, हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो, पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को भी मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियां हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफी डिफिकल्ट है, यू नो मैं एजुकेशन कहाँ से लूं और कैसे लूं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है और उसको BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है या डिसेबिलिटी ISL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज एज पर द स्कीम, बच्चे के लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है तो इट इज टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीजें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू यू नो डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है तो मुझे कहाँ जाना है। ओके, ये कहाँ जाना है ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज्यादा काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ आई कैन कोट अ थिंग इज कोविड के टाइम पे, यू नो दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देयर इज नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज्यादा इनरोल होना जरूरी है। थर्ड इज द एक्सेसिबिलिटी, इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ाते तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज जो है इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, पर फिर भी अगर ये दो तीन चीज पे और लाइन अप हम करें तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे, कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं?
0: मैं इस क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय पर्सनल,
1: आप तो हेड हैं, डिपार्टमेंट के हेड हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक NGO सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे एंड आई यूज्ड टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इनटू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज वेरी

0: इस फैक्ट्री वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स. कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. सो बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और पीएचडी करते हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड यू नो टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं. दोनों काफी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफी अलग है. बट दीज आर ऑल यू नो लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफी ज्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफी अच्छा हो गया है. एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं. जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू. ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज को देखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल, भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज उनके पहुंच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जाँच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है, वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल से ना आई हैव अ वर्टिको इश्यूज एंड ऑल. ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहां पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एजुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहां पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड काफी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहां तक पहुंच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहां जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो जरूरत हो ओके वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है. आप वहां जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं.
0: श्योर, श्योर.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी. और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है. जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं. तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहां कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें. आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत
1: थैंक यू टू यू ममता मैम एंड थैंक्स टू विविध भारती द होल टीम. दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड द वे दे आर डीलिंग with everything. So thanks to them. Thanks to all the listeners कि आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को. थैंक यू सो मच.
0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत. चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता

0: पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले, तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए तैयार होंगे। ज्ञान, विचार, प्रेरणा और मनोरंजन की इस खूबसूरत सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं युवाणी कार्यक्रम और आज का सफर आप तय करेंगे अपनी रेडियो दोस्त जीनत के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा एक ऐसे विषय के साथ जो स्वास्थ्य, पर्यावरण और सतत विकास से जुड़ा हुआ है। मित्रों, हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना और लोगों को इसके स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सामाजिक लाभों के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2026 की विश्व साइकिल दिवस की थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, अर्थात हरित भविष्य के लिए साइकिलिंग। ये थीम हमें बताती है कि साइकिल केवल एक साधन नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोस्तों, आज जब दुनिया प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब साइकिल एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान बनकर सामने आती है। साइकिल चलाने से शरीर सक्रिय रहता है। ये हृदय को स्वस्थ रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और मानसिक तनाव को कम करने में सहायता करती है। पर्यावरण की दृष्टि से भी साइकिल का महत्व बहुत अधिक है। साइकिल चलाने में किसी प्रकार के ईंधन की आवश्यकता नहीं होती और ना ही इससे धुआं निकलता है। इसके अलावा दोस्तों, साइकिल एक किफायती परिवहन साधन भी है। इसकी देखभाल का खर्च भी कम होता है और ये हर वर्ग के लिए सुलभ है। इसलिए साथियों, विश्व साइकिल दिवस हमें ये संदेश देता है कि यदि हम छोटी छोटी दूरियों के लिए साइकिल का उपयोग करें तो न केवल अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण की बात हो और कचरे की समस्या का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फोन, लैपटॉप, हेडफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन ये उपकरण जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो वे ई वेस्ट का रूप धारण कर लेते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में हर वर्ष करोड़ों टन ई वेस्ट पैदा हो रहा है। चिंता की बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकिल नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप कई हानिकारक रसायन पर्यावरण में फैल जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि हम जिम्मेदार उपभोक्ता बने। जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तभी हम खरीदें, उसकी गुणवत्ता और उपयोग अवधि का ध्यान रखें। कम समय में बार बार उपकरण बदलने की आदत से बचें। यदि कोई उपकरण काम नहीं कर रहा है तो उसे मरम्मत कराकर दोबारा उपयोग करने का प्रयास करें। मित्रों, डिजिटल युग में तकनीक हमारी जरूरत है। लेकिन उसके उपयोग के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को भी समझना उतना ही आवश्यक है।

विविध भारती के कार्यक्रम अब हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:30 से। यह है आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। आज सांध्यकालीन कार्यक्रमों के साथ रहेगा 11:10 तक आपके साथ आपका रेडियो मित्र अमरजीत, जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है आकाशवाणी अयोध्या एफएम की आवाज। समय मिलाइए शाम के ठीक 5 बजे हैं और आइए सबसे पहले सुनते हैं युववाणी कार्यक्रम।

0: है। याद रखिए साथियों, एक जागरूक नागरिक की छोटी सी पहल भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यदि हम आज अपनी जिम्मेदारी दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण दे पाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की चर्चा। और दोस्तों, मेधा सम्मान 2026 दिनांक 1 जून 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों के जनपद में टॉप 10 रैंक हासिल करने वाले मेधावियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती रोली सिंह, सदर विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता, गोसाईगंज विधायक श्री अभय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी तथा DIOS अयोध्या द्वारा मेधावियों को सम्मानित किया गया। आइए यहाँ सुनते हैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश। संकलन सदक हुसैन का है।
1: आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यह केवल एक दिवस नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की पुकार सुनने का अवसर है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि पेड़ बोल सकते, नदियाँ अपनी पीड़ा सुना सकती और हवा अपना दर्द बता सकती, तो क्या वे हमसे खुश होती? शायद नहीं।

दोस्तों किन्हीं कारणों से हम आपको ये वार्ता नहीं अभी सुना पा रहे हैं, फिलहाल बढ़ते हैं सेगमेंट व्यक्ति विशेष की ओर, जहां हम बात करेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई की। दोस्तों ये ओबी हम आपको नहीं सुना पाए हैं, इसका हमें खेद है। फिलहाल यहाँ पर बढ़ते हैं सेगमेंट व्यक्ति विशेष की ओर, जहां हम बात करेंगे गोपीनाथ बोरदोलोई की, जिन्हें प्रेम व सम्मान से लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई कहा जाता है। दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के नगांव जिले के राहा नामक स्थान पर हुआ। बचपन से ही गोपीनाथ बोरदोलोई मेधावी, अनुशासित और अध्ययनशील थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नगांव में प्राप्त की। इसके बाद वे गुवाहाटी के प्रसिद्ध कॉलेज कॉटन कॉलेज में अध्ययन के लिए गए। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से गोपीनाथ ने स्नातक और परा स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बाद में उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और कुछ समय के लिए वकालत का पेशा अपनाया। वकालत करते हुए गोपीनाथ बोरदोलोई महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हुए। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब गोपीनाथ बोरदोलोई ने अपना सफल वकालती करियर छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाया और असम में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। वर्ष 1938 में वे असम प्रांत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी। दोस्तों गोपीनाथ बोरदोलोई का सबसे बड़ा योगदान भारत के विभाजन के समय सामने आया। सन 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में असम को बंगाल के साथ

0: एक समूह में शामिल करने का प्रस्ताव था। बोर्दोलोई ने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। उनके दृढ़ नेतृत्व और अथक प्रयासों के कारण असम स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना रहा। इस ऐतिहासिक भूमिका के कारण गोपीनाथ बोर्दोलोई को असम का रक्षक भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और गोपीनाथ बोर्दोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने शिक्षा के प्रसार पर विशेष बल दिया। उनके प्रयासों से गुवाहाटी विश्वविद्यालय की स्थापना और उच्च शिक्षा के विकास को नई दिशा मिली। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सड़क निर्माण, कृषि विकास, प्रशासनिक सुधारों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी विशेष कार्य किए। उनकी नीतियों ने पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक समरसता और विकास को बढ़ावा दिया। साथियों, गोपीनाथ की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने उन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। यही उपाधि आगे चलकर उनके नाम का स्थायी हिस्सा बन गई और वे लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई के नाम से प्रसिद्ध हुए। 5 अगस्त 1950 को इस महान नेता का निधन हो गया। उनके योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई पूर्वोत्तर भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्हें यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये था सेगमेंट व्यक्ति विशेष, और अब आइए यहाँ सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिखा मौर्य की बातचीत।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष के सुहाने सफर में आइए कुछ यादें ताजा करते हैं आम जन से जुड़कर कि किस तरह रेडियो ने लोगों को और उनके जीवन को प्रभावित किया। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
2: मेरा नाम राधा वर्मा है।
1: राधा जी, आप हमें ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
2: जी हाँ, हमें रेडियो पसंद है सुनना।
1: राधा जी, आप हमें ये बताइए कि आकाशवाणी के वो कौन कौन से प्रोग्राम है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं?
2: जी, हमें रेडियो के सबसे ज्यादा कार्यक्रम सखी सहेली और बाल जगत, जिसमें बच्चों के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती है, हमें ये सारे प्रोग्राम ज्यादा पसंद।
1: आकाशवाणी के माध्यम से हमारे युवा श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: हम अपने युवा साथियों से ये कहना चाहते हैं कि हमें रेडियो ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, जिसमें युवावाणी में सबके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाती है, खेल से संबंधित अनेक जानकारियाँ दी जाती है और अपना नॉलेज बढ़ता है।
1: राधा जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सबसे पहले अपना नाम बताइए।
3: हमारा नाम मुस्कान मौर्य है।
1: मुस्कान जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप रेडियो सुनती हैं?
3: जी हाँ, मुझे रेडियो सुनना काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो से हमारा मनोरंजन भी हो जाता है और इसके अलावा साथ ही साथ हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं।
1: मुस्कान जी, आप हमें ये बताइए कि आकाशवाणी के वे कौन से प्रोग्राम हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं?
3: वैसे मुझे तो आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं क्योंकि प्रोग्रामों को सुनने से हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती है।
1: मुस्कान जी, अंत में आप आकाशवाणी के माध्यम से युवा श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
3: मैं युवा श्रोताओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी सुने क्योंकि यहाँ पे कई सारी नॉलेज की बातें बताई जाती हैं।
1: हाँ जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए।
4: मेरा नाम हर्षित है।
1: हर्षित, आप हमें ये बताइए कि आप रेडियो सुनते हैं?
4: हाँ, मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है।
1: आपको आकाशवाणी के कौन से कार्यक्रम है जिन्हें आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं?
4: वैसे तो मुझे आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम सुनने में अच्छा लगता है, खासकर बाल जगत।
1: बाल जगत कार्यक्रम, तो ऐसा क्या है कि आपको उसमें क्या खास लगता है?
4: मुझे खास लगता है यह कि बच्चों की प्यारी प्यारी कहानियाँ और प्यारे प्यारे गीत, जिसे सुनकर बड़ा ही मजा आता है।
1: हर्षित जी, आपको बाल जगत के अलावा भी और कौन से कार्यक्रम हैं जो अच्छे लगते हैं?
4: मुझे युवाड़ी और अन्य कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है और सबका नॉलेज भी बढ़ता है, युवा साथियों को सुनना चाहिए।
5: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना नाम बताइए।
6: जी, मेरा नाम भाविका है।
5: भाविका जी, जैसा कि आकाशवाणी

0: अपना 90 वर्ष पूरा कर चुका है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जी, मुझे यह सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष पूरा कर लिया है।
0: आकाशवाणी के कार्यक्रमों की बात की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगी?
1: जी, वैसे मुझे तो आकाशवाणी के सारे कार्यक्रम बेहद पसंद है, जिससे हम युवाओं को रोचक जानकारियाँ, बच्चों के मनोरंजन और महिलाओं के कार्यक्रम में अनेकों जानकारियाँ दी जाती हैं, जो हमारे लिए काफी ही अच्छा है।
0: इसके अलावा आपको और कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
1: जी, इसके अलावा बाल जगत, फोन इन प्रोग्राम और युवाड़ी कार्यक्रम हमें काफी अच्छा लगता है।
0: भाविका जी, आपने कभी फोन इन में अपनी कॉल कभी लगाई है?
1: जी हाँ, हमने 1-2 बार डायल किया है।
0: भाविका जी, अंत में आप रेडियो के माध्यम से युवा दोस्तों को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: जी, हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी के प्रत्येक प्रोग्राम को सभी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें डे बाय डे नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, जो हमारे नॉलेज को बढ़ाती हैं और हमारा मनोरंजन भी करती हैं।
0: भाविका जी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पर युवा साथियों से शिखा मौर्या की बातचीत, और आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
3: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
4: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
4: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
3: चले आए आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

0: सहायता टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.teli-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अंतराल के बाद एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का युवाणी कार्यक्रम में। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेगमेंट खेल संसार की ओर और जानते हैं कुछ खेल समाचार, जहां सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग की, जिसका फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हांगकांग में आयोजित की गई, भारत के मोंगली वेंकट राम ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। दूसरी ओर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष डबल्स का खिताब जीता। फाइनल में इस जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। बात करें शतरंज की तो दोस्तों, ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञान नंद और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद टाई ब्रेकर में जीत हासिल की। प्रतियोगिता में प्रज्ञान नंद ने टाई ब्रेक में वेस्ली सो को हराया और गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। दिव्या देशमुख ने महिला वर्ग में

मौजूदा विश्व चैंपियन जू वेंजुन के खिलाफ अपने क्लासिकल मुकाबले को ड्रा के बाद जीता। साथियों, कैलिफोर्निया के 14 वर्षीय भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र श्रेय पारिख ने प्रतिष्ठित स्क्रिप्ट्स राष्ट्रीय स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती। श्रेय ने 90 सेकंड में 35 में से 32 शब्दों को सही स्पेलिंग के साथ बताकर ये खिताब अपने नाम किया। तो साथियों, ये थी जानकारी खेल जगत की। और मित्रों, अब बात करते हैं हीट वेव की। साथियों, इन दिनों देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखा जा रहा है। ऐसे में कामकाजी लोगों, विशेषकर खुले स्थानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अत्यधिक गर्मी में कर्मचारियों को सबसे पहले अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। नियमित अंतराल पर पानी, छाछ, नींबू पानी, ORS, अन्य तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। और चाय, कॉफी और अत्यधिक मीठे पेय पदार्थों का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कार्य के दौरान हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें। साथ ही मित्रों, सिर को टोपी, गमछे या छाते से ढक कर रखें। साथियों, दोपहर के समय जब तापमान सबसे अधिक होता है, अधिक सतर्कता बरतें। यदि किसी कर्मचारी को चक्कर आना, अत्यधिक थकान, सिर दर्द, उल्टी, तेज बुखार या श्वास लेने में परेशानी महसूस हो तो इसे सामान्य ना समझें। दोस्तों, ये लू लगने के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें। तो दोस्तों, ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी। फिलहाल यहाँ ध्यान रखते हैं एक गीत का, और जिसे हमने लिया है फिल्म सुल्तान से। आवाज है राहत फतेह अली खान की, गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत है विशाल शेखर का।

साथियों दोपहर के समय जब तापमान सबसे अधिक होता है अधिक सतर्कता बरतें। यदि किसी कर्मचारी को चक्कर आना, अत्यधिक थकान, सिर दर्द, उल्टी, तेज बुखार या श्वास लेने में परेशानी महसूस हो तो इसे सामान्य ना समझें। दोस्तों ये लू लगने के संकेत हो सकते हैं, ऐसी सहायता प्राप्त करें। तो दोस्तों ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी। फिलहाल यहाँ ध्यान रखते हैं एक गीत का और जिसे हमने लिया है फिल्म सुल्तान से। आवाज है राहत फतेह अली खान की, गीतकार हैं इरशाद कामिल, संगीत है विशाल शेखर का।

तो दोस्तों, इसी के साथ अब कार्यक्रम में आप सभी से विदा लेने का समय हो गया है। लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि कल युवा संवाद का हमारा विषय होगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, आज की आवश्यकता। जी हाँ दोस्तों, विषय एक बार फिर से सुनिए, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, आज की आवश्यकता। आप भी बन सकते हैं हमारे कार्यक्रम का हिस्सा, डायल कर हमारा टेलीफोन नंबर 7376804090। फिलहाल आज के युवाणी कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त जीनत को दें अनुमति। नमस्कार।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 9186877347।

0: ये था आज का युववाणी कार्यक्रम, जिसे आपने आकाशवाणी अयोध्या FM से सुना 101.9 MHz ट्यून करके, और दूर के श्रोता आकाशवाणी अयोध्या FM के प्रोग्राम से सुन रहे हैं प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ईयर पर। समय मिला ये शाम के ठीक 5:30 हुए हैं लोक संगीत कार्यक्रम इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन

0: 9268 89801।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम तिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: लोक संगीत कार्यक्रम में आइए, सबसे पहले सुने राम प्रकाश पाल और साथियों से ये साक्षरता के रूप में लोकगीत।

सतीश चंद्र और साथियों की आवाज में आपने ये कहरवा सुना। लोक संगीत कार्यक्रम अभी जारी है, एक छोटा सा मिड ब्रेक, उसके बाद फिर से आपसे मिलते हैं कुछ लोकगीतों के साथ।

0: 254 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
2: और भाई साहब क्या हाल है?
3: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
2: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
3: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और मौका है।
4: लोक संगीत में लीजिए, अब सुनिए एक रोपनी गीत श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी की आवाज में।

जी रोकनी लोकगीत आपने सुना श्रद्धा शुक्ला और मुस्कान तिवारी की आवाज में, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम में ये लोकगीत जिसमें स्वर अमरनाथ यादव और साथियों का।

अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम के अंत में शीतला प्रसाद वर्मा और उनके साथियों का गाया हुआ ये लोकगीत। लोकगीत हम आपको शाम 6:30 से भी सुनवाएंगे गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में।

0: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
2: इस विज्ञापन से पहले आपने कुछ लोकगीत सुने। लोक संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है हम सबका हर मन प्यारा आकाशवाणी अयोध्या FM, जिसके कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर सुने जा रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में दिल्ली से समाचार होंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
4: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
3: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस

0: से BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी।

0: this morning. DCP of South Delhi, Anant Mittal, said the fire has been successfully extinguished with the assistance of 8 fire tenders. Rescue and search operations are underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief at the loss of lives in the fire incident. Benchmark domestic equity indices ended with moderate losses today. The BSE Sensex dropped 304 points to close at 74,346. The NSE Nifty slipped 78 points to settle at 23,406. The broader market at the National Stock Exchange also ended in the negative zone. In badminton, India's Ayush Shetty entered the second round of the Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang in a comeback victory, winning 8-21, 22-20, 21-15. India also registered a notable win in mixed doubles with Rohan Kapoor and Ritwik Agarwal, defeating Chinese Taipei's Yang Po Swan and Hu Lingfang. And with that, we end this news bulletin.
1: 6:10 हो चुके हैं. आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 मेगाहर्ट्ज पर अब पेश कर रहा है शाम सुहानी प्रोग्राम आपके रेडियो मीट एजे अमरजीत के साथ, जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है. मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है ये आवाज. तो आज कौन से टाइटल सॉन्ग चलेंगे, अंदाजा लगाइए कुछ. जी हाँ, झुमका. झुमका महिलाओं के द्वारा कानों में पहने जाने वाला एक पारंपरिक आभूषण बाली है और ये आमतौर पर उल्टी घंटी डोम या कटोरी के आकार का होता है. इसके निचले हिस्से में मोतियों या छोटे धातु के टुकड़ों की झालर लगी होती है जो हिलने पर एक मधुर आवाज छन छन करती हुई जहां सुनाई पड़ती है. अब बरेली का झुमका बॉलीवुड फिल्म मेरा साया के गाने के लिए बहुत ही मकबूल हुआ. झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, इसकी वजह से झुमका बरेली का सांस्कृतिक रूप से बहुत ही लोकप्रिय हो गया. शहर की पहचान के रूप में बरेली में एक विशालकाय झुमके का स्मारक भी अब स्थापित कर दिया गया है. जब इतना है तो फिर वो गाना भी तो चल जाए ना, मेरा साया फिल्म का.

और आजकल झुमके पर कौन से गाने बन रहे हैं, ये तो पुराना गाना था, अब नए गाने भी बॉलीवुड के झुमके पर बन रहे हैं। पारंपरिक रूप से सोने और चांदी से बनने वाले झुमके आज के समय में कुंदन, मीनाकारी और मोतियों के साथ कई हल्की और फैशनेबल डिजाइनों में भी मिल रहे हैं। और हाँ, अब तो झुमके में लाइटिंग भी लगने लगी है, आप लाइट भी जला सकते हैं। अंधेरे में जा रहे हैं तो टॉर्च का काम करेंगे आपके झुमके। लेकिन यहाँ काम करने जा रहा है एक और गाना झुमके वाला, अरिजीत सिंह, ज्योति गांधी और रणवीर सिंह की आवाज में, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से।

चलिए जब बात झुमके की हो रही है तो फिर ठुमका क्यों छोड़ा जाए। ठुमके वाला गाना भी चला दिया मैंने क्वीन फिल्म से। आइए सुने ये गाना, लाभ जांजुआ, सोनू कक्कर और नेहा कक्कर की आवाज में।

0: बस इसी तरह से हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। शाम सुहानी प्रोग्राम से अपने रेडियो मित्र अमरजीत को दीजिए अब इजाजत। अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। ये था बॉलीवुड फिल्मी गानों का शाम सुहानी प्रोग्राम आकाशवाणी अयोध्या FM से। शाम के 6:20 होने वाले हैं। बस कुछ ही पलों में दिल्ली से संस्कृत में समाचार होंगे, आइए सुने समाचार।
1: अब आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका साधना शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्य 1,000 कोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। कर्नाटक राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री DK शिवकुमारः शपथग्रहणं कृतवान्। पश्चिम बंगालस्य तृणमूल कांग्रेस दलात् निष्कासित TMC विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् पक्षे प्रायः 60 विधायकाः सन्ति। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डः 21 जनाः मृताः। अपि च भारतं 25,000-तमे वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकं जातम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। केंद्रीय मंत्रिमंडलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु कतिपयाः महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ETF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 कोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77,00,000 आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। एषा सहायता योजना 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तिष्यति। मंत्रिमंडलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियंत्रणार्थं अपि एकस्याः बृहत्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। आर्थिक संबद्धया मंत्रिमंडलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादीप पर्यन्तं 360 अधिक 100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतद् अतिरिक्तं समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रीय राजमार्गयोः 31,000 तथा 31,000-200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रिय आदिवासी सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवती। नवदिल्ल्याम् आयोजितायाम् एकीकृत जनजातीय विकास समवायानां तथा एकीकृत जनजातीय विकासायोगस्य च विस्तार विषयिकायां समायोजितायां सभायां राष्ट्रपतिः अवदत् यत् देशव्यापिनः जनजातीय समाजस्य संस्कृतिः अत्यन्ता समृद्धा अस्ति, अतः जनजातीय समुदायस्य उन्नत्यर्थाः विशेष प्रयत्नाः करणीयाः। तया उक्तं यत् विकास कार्याणि अन्तिम गृहं यावत् अन्तिम ग्रामं यावत् च अवश्यं प्राप्नुयुः। राष्ट्रपतिः चिन्ताम् अपि व्यक्तीकृतवती यत् अद्यापि केचन जनजातीय वर्गाः शासनस्य विविधाभिः योजनाभिः अनभिज्ञाः सन्ति।
2: PM जनमन योजना के तहत जनजातीय समुदाय में भी सबसे पिछड़े समूहों के 20,000 से अधिक गांव तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाने का लक्ष्य है। हम सब जानते हैं 75 जो ग्रुप्स वो है PVTG सबसे पिछड़े, अभी भी और कोई पेड़

0: के मंच के रहते रहते हैं, उनके कोई जमीन नहीं, जमीन था लेकिन रिकॉर्डेड नहीं, इसलिए उनको जमीन देकर घर बनाना, उनके हर चीज के लिए अधिकारी लोगों को जितने कर्मचारी लोगों का दायित्व है।
1: राष्ट्रपति ही सर्वासाम संस्थानाम हितधारकान आहूतवती यत् जनजातीय युवभ्यः सम्मान जनक जीविकायाः तथा प्रत्येकं जनजातीय बालकाय विद्यालय शिक्षायाः सुनिश्चितीकरणं क्रियताम।
0: ये दूरदराज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, उन तो एक रोडमैप बनाना चाहिए, आप कौन सी गांव को कवर किया, कौन सी पॉपुलेशन के थे, ट्राइबल के कितने लोग हैं, कहां तक हम पहुंच पाए, कहां तक नहीं पाए। पढ़ा लिखा होते हुए भी बहुत लोग बहुत चीजें जानते हैं लेकिन वो खुलते नहीं, लेकिन उनको खुलना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, आदिवासी लोगों को आगे लाने के लिए तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा।
1: कर्नाटकस्य नूतन मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः शपथ ग्रहणं कृतवान्। कर्नाटक राज्ये कांग्रेस विधानमंडलस्य दलस्य नेता डीके शिवकुमारः अद्य बेंगलुरु नगरे राज्यस्य 25वां मुख्यमंत्री रूपेण शपथग्रहणं कृतवान्। राज्यपालः थावरचंद गहलोतः तस्मै पदस्य गोपनीयतायाश्च शपथं प्रदापितवान्। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वरः उपमुख्यमंत्री पदेन शपथं गृहीतवान्। अन्ये च द्वादश मन्त्रिणः अपि मन्त्रिपरिषदि सम्मिलिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्यमंत्रिणे शुभकामनाः प्रदत्तवान्। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयम् कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम बंगालस्य पूर्व सत्ता रूढ़ दले तृणमूल कांग्रेस दले आंतरिक मतभेदाः प्रतीताः। दलात् निष्कासितः टीएमसी विधायक ऋतव्रत बनर्जी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य पक्षे प्रायः षष्टि विधायकाः सन्ति। अस्य कथनस्य कारणेन राज्य विधानसभायां सत्ता संतुलन परिवर्तनस्य संभावनां प्रति चर्चाः तीव्राः जाताः। तस्य समूहेन विधानसभायाः अध्यक्षाय रतीन्द्र बोस महोदयाय पत्रं प्रेषितं यत् स्वदलस्य वास्तविक तृणमूल कांग्रेस इति नाम्ना मान्यतां दातुं आग्रहः कृतः। अस्मिन् अन्तरे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता नगरे आयोजितायां जनसभायां भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य उपरि दलविभाजनस्य षड्यंत्र रचनायाः आरोपं कृतवती। एतेषां राजनैतिक घटनाक्रमाणां प्रति संपूर्ण राज्यस्य दृष्टिः केन्द्रीभूता वर्तते। दिल्ली नगरस्य मालवीय नगरे विश्रांति निलये भीषणाग्नि कांडः एकविंशति जनाः मृताः। राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगर क्षेत्रस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्नि कांडे एकविंशति जनाः मृत्युम् उपगताः, अनेके च आहताः अभवन्। दक्षिण दिल्ली आरक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवदत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्येषाम् आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40 अधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्मिन् दुखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। वार्षिक सौर क्षमता वृद्धौ भारतम् अमेरिकाम् अतिक्रमितवत्। भारतं 25वें 2000वें वर्षे विश्वस्य द्वितीयं बृहत्तमं सौर विकास विपणकम् अभवत्। भारते स्थापित सौर क्षमतायाः उल्लेखनीयं 55 गीगावाट परिमितं अतिक्रमितं अस्ति, येन देशस्य 50% जीवाश्महीन इंधन क्षमतायाः लक्ष्यं साधयितुं नियत समयात् पूर्वमेव तस्य राष्ट्रीय निर्धारितं योगदानं पूरयितुं च सहायं भवति। केन्द्रीय नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी वर्यः अद्य उक्तवान् यत् देशस्य सौर विकास गाथा वैश्विक मानदंडानि स्थापयति। अरावली पर्वत श्रेण्याः सीमांकन समीक्षार्थ सर्व

0: सर्वोच्च न्यायालयेन विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। सर्वोच्च न्यायालयेन अरावली पर्वत श्रेण्याः परिभाषा सीमांकन संबद्ध विषयाणां स्वतंत्र समीक्षार्थं उच्चाधिकार युक्तायाः विशेषज्ञ समितेः घटनस्य निर्देशः प्रदत्तः। अस्याः समितेः अध्यक्षतां भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषदः महानिदेशिका कंचन देवी वहिष्यति। न्यायालयेन समितये चालित वर्षस्य अगस्त मासस्य एकत्रिंशत्तम दिनांक पर्यन्तं स्वप्रतिवेदनं समर्पयितुम् आदेशः प्रदत्तः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य केन्द्रीय मन्त्रिणः चिराग पासवानस्य लेखं सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रदर्शितवान्। तेन उक्तं यत् लद्दाख प्रदेशे प्राप्तं अद्वितीयं वेरी फलं नवीनावसराणां विकासस्य प्रतीकः अस्ति। लेखे लद्दाखस्य उद्यमशीलतया तथा मूल्यवर्धनद्वारा विकासस्य नूतनद्वाराणि उद्घाटितानि इति प्रकाशितम्। इति वार्ताः।
1: ये है अवध की शान आकाशवाणी अयोध्या एफएम 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। 6:30 हो चुके हैं, आइए शुरू करते हैं लोकगीतों का एक और कार्यक्रम गूंजे स्वरगांव के नाम से, बस इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: पहले इस कार्यक्रम में ये पूर्वी सुनिए हैदर अली जुगनू और उनके साथियों की आवाज में।

चोरवा असमन होई की उठाई ले कोरवा। गलियन में घूमे दोनों चित चोरवा असमन होई की उठाई ले को।

रेडियो गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अयोध्या एफएम से गूंजे स्वर गांव के कार्यक्रम में। अगला लोकगीत सुनने से पहले आपको हीट वेव यानी तेज गर्मी और लू के बारे में कुछ बता दें कि कैसे बचें इससे। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक तेज धूप में जाने से बचें। चेहरे और सर को ढककर बाहर निकलें, हर घंटे हल्का ठंडा पानी पीते रहें, छाछ नारियल पानी या नींबू पानी ORS लेते रहें, 8 से 10 गिलास पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। खाली पेट घर से बाहर ना निकलें, चक्कर या कमजोरी महसूस होने पर तुरंत आराम करें और धूप में देर तक काम भी ना करें। इस मौसम में हीट वेव यानी तेज धूप और लू से अपना बचाव करके ही अच्छा हो सकता है। हल्के ढीले सूती और हल्के रंग के कपड़ों को पहने, हरियाली और छायादार जगहों पर रहें, गरिष्ठ भोजन तेल मसालों से परहेज करें, चाय और कॉफी का प्रयोग कम से कम करें। शरीर में किसी भी असामान्य लक्षण होने पर डॉक्टर से या फिर तुरंत अस्पताल से संपर्क करें। और अब आइए सुने अगला लोकगीत, एक नक्ता, आवाज पद्मा गिडवानी की।

0: नूतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: गूंजे स्वर्गों के कार्यक्रम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से आपने सुना। शाम के ठीक 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: पंचो जय हिंद। पंचो कहा गवा है ना कि खेती करे जान के और पानी पिए छान के। पंचो हमार सबके प्रमुख व्यवसाय जो है ना वो खेती है, और हम पंच करत भी चला रहा है। मुला देखा जाए ना तो कृषि व्यवसाय में जो विविधता जो है उका लावे बदे कुछ नवा अपने सब करे का पड़े। हमार कहे का मतलब खेती से हट के नवा आय बढ़ावे ताई नवा काम करे का पड़े हमें सबका। हमार कहे का मतलब खेती ही ना है, कुछ व्यवसाय का है हम सब है अपनाए कि अपनी आमदनी में चार चांद लगा सकी थी। जेमा कईयो चीज शामिल हो सकत है, जैसे मुर्गी पालन भय, बकरी पालन भय, मछली पालन भय, पशु पालन भय। इका सब कही के हम सब है जो अन्य गैर कृषि विकल्प का हम सब ही का अपनावे का परे। ये से हुए का कि किसान अपन उत्पादन बढ़ावे में सक्षम हुए, जैसे उच्च स्तर के आय अर्जित करे में मदद मिले। भाई का यो मेर के अगर हम सब ही व्यवसाय और खेती पाती के साथ जुड़ा रहा तो हम जाने थे कि चारों वारी से हमें सबका मुनाफा ही मुनाफा दिखाई पड़े, और एक साथ साथ फसल पद्धति में भी अपने सबके बदलाव हुए। और यहाँ तक कि विविधीकरण हम सब ही पंच जाने थे कि दुई मेरवा से होते, एक तो एक फसल के खेती करे के बजाय कईयो फसल के खेती या मिश्रित जगह कहा थी कईयो मेरवा के खेती कहा जाता है, मिश्रित खेती कहा जाता है। यह मेरवा के खेती विशेष रूप से जो ना अपन छोट किसान भैया लोग हैं वह करते हैं, जोन पंच के लगे भूई कम बाटे वह ई विधि अपनाए के अपन आय बढ़ा सकते हैं, जे का जो भाई 36 विधि कहा जाता है। तो भाई देखो अगर कुछ ऐसा विधि है तमाम हम सभी जानकारी लेके काम कीजिए तो हम जाने कि थोड़के भूई में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हम सभी कमा सके थी। और भाई देखो एक होता है कि बहुफसली खेती के साथ औद्योगिकरण का शामिल की जा सकते हैं, तो भाई देखो यह मेरे वास्ते एक कदम आगे बढ़ के बागवानी भय, कृषि वानिकी भय, पशुपालन भय, सुगंधित पौधा के खेती कह के पुरार लाभ हम सभी ले सकी थी। दूसरी बारी अगर देखा जाए तो कारण का है कि भारत में उच्च मूल्य वाली फसल के मांग बढ़त जाती है, जैसे किसान पंच कहें अवसर मिलाता है जे का अपनाए के हम पंच अपन आमदनी बढ़ा सकी थी। यही मारे कृषि जगत में कृषि विविधीकरण के अवधारणा तेजी से लोकप्रिय हो चली जाती है। कृषि विविधीकरण एक खेते में देखा जाए तो मेरे मेरे के जोन फसल है वो के उगावे के प्रथा है। ऐसे हुए का कि जोखिम कम हुए, माटी के स्वास्थ्य में सुधार हुए, मुनाफा बढ़ावे में मदद मिले, कीट पतंगा से बचाव हुए और बीमारियन के बढ़वार से बचा जाए। ये सब अगर हम सभी कृषि विविधीकरण अपनाई थी तो हम जाने थे कि ये सब संभव हो पाए। अगर हम पंच कृषि विविधीकरण अपनाऊ तो ये हर मेरवा से हमारे सबके बदे फायदेमंद रहे, जैसे किसान जो ना है उपभोक्ता और पर्यावरण का लाभ मिले, ये टिकाऊ और स्वस्थ कृषि पद्धति का बढ़ावा देते भय बाजार के जो उतार चढ़ाव है वो के साथे अपने जलवायु पर भी निर्भर करता है। यही हमारे हम पंच का चाहिए कि आपन जो पारंपरिक खेती है वो के तरीका अपनाई और अपन जो ये तकनीकी जमाना है, तकनीकी विधि है, एक अपनाए के ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सका जाता है।

0: तो भाई देखो, हम सबका अपने चौगिरदा सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं कर रखा है। अगर कोनो छोट मोट व्यवसाय रोजी रोजगार अपना लेन जावा जाता है तो हम जाने थे कि पूरा हर लाभ चारों वर्ष से मिल सकत है। और भाई देखो, आमदनी होबे करे, साथे खेती पाती हुए अपन परिवार भी बढ़िया बना रहे। और भाई देखो, अगर अपने सबका जानकारी लिए का है तो जानकारी बदे अपने सबका चौगिरदा पंचायती में जाए का है, गोष्ठी में जाए का है, हर जगह ही जाए के अपन जो ने जानकारी लिए का है। अपने गांव में चौपाल लागत है और प्रधान भैया के माध्यम से नहीं, कईयों मेर के जो अपन कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर भैया आवत है, या कोनो मेर के अगर व्यवस्था है अपने पंचन का कोनो योजना का लाभ ले बदे, तो भैया लोगे बतावत है। सिर्फ और सिर्फ अपने सबका हुआ जाए के ओके जानकारी ले के ओके फायदा उठावे का है। तो भाई देखो, जहाँ तक बात है जानकारी के, तो आज अपने पंचायती में एक बात कही है, ग्राम विकास में प्रधानों की भूमिका, यह विषय पर जो प्रधान भैया हैं, ये भैया का नाम है श्री अमरनाथ यादव, जो उनकी मुमताज नगर से हैं, ये भैया प्रधान है, और इनसे बतवाते हैं राम प्रकाश पांडे भैया। तो चलो इनसे जाना जाए कि गाँव के विकास
1: पंचे देखा, अपने सभी समय समय पर ना तमाम जानकारी लेके आई थी, तो ऐसे ने जानकारी लेके आई आज कि ग्राम विकास में प्रधानों की का भूमिका रहत है। अपने बीचे में है अमरनाथ यादव भैया, जो प्रधान प्रतिनिधि हैं मुमताज नगर ब्लॉक मसौदा जिला अयोध्या से। तो सबसे पहले तो यादव भैया, आपके हमारी पंचायती में स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: आपसे हम ये जानना चाहिए थी ना कि कैसे मन में आवा कि हमें चुनाव लड़ाई का है, कहे से मनाई जब पहाड़ लिखा तो पहले तो ना ही सोचा मुस्किया इंजन पंच भैया सुना तो ये जान जाए। हाँ बताओ।
2: हम लोग विद्यालय से शुरुआत किए थे, साकेत महाविद्यालय में जब पढ़ रहे थे
1: जी,
2: उस बीच छात्र संघ का चुनाव होता था।
1: इस सन क्या के बात हुई याद है?
2: ये सन हम लोगों का जो 2003 में हमने एडमिशन लिया था।
1: अच्छा,
2: और 2003 में बीए में एडमिशन लिया। उस समय छात्र राजनीति बहुत अच्छी चल रही
1: थी
2: और हम लोग राजनीति में लोगों को लड़ते हुए देखते थे, तो हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग भी चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उस समय थोड़ा से आर्थिक कह लीजिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरी चीज जो है, नए थे, युवा थे, तो समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वहां से हम पढ़कर जब निकले तो हमको लगा कि हमको भी राजनीति करनी है, हमको भी लोगों की मदद करनी है, समाज सेवा करना है, लोगों के लिए खड़ा होना है, संघर्ष करना है।
1: हुआ दिल के अरमा दिल में दबके रह गए वाली कहानी है,
2: क्योंकि उस राजनीति से जुड़े नहीं थे, इसलिए वहां से सीख मिली है। लेकिन ग्रामीण परिवेश था, गांव के निवासी थे, गांव में प्रधान पद का चुनाव होता था, क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता था, जिला पंचायत का होता था
1: जी।
2: तो दिल में इच्छा थी कि हम भी अपने ग्राम सभा का नेतृत्व करने का हमको मौका मिले, प्रधान बनने का मौका मिले। इस अरमा के साथ जो है लोगों के सुख दुख में शामिल हुए, काम करना शुरू किए, मेहनत करना शुरू किए, लोगों की जरूरतों पे खड़े हुए, पूरा समय निभाए, लोगों ने हमको सम्मान दिया, महसूस किया
1: जी
2: कि आदमी ठीक है, मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ईमानदार है, वफादार है, वक्त जरूरत पर खड़ा होगा, और लोगों के प्रति हमारी ईमानदारी वफादारी काम आई, और लोगों ने हमको जो है इस बार प्रधान बनाकर, हमारी पत्नी प्रधान है, चूंकि महिला सीट थी तो अच्छा। इसलिए हमारी पत्नी को ही मौका मिला, उनको प्रधान बनाए।
1: एक बात बीचो रोका चाहिए, जैसे आप कहें इस बार, एक मतलब एक को बार हारो रहे का
2: जी? हाँ। पिछली बार हम चुनाव लड़े थे तो कुछ वोटों से हार गए थे,
1: अपने नाम से तब लड़े रहे
2: जी, वो हमारे तो चूंकि उस समय पुरुष सीट थी
1: अच्छा,
2: तो इसलिए हम चुनाव लड़े थे, हार गए थे,
1: लेकिन उम्मीद बंधी
2: की उम्मीद बंधी थी, और जो है जुनून था मन में, तमन्ना थी कि हमको इस ग्राम सभा का नेतृत्व करना है, इसलिए चुनाव लड़े, और दोबारा जनता ने विश्वास जताया, हम इस विश्वास पर खड़े उतरे और हमको प्रधान बनाया।
1: बिल्कुल, एक बात हम जानना चाहते ना कि जैसे मैंने कहा था कि भारत के आत्मा गांव में बसत है
2: जी,
1: और गांव प्रधान के अंडर में आवत है
2: जी,
1: है कि नहीं? तो आपसे जानना चाहते कि कैसे गांव का विकास प्रधान कह सका थी?
2: देखिए, ग्रामीण परिवेश तो हम तो हमारी ग्राम सभा शहर से लगभग नजदीक है, सटी हुई ग्राम पंचायत है,
1: मुश्किल से 5-7 किलोमीटर
2: 5-6 किलोमीटर के बीच में इर्द गिर्द है, और बहुत सुंदर ग्राम पंचायत। हमको ग्रामीण परिवेश और शहर का परिवेश दोनों का मौका मिलता है, दोनों का हम लाभ ले रहे हैं। आप जान लीजिए कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जल का प्रयोग कर रहे हैं, और खुले जो है मौसम में और मैदान में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेती से लेकर और शहरी परिवेश दोनों का लाभ ले रहे हैं। दूसरी चीज जो है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है हम लोग जो महसूस कर रहे हैं
1: जी,
2: कि बहुत सुंदर हमारा गांव, जो हम जब इससे पहले जो भी प्रधान वो भी बहुत अच्छा काम किए, लेकिन हम जब से पद पाए हुए हैं

0: बहुत सुंदर काम, जो रास्ते गलियां नालियां जो भी जर्जर थी, जो भी गड़बड़ थे, उसको बनाने का काम किया गया सुचारू।
1: प्रधान जी एक बात और जानना चाहते, जैसे आप कहना कि गांव में ऐसे कौन कौन विकास की योजना चलती है, जैसे फार्मर रजिस्ट्री, पेंशन, इनके सबके बारे में क्या कहा चाहिए?
0: जी गांव में इस समय तो काफी योजनाएं चल रही है, जैसे इस समय जैसे किसान सम्मान निधि योजना तो चली रही है, साथ में फार्मर रजिस्ट्री चल रही है, और किसानों को देखिए एक एक खतौनी में 55-56 लोगों का नाम होता था, उसमें अंश निर्धारण नहीं होता था
1: जी,
0: तो स्पष्ट नहीं था किसकी कितनी भूमि है।
1: अब इस तो समय निर्धारण मतलब सामने आए, अंश निर्धारण रकबा है बगल लिखा
0: जी, अंश निर्धारण होकर बहुत सुंदर काम चल रहा है, अंश निर्धारण होकर एकदम क्लियर हो जा रहा है किसके हिस्से में कितनी जमीने हैं,
1: मतलब अपने हिस्से न ज्यादा ले सका न ज्यादा दे सका, नहीं मनाई रात रहा या किससे भी दिए तरह दो हिस्सा
0: जी, ऐसे होता था कि जो है लोग जो है अपने हिस्से से ज्यादा जमीन बेचते थे, बाद में वाद विवाद होता था
1: जी।
0: अब लेकिन जब से अंश निर्धारण हो जा रहा है, आप जान लीजिए कि कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं हो रही, यहाँ तक कि अंश निर्धारण बिना किए खतौनी पे बिना चढ़े अब बैनामा यानी कि रजिस्ट्री नहीं हो रही।
1: हाँ, ना सकत, बिल्कुल सही कहा था। हम तो देखी थी ना कि गाँव में जब आवत है लेखपाल भैया तो बगिया निर्धारण में बड़ा झंझट आवत है कि कितना हिस्सा होता है, बहुत हिस्सेदार,
0: बड़ी मेहनत कर रहे हैं लेखपाल इस समय जो है, लेकिन हम लोग भी सहयोगी है, हमारे साथी भी लोग, हम लोग भी बड़ी मदद करते हैं, हम लोग बताने भी काम करते हैं परिवार की, चूंकि सजरा जो बनता है उसमें हम लोग चूंकि उस गांव के निवासी हैं, हमारे दादा बाबा सब लोग निवासी हैं, तो इसलिए हम लोग जो है जानते हैं, तो हम लोग बताने का काम करते हैं, तो इसलिए सुचारू रूप से चला और बहुत सुंदर तरीके से जो है ईमानदारी से सबका अंश निर्धारण हो जा रहा है।
1: ये तो है के बात फार्मर रजिस्ट्री, अंश निर्धारण, लेकिन दूसरी बात अगर करी पेंशन के
0: जी,
1: चाहे विधवा पेंशन चाहे विकलांग पेंशन है कि नहीं
0: जी, चाहे जी चाहे विधवा चाहे विकलांग चाहे जो बटे वृद्धा पेंशन, सारी योजनाएं हम लोग ऑलरेडी जो सरकार द्वारा चल रही है।
1: कैसे जुड़ जाते पंच भैया, कैसे आप सब भूमिका निभावत है जोड़े में?
0: हम लोग जैसे क्या है, जैसे हमारे गांव में मान लीजिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं वृद्धा पेंशन की
1: जी,
0: वृद्धा पेंशन जब जो भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो जो 60 साल के ऊपर हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना हो तो उन लोगों को उसमें पात्र माना जाता है, तो उनका जो है हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उनका आधार कार्ड परिवार रजिस्टर की नकल लगवा के ऑनलाइन आवेदन करा देते हैं, आवेदन करने के बाद अपने पंचायत ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर और जो है सचिव महोदय के हस्ताक्षर के द्वारा वो जो है ब्लॉक पे चाहे जमा करा दें और चाहे सीधा डायरेक्ट जो है विकास भवन में जो है समाज कल्याण ऑफिस में जमा करा दें, और फिर उसके बाद जो है जब सेंक्शन तो ऑनलाइन होने के बाद में ही मान लिया जाता है, लेकिन जब बजट आता है तो पैसा आ जाता है।
1: बिल्कुल सही बात कह दी, बिचौलिया वाला काम लगभग खत्म है?
0: नहीं, बिचौलिया कोई मतलब नहीं है, जहां बहुत लोग जैसे जो हम लोग जैसे जो ईमानदार प्रधान जो अच्छे प्रधान है, बहुत खैर अब तो युवा बहुत पढ़ लिख कर लड़के आए हैं, बहुत नौजवान साथी बहुत अच्छे आए हैं, आप जान लीजिए कि बहुत शत प्रतिशत मेहनत कर रहे हैं लोगों लाभ पहुंचाने के लिए, जनता के लाभ के लिए, चाहे पेंशन की योजना चाहे आवास की योजना हो चाहे नाली निर्माण सड़क निर्माण जो भी समस्या है, स्ट्रीट लाइट स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और सारी चीजों की व्यवस्था, बहुत अच्छे काबिल काबिल लड़के पढ़कर और जो है संघर्ष करके जीत कर आए हैं, बहुत अच्छा जो है।
1: अब बहुत सही कहता है, खास करके अगर बात करी ना जैसे गांव कहना कि गांव में अपने देश का आत्मा बसत है, ऐसे गांव

0: निर्माण, जो भी समस्या, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था और सारी चीजों की व्यवस्था, बहुत अच्छे काबिल काबिल लड़के पढ़कर और जो है संघर्ष करके जीत कर आए हैं। बहुत अच्छा जो है,
1: बहुत सही कहता है। खास करके अगर बात करी ना, जैसे गांव कहना कि गांव में अपने देश के आत्मा बसत है, ऐसे गांव में अपन प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूलों बसत है।
0: बिल्कुल,
1: और वहीं से हमारा नर्सरी निकलत है। वो में प्रधान के बड़ी महती भूमिका रहते है, भोजन से लेकर तमाम चीज देखे में कैसे होकर निभावत है, ये बताओ।
0: ऐसा हम लोग जैसे जो है, पहली बात तो जो हमारे विद्यालय है उसका जो प्रचार प्रसार शिक्षकों के माध्यम से, हम लोग अपने माध्यम से सारे लोगों के तरीके से करते हैं, और शिक्षा की जो स्तर, जो व्यवस्था है उसको शिक्षकों से जानते रहते हैं, हम लोग महसूस करते रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनके परिवार में लोगों से बातचीत करना और भोजन पानी वगैरह जो व्यवस्था है उसके लिए, जैसे हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जो हम लोगों के द्वारा मिली हुई है, व्यवस्थित जो हम लोगों का चार्ट बना है उस हिसाब से, मानक के हिसाब से हम लोग भोजन बनवाते हैं और बच्चों को खिलवाते हैं।
1: अमरनाथ यादव भैया, एक बात और हमें याद आती, आपके स्कूल तो इंग्लिश मीडियम वाला हुई ना?
0: जी, हमारा जो है स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया है।
1: हाँ?
0: और हमारे यहाँ संख्या भी बहुत अच्छी है, और हमारे यहाँ बहुत काबिल काबिल बच्चे भी हैं। हमारे शिक्षक बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं।
1: बच्चों के भेजो गाँव से और यहीं से बगले आए, तो यही लिए जो ना आप कहें कि बड़ा अच्छा बेनिफिट है के।
0: जी,
1: तो ये से इलाका में का सोचा था
0: हमारे यहाँ।
1: हाँ,
0: हमारे यहाँ स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जो है किसी भी संस्था में एडमिशन के लिए जो है आवेदन करते हैं और एंट्रेंस फॉर्म भरते हैं और परीक्षा होती है, तो 100% क्वालिफाई कर रहे हैं और बढ़िया एडमिशन मिल रहा है जिस स्कूल में चाह रहे हैं। हम लोग भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं जिस स्कूल में आज हम लोग अपने नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान पद के द्वारा, उसी स्कूल से हम भी पढ़ के निकले हैं। कहीं ना कहीं बहुत काबिले तारीफ तब भी था, आज भी है। हमारे स्कूल में गेम से लेकर शिक्षक सारी व्यवस्था करा रहे हैं सब। अब तो ऑनलाइन भी व्यवस्था हो गई है, हम लोग तो ऑलरेडी उस पर क्या कहते हैं LED पे पढ़वा रहे हैं, सारी जानकारियां मिल रही हैं, बच्चे काबिल हैं, बहुत पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, उनका तकनीकी शिक्षा से लेके और आज के जो शिक्षा है उसे जोड़ा जाता है शिक्षा पद्धति से ही। अच्छी शिक्षा पद्धति से अच्छे लड़कन के गुणवत्ता में विकास हुए ना, तो निश्चित आगे बढ़े। ग्राम सभा के विकास में प्रधान के आपन का भूमिका अपमानते का कहा चाहिए?
0: हम लोग ग्राम सभा में जो है
1: जी,
0: जैसे आप जान लीजिए कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आती हैं, एक प्रधान उसको उसका दायित्व करता है, निर्वहन करता है। जनता जो हमारी ग्राम सभा की जो निवासी हैं, जिन लोगों को उनका लाभ दिलाती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना आप बता ही दिए थे जो है, विधवा वृद्धा और विकलांग पेंशन, और इसके साथ साथ जो भी स्ट्रीट लाइटें, लाइट और जो है शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, ये सब हम लोग जो है बखूबी करते हैं। और जो है हम लोग हर लगभग जो है 2 महीने पे हम लोगों के चौपाल के माध्यम से हम लोग जो है अपनी एक मीटिंग बैठक करते हैं, जिसमें जो जन समस्या उसको भी सुनते हैं। फिलहाल हम तो लगभग 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, कहीं कोई विशेष दिन ना हो तो नहीं तो लगभग हम अपने पंचायत भवन, अपने कार्यालय पर ही बैठते हैं और उपलब्ध रहते हैं। और हमें लगता है कि सारे प्रधान जो भी जीत कर आते हैं, जो भी, तो लगभग इस समय तो हम देख रहे हैं कि सब सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोगों के अंदर ये लगन है कि फिर से मौका मिले, काम किया जाए, विकास काम कर रहे हैं। जो भी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा लागू हो रही है उसको हम लोग लागू करवा रहे हैं, लोगों को लाभ दिला रहे हैं।
1: बिल्कुल, काम अपने आप दिखाते हो, मैं कुछ कहा जरूरत ना, गाँव भाई जिस और जवानी चलती है
0: उस और जमाना चलता
1: है कि नहीं, तो ये सबसे अच्छी बात यह है। आप ग्राम में विकास में प्रधान के का भूमिका रहते हैं? अमरनाथ यादव भैया, आप हमारी पंचायती में इतनी बढ़िया जानकारी दी, प्रधान प्रतिनिधि रहे मुमताज नगर ब्लॉक मसौदा जिला अयोध्या से, खूब बढ़िया बात बताई। निश्चित जोन पंच भैया सुनत हुई हैं, यह एक करियर बना के बहुत अच्छा क्षेत्र है,
0: बहुत अच्छा
1: और समाज सेवा कह सकते। आप हमारी पंचायती में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पंचो देखो, अभी आप सुनिए कि ग्राम विकास में प्रधानों की भूमिका का रहते है, कैसे होते है, ये का बताए श्री अमरनाथ यादव भैया, जो उनकी प्रधान रहे मुमताज नगर ब्लॉक मसौदा जिला अयोध्या से। ऐसे फरिया फरिया पूछे राम प्रकाश पांडे भैया, हम जानते थे कि पंचे सुनिन हुई हैं और कैसे का करे का है, कोनी बाती पे गौर करे का, हमारे सबका कहाँ जाए का है, कैसे ओके लाभ लिए का है, ये का जानकारी लेन हम जानते थी कि एक लाभ उठाइए जरूर। लेकिन भाई देखो, समय जो है हमारे पंचन के है, अब मन मनसाहन के वारी चला जाए और पंचन मरे अरुण कुमार कोरीवा साथी के स्वर में एक किसानी गीत लेके आए हैं, तो चलो ये सुना जाए।
3: क्या वा चली गोरिया, क्या तवा की ओरिया, अरे कहनावा पे हालावा उठाए के, अरे कहनावा पे हालावा।

0: पंच देखो, हमें सबका अपन खेती किसानी में तन मन धन लगाए रहे का। अगर जे पंच अपन सोच सकारात्मक राखीस, ऊ जान लिया अपन जो ने तरक्की कीस, उन्नति कीस और चौगिरदा मुनाफा लीस। तो भाई देखो, जैसे ये किसानी गीत में अरुण कुमार कोरी उनके साथी कह रहे, तो भाई देखो, खेती पाती करे का, चाहे कोनो रोजी रोजगार करे का, काम बूत करे का, मन से कीन कीन जाए तो हम जाने थी कि ज्यादा बढ़िया रहे। और भाई देखो, मन से कीन गवा काम में आगे हमें सबका उन्नति मिलत है। लेकिन भाई देखो, बात बत कही तो हुआ रहे, एक अंतराल के बाद अब पंचन से फिर मिले थे। पंचे बाजा खोले रहे, कहूं जाइए ना।
1: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।

0: लाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पंचो देखो एक बार फिर आप सबसे जो ने बात बात कही तो भाई देखो हम सब ही का काम बूत जांच पर के करे का और जो अपने खेते पाती में अनाज पैदा किन गए बार वो के भाव ताव भी जाना बहुत जरूरी है और मौसम भी देखे का कैसे के मौसम के अनुरूप हम सब ही खेती पाती भी करी थे। तो भाई देखो बाजार के बात किन गए तो अयोध्या मंडी से जोन बाजारी के भाव मिला है कुछ यही मेर से है पंचन का बताओ। चलिए जोन चावल कामन रहा 3050 रुपया प्रति कुंटल रहा, गेहूं दड़ा रहा 2585 रुपया प्रति कुंटल, मक्का पीली वाली रही 2400 रुपया प्रति कुंटल, जेमा उरद काली रही 9200 रुपया प्रति कुंटल, चना देसी रहा 6400 रुपया प्रति कुंटल, मसूरी रही 7150 रुपया प्रति कुंटल, जेमा अरहर की दाली रही 10900 रुपया प्रति कुंटल, आलू सफ़ेद रही 720 रुपया प्रति कुंटल, प्याज ललकी वाली रही 1200 रुपया प्रति कुंटल, टमाटर रहा 1250 रुपया प्रति कुंटल, लहसुन का भाव रहा 7000 रुपया प्रति कुंटल, जेमा तरोई रही 1400 रुपया प्रति कुंटल, खीरा का भाव रहा 1780 रुपया प्रति कुंटल, बैगन रहा 2080 रुपया प्रति कुंटल, हरी मिर्च रही 3200 रुपया प्रति कुंटल, जेमा कद्दू रहा 1450 रुपया प्रति कुंटल, अदरक रही 7060 रुपया प्रति कुंटल, शिमला मिर्च रही 2690 रुपया प्रति कुंटल, भिंडी के भाव रहा 1650 रुपया प्रति कुंटल, लौकी के भाव रहा 1600 रुपया प्रति कुंटल, जेमा करेला के भाव रहा 1370 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से, केला पका वाला रहा 2780 रुपया प्रति कुंटल, नींबू रहा 7200 रुपया प्रति कुंटल, पपीता 2780 रुपया प्रति कुंटल, जेमा अनार के भाव रहा 7500 रुपया प्रति कुंटल, गुड़बट्टी वाला रहा 5100 रुपया प्रति कुंटल, चीनी के भाव रहा 4130 रुपया प्रति कुंटल। ये तो रही बाजारी के भाव अयोध्या मंडी से, लेकिन पंचन का लगे हाथ मौसम की जानकारी दे चली। अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो उनकी सामान्य से 0.9 डिग्री कम रहा, न्यूनतम 27.0 जो उनकी सामान्य से 0.8 डिग्री ज़्यादा रहा, आर्द्रता अधिकतम एक रही 82%, न्यूनतम 46%, हवा की गति 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक दिशा रही दक्षिणावा पछुआवा, पूर्वानुमान है कि आवे वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्का बादल छाए रहे व वर्षा न होए के संभावना है, वर्षा न होए सामान्य गति से जो हवा है वो पूर्वा और पछुआ चले के संभावना बटे। ये तो रहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या से जो मौसम के

0: जानकारी मिली थी पंचन तक पहुंची, लेकिन पंचे जो ने अपन ये गर्मी के मौसम में सतर्क और सावधान रहें, घामे में काम कतई न करें, बहरे से आवें धूपे में से काम करके तो हौक के पानी ना पिए का है, मुड़े पे गमछा बांध के चले का, अगर बहरे निकले तहन तो गाड़ी से निकले तहन तो हड़बड़ाए के ना चले का है, काहे से धूप का तेज असर जो ना है हमारे सबके ऊपर परत है, बहरे निकली तो छाता लेके निकली साथे में, अगर हम सभी चले तहन तो बोतल साथे ले रही पानी के, कहे से पानी के कहूँ भी जरूरत पड़ सकत है, तो हमें सबका पानी साथे ले रहा है कहे और सोच विचार के चले कहे, कोनो जरूरी नहीं, अगर कहूँ बहुत जरूरी है तब धूप में निकली, नहीं तो संझा या सवेरे हम सभी निकली, लू से बचे कहे अपने सबका, ओके बदे ठंडा पानी पियत रहे चाहिए, ठंडाई लेब जरूरी है भाई, साथ ही साथ जो उन्हें ज्यादा गरिष्ठ भोजन न करी, कहूँ ज्यादा चटपटा ना खावा जाए, जोन भोजन की जाए सुपाच्य रहे, हल्का हुए जोन आसानी से अपने देह में पच जाए, तो भाई देखो ये सब छोट छोट बात इनका ध्यान में रखा है कि अपने लड़का बच्चा का जोन पुरनिया है वनों पर ध्यान रखे का है और गोरु बछरू का भी ध्यान रखे का है, मूला भाई देखो समय पर समय के बात की जाए जो ज्यादा बढ़िया रहता है, समय कहते है कि अब जो है काल के कार्यक्रम बताओ चला जाए, काल कार्यक्रम हुए किसानवाड़ी जेमन सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन रहे, विषय रहे अधिक उत्पादन हेतु उन्नत मृदा प्रबंध क्यों और कैसे, यह विषय पे बताई है डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा पंच भैया क्रेवदे फोन लगाइए, अपनी समस्या के समाधान करिए और जोन भी जानकारी लेख हुए इस डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा भैया से ले है और करता है, हमारे पंचन का फोन लगा पर 73-76-80-40-90 पर सीधे डॉक्टर भैया से बात हुई, तो भाई देखो समय पर समय के बात किंजा घड़ी ना कहती है और आगे बात बतनी किंजा फिर कहियो मिला जी, तब तक विमला का दे अनुमति, जय हिंद।
1: किसान भाई बहनों ने अभी अपना कार्यक्रम सुना कृषि जगत आकाशवाणी के अयोध्या एफएम से, और अब आपको कार्यक्रम रूपरेखा में पहले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। विविध भारती के कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:30 से और 10:30 से, हमारे स्टूडियो से गीत गुंजन प्रोग्राम पेश किया जाएगा 8:15 से, 9:15 से महफिले गजल प्रोग्राम में चंद गजलें सुनिएगा और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा 10:30 तक, और अब कल गुरुवार 4 जून के कार्यक्रमों के बारे में सुन लीजिए। कल प्रातः 7:15 से कार्यक्रम रूपरेखा में दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। 7:30 से अमृत कलश कार्यक्रम होगा, 8:15 से सुर संगम कार्यक्रम सुनिएगा, 8:30 पर आप सुनेंगे प्रणाम अयोध्या कार्यक्रम, आज की बात का टॉपिक रहेगा जिसमें मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के माध्यम से शैक्षिक अवसंरचना को उन्नत करना। इसके बाद दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर अमित तिवारी से आरती पांडे की बातचीत का विषय रहेगा पायरिया की समस्या और उपचार। समाचार पत्रों से सेगमेंट में अयोध्या मंडल की लोकल खबरें दी जाएंगी और फिल्मी गाने सुनवाए जाएंगे। आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम जो व्हाट्सएप संदेशों पर होता है, ये प्रोग्राम सुबह 9 आप सुनेंगे और 9:30 से हेलो अयोध्या प्रोग्राम पेश किया जाएगा। 10 से NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित उमंग कार्यक्रम आप सुनेंगे। 10:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। दिन 11:55 से आजकल आप सुन रहे हैं विशेष श्रृंखला भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 साल, इसका तीसरा एपिसोड आपको कल सुनवाया जाएगा। आकाशवाणी अयोध्या एफएम से दिन 12:30 से लोकगीतों का लोकरंग कार्यक्रम होगा। दिन 1 से कुछ तुमने कहा फेसबुक श्रोताओं के लिए फरमाइशी प्रोग्राम पेश किया जाएगा। कल दिन में 2 गीतांजलि प्रोग्राम सुनिएगा। 2:15 से दिल्ली से समाचार होंगे। 2:30 से नारी जगत कार्यक्रम में चर्चा का टॉपिक आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दूसरा टॉपिक बने किशोरी बेटी की सहेली। इसके बाद गीतों भरी कहानी का टाइटल हमारा बचपन न छीनो। किचन टिप्स में LPG गैस बचाने के टिप्स दिए जाएंगे। दोपहर बाद 3 से लेकर 5 तक केंद्रीकृत विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से होंगे। युवावाणी में शाम 5 का लाइव फोन इन प्रोग्राम युवा संवाद का टॉपिक रहेगा पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली आज की आवश्यकता। स्टूडियो का मोबाइल नंबर 73-76-80-40-90। 7376

804090 को मिलाकर आप अपने विचार दे सकते हैं। लोक संगीत कार्यक्रम 5:30 से शाम सुहानी 6:10 से गूंजे स्वरगांव के कार्यक्रम 6:30 से किसानवाणी में कल 6:45 पर लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन के विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सुभाष चंद्र वर्मा, जिनसे आप उन्नत मृदा प्रबंधन क्यों और कैसे इस विषय पर किसान भाई बहन 7376-8040-90 नंबर मिलाकर बात कर सकेंगे। अलावा इसके बाजार भाव मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। आकाशवाणी अयोध्या FM स्टूडियो से रात 8:15 से गीत गुंजन प्रोग्राम, 9:15 से महफिल गजल प्रोग्राम और 9:30 से लाइव फोन इन प्रोग्राम फरमाइशी फिल्मी गानों का हेलो अयोध्या पेश किया जाएगा। अभी आप आज के शेष और कल के कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। कार्यक्रम रूपरेखा समाप्त हुई। यह है अवध की शान आकाशवाणी अयोध्या FM 101.9 MHz और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। 7:18 हो चुके हैं। बस कुछ ही देर में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से ठीक 7:20 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे। समाचारों का कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग

0: कवर करने वाले हैं।
1: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
3: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी अयोध्या एफएम से बोल रहे हैं 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। 7:31 हुए हैं। अब से लेकर 8:15 तक हम आपको सुनवाएंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

अभी आपने सोल्जर फिल्म का गाना सुना सोनू निगम की आवाज में। आइए अब सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में मन फिल्म का गाना। गीत समीर का है, संगीत संजीव दर्शन का।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने इंद्रधनुष के अंतर्गत रागों पर आधारित कार्यक्रम राग अनुराग। पहला गाना हमने राग अहिर भैरव पर लिया है, इसे गाया है मन्ना डे ने। गीत शैलेंद्र का है, संगीत एस डी बर्मन का, फिल्म का नाम मेरी सूरत तेरी आ

अगला गाना गौड मल्हार राग पर आधारित है, इसे हमने लिया है फिल्म बरसात की रात से। गायक कलाकार हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट, गीत साहिर का है, संगीत रोशन का।

आइए अब सुनते हैं राग मिश्र शिवरंजनी का ये गाना. इसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी बर्मन का है. फिल्म का नाम है महबूबा

0: आज की हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं नंदलाल पाठक की लिखी झलकी चिट्ठी। निर्देशक हैं सीबी मंडावी।
1: सिद्धू भैया, आपकी चिट्ठी आई है, गेट पर जाकर ले लेना।
2: अच्छा अच्छा, अभी जाता हूँ।
3: अरे यहाँ तो बहुत सी चिट्ठियां हैं, इनमें मेरी कौन सी है ये किससे पूछूं? वो जो लाल पीली है वो तो अपनी नहीं हो सकती, ये लंबा लिफाफा भी अपना नहीं लगता। अब बच गए ये दो पोस्टकार्ड और तीन लिफाफे, इन्हीं में से कोई अपनी चिट्ठी हो सकती है। क्या करने का, द्वारका आज फैक्ट्री में आया नहीं। वो रहा रंगू। रंगू, मैं कैंटीन में चाय पीने जा रहा हूँ, बोर्ड पर से मेरी चिट्ठी जरा ला कर देना।
4: आई है क्या?
2: हाँ हाँ आई है।
4: अच्छा अभी लाया।
5: ये लीजिए।
2: हाँ।
5: ये रही आपकी चिट्ठी।
2: हाँ।
5: अब इस खुशी में मुझे भी एक चाय पिला दीजिए।
2: अरे हाँ भाई हाँ। अब मैनेजर साहब, मेरे नाम पर एक चाय रंगू को भी। अच्छा रंगू, मैं चलता हूँ।
5: अच्छा भैया।
2: देखने से तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी मनिया की ही है, पिछली बार भी ऐसा ही लिफाफा भेजा था। द्वारका को भी आज ही डांडी मारना था, किससे पढ़वा। अगर चिट्ठी मनिया की निकली तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बस अब सीधे घर चलता हूँ, आज हाफ डे की रजा ही सही।

0: जानू क्या लिखा है, द्वारिका आज काम पर आया ही नहीं।
1: अरे भाई तू लक्ष्मण से पढ़वा लेते।
0: देखो बिहारी, लक्ष्मण वही काम करता है जो मैं करता हूँ, बल्कि जो मशीन लक्ष्मण से ठीक नहीं होती उसे मैं चला रहा हूँ, लेकिन उसी काम के लिए उसे 1,500 रुपए मिलते हैं और मुझे 1,000 रुपए। मैं उससे मनिया की चिट्ठी नहीं पढ़वाऊंगा, वहां से का नहीं।
1: अरे बुद्धू, कहां पढ़ा लिखा लक्ष्मण और कहां अंगूठा छाप तुम। मैं मानता हूं कि तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट जो है, कितना फर्क है तुम दोनों में।
0: हाँ, उतना ही जितना आदमी और जानवर में है।
1: नहीं नहीं नहीं सिद्धू, मैं ये नहीं कह रहा।
0: और नहीं तो क्या, मशीन पर लिखा हुआ मशीन का नाम जब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं अंधा हूँ।
1: देखो,
0: आंख रहते हुए भी अंधा।
1: देखो सिद्धू,
0: हाँ,
1: इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तुम रोज रात को पढ़ने तो जाते ही हो।
0: हाँ,
1: थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे।
0: अरे जब सीखूंगा तब सीखूंगा ना, आज तो नाव भंवर में फंस गई।
1: भाई सिद्धू, अगर तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी होती,
0: हाँ,
1: तो मैं जरूर पढ़ देता, लेकिन मनिया की चिट्ठी तुम तो जानते ही हो।
0: अरे जानता हूँ कि मनिया के पिताजी तुम्हारे पिताजी के यहाँ शादी की बात करने गए थे, लेकिन अब तो बात खत्म हो गई ना।
1: बात किसने खत्म की?
0: अरे तुम्हारे पिताजी ने, उनको पूरा दहेज चाहिए था।
1: तुम्हें तो मालूम है मैंने पिताजी को कैसा पत्र लिखा था। मनिया जैसी सुंदर गुणी पढ़ी लिखी लड़की से दहेज लेकर उन्होंने उन्होंने ये सब सोचा ही कैसे।
0: अब जाने भी दो बिहारी, सुबह की आई ये चिट्ठी, अब पढ़ भी दो यार।
1: अच्छा लाओ लाओ।
0: हाँ,
1: ये। हाँ सुनो।
0: हाँ,
1: मेरे प्यारे वो। भाई वाह, इस वो का जवाब नहीं यार।
0: हाँ, आगे क्या लिखा है?
1: लिखा है आपका लिखवाया हुआ पत्र मिला।
0: हाँ,
1: पत्र किससे लिखवाया था?
0: द्वारका से। पढ़ो पढ़ो।
1: आप राजी खुशी हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई।
0: हाँ,
1: एक आध गलतियां हैं, फिर भी राइटिंग बहुत अच्छी है।
0: राइटिंग मैं क्या जानू।
1: सो तो है। हाँ, हाँ सुनो, आप रोज रात को पढ़ने जाते हैं ये बड़ी अच्छी बात है।
0: हाँ,
1: जिस दिन आपके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिलेगी,
0: हाँ,
1: उस दिन शिवालय में प्रसाद चढ़ाऊंगी।
0: वाह,
1: देखो मुझे प्रसाद देना मत भूल जाना।
0: हा? अरे भैया तुम्हारा मुंह तो सबसे पहले मीठा करवाऊंगा।
1: आगे समाचार ये है,
0: हाँ,
1: कि तुम्हारे गांव का एक लड़का है बिहारी, तुम्हारी फैक्ट्री में,
0: हाँ,
1: अपनी बिरादरी का ही है। मेरे पिताजी कभी बिहारी के पिताजी से मेरी और बिहारी की शादी की बात चलाने गए थे। दहेज की मांग पर बात टूट गई थी। हमारी बिरादरी में तो कभी दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं। वे लोग अब खुद मेरे पिताजी से मिले, बोले हम बिना दहेज से शादी करने को तैयार हैं। उनके जाने पर मैंने भाई से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तैयार नहीं। मैंने ये भी बता दिया कि पिछले महीने मेले में मैंने सिद्धू को देखा है, मुझे पसंद है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या, पढ़ लिख जाएगा, माँ के पेट से थोड़ा ही कोई पढ़कर आता है। तुम बिहारी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। चिट्ठी का जवाब जाने दो, क्या कहूँ, तुम्हारी मनिया। देखा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था।
0: अरे अब जाने दो, अब एक काम और करो, जैसे उसकी चिट्ठी पढ़ दी है ना, वैसे ही मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दो।
1: ना बाबा ना, मुझसे नहीं लिखी जाएगी।
0: अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी?
1: मान लो,
0: हाँ,
1: मनिया के पिताजी मेरे पिताजी की बात मान गए तो?
0: अरे तब तो मनिया को और अच्छा वर मिल जाएगा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक चिट्ठी पूरी कर देना है।
1: ना ना ना ना, ना। तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा।
0: अरे भैया बोलना क्या, मन की बात नहीं बोली जाती, समझ लो कलम तुम्हारी मन मेरा। अच्छा अब मैं निकलता हूं।
1: कलम तुम्हारी मन मेरा, ऐसा कहीं होता है? हो सकता है। कलम तुम्हारी मन मेरा।
2: यही है, बस यही है, विकास उद्योग लिमिटेड। हिंदी में भी यही है और अंग्रेजी में भी वही। चौकीदार साहब, विकास उद्योग लिमिटेड यही है ना?
3: हाँ यही है। क्या काम है?
2: मुझे सिद्धू से मिलना है।
3: बहन जी उस हार में बैठ जाओ, मैं सिद्धू को अभी

0: अरे सिद्धू इतनी जल्दी? हाँ। भाई तबीयत तो ठीक है?
1: आज हाफ डे ले लिया बिहारी।
0: आखिर बात क्या है?
1: मनिया की चिट्ठी आई है।
0: ओ क्या लिखा है?
1: अब मैं क्या

0: อง
1: अरे मनिया तुम यहाँ कब कैसे?
2: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना हाँ। मैं मनिया यहाँ अभी अभी ऐसे ही।
1: अरे ऐसे ही मेरा मतलब है कैसे?
2: गांव से सीधे बस से आई चिट्ठी बनकर।
1: चिट्ठी बनकर?
2: मुझे जब तुम्हारी चिट्ठी यानी तुम्हारी ओर से बिहारी की चिट्ठी मिली हाँ। और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तभी तय कर लिया अब तुम्हें चिट्ठी तभी लिखूंगी हाँ। जब तुम उसे पढ़ने लायक हो जाओगे
1: हाँ।
2: और सुनो
1: हाँ।
2: तुम भी मुझे अपने हाथ से ही चिट्ठी लिखोगे
1: हाँ।
2: महीने दो महीने जितना भी लग जाए समझे?
1: ठीक है
2: मैं इंतजार करूंगी।
1: अच्छा
2: आगे पूरी जिंदगी पड़ी है
1: हाँ।
2: तुम सिद्धू हो कि बुद्धू चिट्ठी लिखी और पढ़ी जाती है
1: हाँ।
2: जो लिखाई और पढ़ाई जाती है वो चिट्ठी नहीं रह जाती।
1: अरे बात क्या है कुछ बताओगी भी कि बस पहेली ही बुझाती जाओगी?
2: बस यही समझ लो कि मैं चिट्ठी पढ़ती जा रही थी
1: हाँ।
2: और मेरे पैरों के नीचे धरती कांप रही थी
1: हाँ।
2: उफ कितनी गंदी भाषा थी।
1: गंदी?
2: तुम्हारी होती तो चलती लेकिन किसी और ने ऐसी चिट्ठी लिखी हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुशासन मेरा चीरहरण करना चाहता हो
1: हाँ?
2: फिर तो मैंने कान पकड़े चिट्ठी लिखने का मन हुआ तो खुद चिट्ठी बनकर आ गई
1: हाँ।
2: अच्छा अब अपनी कहो कैसे हो कहाँ रहते हो?
1: अरे देख तो रही हो बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो मैंने अपना कमरा भी ले लिया है।
2: अच्छा
1: फैक्ट्री की कॉलोनी में।
2: अच्छा
1: तुम्हें मालूम नहीं एक महीने से ऊपर हो गए।
2: सच
1: हाँ?
2: मुझे दिखाओ ना।
1: ठहरो मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से सीधे बस जाती है।
2: अच्छा
1: हाँ
2: कितनी अच्छी बस है ना?
1: फैक्ट्री की बस इससे भी अच्छी है रोज हम उसी से काम पर आते जाते हैं।
2: तुम काम पर नहीं हो तो पैसा कट जाएगा?
1: अरे मेरी सारी छुट्टियां बाकी हैं इसलिए कभी कभी हाफ ले लेता हूँ शादी के लिए सब छुट्टी बचा रखी है।
2: चलो हटो तुम बड़े वो हो।
1: ये देखो ये रहा तुम्हारा कमरा।
2: कितना अच्छा है
1: आ,
2: सब पक्का है
1: आ,
2: और खिड़की भी है। अरे ये क्या है ये चिट्ठी किसकी?
1: पढ़ के बताओ।
2: तो ये बात है तुमने कर्ज ले रखे हैं।
1: वो डिपॉजिट देना था ना 500 रुपए सेठ छदामीलाल से कर्ज लिया।
2: क्या सबूत कि तुमने 500 रुपए ही लिए 5000 नहीं?
1: अरे मेरे साथ रघु भी गया था सेठ के यहाँ सोसाइटी दफ्तर में सबको पता है मैंने सबको बता दिया छिपाया बिल्कुल नहीं। चलो किसी से भी पूछ लो सब जानते हैं जरूरत पड़ने पर रघु गवाही दे सकता है। हाँ
2: तो आओ मेरे साथ।
1: चलो
3: अरे आओ आओ सिद्धू भैया आओ मेरी चिट्ठी मिली होगी
1: हाँ।
3: क्यों भैया ब्याज देने आए हो कुल मिला के?
2: ब्याज देने नहीं पूरा हिसाब करने आए हैं
3: आप सिद्धू की कौन लगे हैं बहन जी कुल मिला के?
2: मैं इनकी होने वाली वो हूँ।
3: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत खुशी की बात है कुल मिला के।
2: इन्होंने कितना कर्ज लिया था?
3: कर्ज को की है बहन जी जो लियो है दे देगो फिर भी आप कह रहे हैं तो बताए देता हूँ बहन जी 5000 रुपए लिए थे इसने।
1: 5000 रुपए?
2: आप चुप रहिए। हाँ तो सेठ जी 5000 में 5 के आगे कितने शून्य होते हैं?
3: आप तो मजाक कर रहे हैं बहन जी 5000 रुपए मत बल्कि 5 के आगे 3 शून्य होंगे कुल मिला के।
2: जैसे 5 का 5000 बनाया वैसे ही 1 शून्य और बढ़ाकर 50000 क्यों नहीं कर लिया आपने?
3: ठीक हो बहन जी बरसों को रोजगार है मारो। बहन जी झूठ काहे को बोलूंगो ए देखो सब लिखा पड़ी है हमारे पास सिद्धू के अंगूठे की निशानी भी है कुल मिला के।
2: लिखा भी आपका है और पढ़ा भी और ये तो अनपढ़ हैं इनके साथ जो रघु जी आए थे वो भी अंगूठा छाप है उन्होंने भी कहा है कि 500 रुपए लिए थे सारी सोसाइटी को भी मालूम है। अच्छा अब हम लोग पुलिस थाने जा रहे हैं गवाह हमारा इंतजार कर रहे होंगे।
3: पुलिस पुलिस को की करना है बहन जी आपस में बैठ के सुलझा लेंगे कुल मिला के। आप तो बहन जी

0: उल्टी गंगा बहावे हैं।
1: आपको सीधा करने के लिए उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
0: मैं तो मर जाऊंगा बहन जी, मारो धंधो चौपट हो जावे को हो। माफ करियो बहन जी, माफ कर दियो।
1: ये लो 500 रुपए और भरपाई का रसीद दो।
0: अभी दिए देता हूँ बहन जी, अभी दिए देता हूँ। आज किसको मुंह देखो तो सवेरे सवेरे कुल मिला के
1: सूद भी दूं क्या?
0: सूद को की करो है बहन जी, सूद को की करो है। आप मेरो पिंड छोड़ो छोड़ो, कुल मिला के जान बची तो लाखों पाए। लो रसीद ले लो, पढ़ लियो कुल मिला के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।
1: आप मुझे बस पर बैठा दो, मैं गांव चली जाऊंगी।
2: मनिया एक बार कमरे में चलो ना।
1: नहीं अभी नहीं।
3: चिट्ठी। हवा महल में अभी आप नंदलाल पाठक की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया CB मंडावी ने। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।

0: भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे हवा महल प्रोग्राम में ये झलकी, और अब आप कनेक्ट हो चुके हैं अवध की शान आकाशवाणी अयोध्या एफएम से 101.9 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून करके और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर अपने अपने मोबाइल पर इंटरनेट के जरिए देश और दुनिया में हमारे सुनने वाले आकाशवाणी अयोध्या को सुन रहे हैं। आइए शुरू करते हैं बॉलीवुड फिल्मी गानों का प्रोग्राम गीत गुंजन।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: सुनिए
4: कहिए कहिए
3: सुनिए
0: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है। तो बस कुछ ही दिन और बाकी हैं, 8 जून को 90 साल पूरे कर लेगा आकाशवाणी और 91 ईयर्स में पहुंच जाएगा अपना आकाशवाणी। तो कैसे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, बढ़िया है ना, मजे में हैं, हंसते गाते मुस्कुराते और सेहतमंद रहते हुए आप सुनने को तैयार हैं ये प्रोग्राम गीत गुंजन आकाशवाणी अयोध्या FM से अपने रेडियो मीत अमरजीत के साथ, जो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम कर रहा है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जहां तक पहुंच रही है ये आवाज। आइए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे की। आज 3 जून को क्या कुछ हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। 3 जून 1947 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की आधिकारिक घोषणा कर दी थी, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तांतरण करने की तारीख 15 अगस्त तय की गई थी। 3 जून 1918 में गांधी जी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य

सम्मेलन आयोजित हुआ और उसी में पारित एक प्रस्ताव के द्वारा हिंदी राजभाषा मानी गई और 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया। आज ही के दिन 3 जून 1985 में भारत सरकार ने 5 दिन का कार्य दिवस सप्ताह शुरू किया। शनिवार और रविवार अवकाश घोषित कर दिया गया और 1950 में भारत को पहली बार विश्व कप फुटबॉल में आमंत्रण मिला। भारत को ब्राजील में होने वाले पहले फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का आमंत्रण मिला था। ये निमंत्रण 3 जून यानी आज ही के दिन 1950 को आया था। 3 जून 1965 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड व्हाइट ने नासा के जेमिनी 4 मिशन के दौरान अमेरिका की पहली और दुनिया की दूसरी अंतरिक्ष चहलकदमी की। उन्होंने ये स्पेक वॉक पृथ्वी की कक्षा में लगभग 23 मिनट तक की स्पेस वॉक में वो रहे। और अब यहाँ बारी आ गई है जी हाँ गाने की। आज के प्रोग्राम का पहला गाना ये है बॉलीवुड फिल्मी गानों का गुलदस्ता गुंजन। आइए अमानत फिल्म से प्रोग्राम का आगाज करें कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज के साथ।

और हमें तो आकाशवाणी अयोध्या से आपसे बातें करना, गाने सुनवाना जी हाँ अच्छा लगता है। और ऐसा करते करते जी हाँ 17 जून को 33 साल भी पूरे हो जाएंगे। चलिए कुछ और बात करते हैं इस प्रोग्राम में। दुनिया भर में हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, आज भी मनाया जा रहा है। साइकिल जो दो सदियों से परिवहन का एक किफ़ायती, भरोसेमंद और नेचर फ्रेंडली साधन रही है, लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के बीच वर्ल्ड साइकिल डे और भी खास बन जाता है। पहली बार ये दिन 3 जून 2018 को मनाया गया। इसकी शुरुआत अमेरिका के प्रोफेसर लेसजेक सिबिल्स्की ने की थी। हालांकि प्रोफेसर लेसजेक सिबिल्स्की ने साल 2015 में ये दिन मनाने का प्रस्ताव रखा था। और साइकिल हमें फिट रखती है, शरीर को ऊर्जावान बनाती है, मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। साइकिलिंग हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और सस्ता माध्यम है। साथियों, साइकिल का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने रातों रात नहीं किया था। इसकी शुरुआती मॉडल का डिजाइन 1817 में जर्मनी के कार्ल वॉन ट्रेडिस ने बनाया था, जिसे पैरों से धक्का देकर चलाया जाता था उस समय साइकिल को। आज की आधुनिक और पैडल वाली साइकिल का श्रेय किर्क पैट्रिक मैकमिलन को जाता है 1839 में, और जॉन कैंप स्टार्ली 1885 को जाता है। उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर पैडल वाली साइकिल बनाई थी। स्कॉटलैंड के लोहार किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने 1839 में पहली बार पैडल से चलने वाली साइकिल का आविष्कार किया। और यहाँ जी हाँ गाना एक आ गया साइकिल पर ही मैच करता हुआ। वैसे साइकिल पर बहुत से गाने बने हैं बॉलीवुड में, लेकिन मैंने बहुत ढूंढा तो एक गाना तो सुबह बज चुका था, तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता था। आप जानते हैं कि मैं गानों को बहुत कम रिपीट करता हूँ, तो एक गाना मैंने सर्च कर लिया बड़ी मुश्किल से। वैसे आपको बताऊं, किशोर फिल्म में 1970 में मनोज कुमार ने 7 दिन तक लगातार साइकिल चलाई थी फिल्मी पर्दे पर, और वो गाना था जीवन चलने का नाम। तो वो तो फिल्मी पर्दे पर अच्छा लगता है आपको सुनने में, साइकिल का तो शब्द नहीं था, तो इसलिए मैंने ये गाना आपके लिए सिलेक्ट किया। आइए सुने विनोद राठौर की आवाज में। बीवी बीवी नंबर वन नहीं, हीरो नंबर वन से ये गाना है।

0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
1: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
2: जग घूमे थर जैसा ना कोई।
0: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
1: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
3: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
4: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: चलिए जी, मिड ब्रेक हो गया और घड़ी ने भी मिड ब्रेक कर दिया प्रोग्राम का। 8:30 और 30 सेकेंड्स प्रोग्राम गीत गुंजन आकाशवाणी अयोध्या FM से। और अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। भारत ने अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद भी पकड़ गंवा दी और मैच हाथ से निकल गया। ये हुआ कल रात 11 बजे इंग्लैंड में आखिरी T20 मैच वुमेन्स टीम खेल रही थी इंडिया की, और उसमें निर्णायक मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट से हार मिली है। इसके साथ ही इंग्लैंड ने महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले ये सीरीज 2-1 से अपने नाम भी कर ली। जी हाँ, वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है वुमेन्स का, T20 का। कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाबाद अर्धशतक के बावजूद दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय महिला क्रिकेट टीम का 180/5 विकेट का स्कोर दूसरे नंबर की इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पर्याप्त साबित नहीं हुआ, और इंग्लैंड ने भी 180 को भी पार कर ये मैच जीत लिया। और अब ये गाना आपके पास, किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाज में, पिघलता आसमान फिल्म से, हिंदी वर का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर। इसका भी म्यूजिक बहुत ही पसंद है मुझे और गाना भी अच्छा है। आइए सुना जाए।

0: अगर दिन में भी अनाउंसर्स के पास एक फिल्म संगीत का प्रोग्राम होता और सुबह भी होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम जो आरजेज मॉर्निंग में आ रहे हैं, डे में आ रहे हैं, वो भी अपनी दिल की बातें करके अपने मनपसंद गाने आपको सुनवा सकते थे। लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा यहाँ हो गए, अनाउंसर से आपने सारे प्रोग्राम ही छीन लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी समय आएगा तो मॉर्निंग में और दिन के समय भी अनाउंसर्स के पास जो है प्रोग्राम आ जाएगा। वैसे बातें आसपास की प्रोग्राम की बड़ी डिमांड आ रही है, पहले रोज़ होता था, अब केवल शनिवार और इतवार को ही हो रहा है। लोगों को बड़ा महसूस हो रहा है कि ये प्रोग्राम रोज़ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। टॉपिक वाले जब प्रोग्राम रहते हैं तो उनसे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, जानकारी भी मिलती है, गाने तो आप कहीं भी सुन सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर से मिलते हैं आपको।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें। मोबाइल 9839561329 व 9682075221।
0: चलिए जी, समय धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहा है। गीत गुंजन प्रोग्राम का बात करते हैं एक फिल्म की जो 1965

में आई थी खानदान, उसमें गाना था, मैंने पहले भी कई बार प्ले किया अपने प्रोग्राम्स में, वो गाना बहुत ही बढ़िया है, दिल को छू जाता है। नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। सुनील दत्त और नूतन पर यह गाना फिल्माया गया, मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने प्लेबैक सिंगिंग की। और इस फिल्म में सुनील दत्त और नूतन के अलावा प्राण भी थे, ओम प्रकाश, ललिता पवार, हिलन और मुमताज भी, सभी की एक्टिंग देखने लायक थी। 1965 में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई और इस फिल्म का संगीत तैयार किया था रवि ने। और बाद में 1966 में सुनील दत्त को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला, संगीतकार रवि को संगीतकार का पुरस्कार मिला फिल्म फेयर की ओर से। लता मंगेशकर जी को एक गाना उन्होंने गाया इस फिल्म में, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उस गाने में सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगिंग के लिए पुरस्कार मिला लता जी को फिल्म फेयर का। और गीतकार राजेंद्र कृष्ण को बढ़िया गाने लिखने के लिए भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। उनका एक गाना इस फिल्म में है, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, उसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था। लेकिन अभी जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो गाना है नील गगन पे उड़ते बादल आ आ आ, और धूप में जलता खेत हमारा, कर दे तू छाया। इस गाने को भी राजेंद्र कृष्ण ने ही लिखा, जिन्हें अवार्ड भी मिला। आइए सुनें।

जहाँ कुछ गाने ऐसे होते हैं उन्हें जितनी भी बार सुना जाए उतना कम होता है, और सुनते सुनते जी हाँ गानों में हम सब गुम से हो जाते हैं। तो अब जो गाना एक और मैंने निकाला हुआ था, लेकिन गाना पूरा बज नहीं पाएगा, आपको झलक के रूप में ही सुनवा रहे हैं। कभी आएंगे तो ये गाना आपको पूरा सुनवा देंगे। जवानी दीवानी से यह गाना है, 1972 में आई थी। किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया, और बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत R.D. बर्मन का है।

वर्ष अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, हंसते गाते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या FM को। कभी आए तो ये गाना आपको पूरा जरूर सुनवाएंगे बहुत ही जल्दी रात गीत गुंजन प्रोग्राम में। बस कुछ ही देर के बाद आकाशवाणी अयोध्या FM पर समाचारों का वक्त हो रहा है दिल्ली से, जो आपको सुनवाए जाएंगे पहले हिंदी में और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार होंगे। कुछ पल इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एक मुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए

0: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इंपैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग दी कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में

0: होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई, 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में एक महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
3: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
2: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
4: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
2: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले

कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्युआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कंबोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज

0: होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritavrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self-sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction

0: of one of its nationals in the attack, expressing its deepest condolences to the bereaved family and saying the mission is closely coordinating with Kuwaiti authorities to provide all possible support. The Intermeteorological Department has issued an orange warning for heavy rainfall over Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, parts of northeastern India, West Bengal, Karnataka, Konkan, Goa, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep during the next 2 days. In badminton, India's Ayush Shetty advanced to the second round of the Indonesia Open Super 1000 with a comeback win over China's Wang Hongyang, 8-21, 22-20, 21-15. India also secured a mixed doubles victory as Rohan Kapoor and Ritvika Gadde defeated Chinese Taipei's Yang Po Huan and Hu Lingfang. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal and West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parameshwar becomes Deputy Chief Minister, while 12 legislators also take oath as cabinet ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है 101.9 मेगाहर्ट्ज और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर. आइए शुरू करते हैं महफिल गजल प्रोग्राम इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद.
2: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव. आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध. संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या. फोन 9267988901.
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है.
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना. नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया. 70 सालों का विश्वास और भरोसा. जानो फिर मानो.
5: सेवानिवृत्त आर्मी जवानों के लिए खुशखबरी,
6: आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
5: अब ECHS से इम्पैनल्ड. आर्मी के सभी रिटायर्ड जवानों को मिल रहा है कैशलेस इलाज.
6: आयुष्मान भारत योजना, पंडित दीनदयाल योजना और तमाम इंश्योरेंस पॉलिसियों के तहत
5: कैशलेस इलाज. आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मछली मंडी, नियामा, अयोध्या. कॉल करें 6386907006.
7: रतन सोलर एजेंसी परशुरामपुर बस्ती पीएम सूर्य घर योजना में आवेदन करें और सोलर पैनल लगवाकर बिजली बिल में बचत करें. मोबाइल 9839561329 व 9682075221.
1: इस प्रोग्राम में तहे दिल से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं हम. कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ रहेंगे इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा, जो शाम 5:30 बजे से मेरे साथ हैं. और अब आइए शुरू करते हैं पहली गजल मिताली सिंह की आवाज में.

0: इस गजल के साथ ही आज का महफिल गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी का अयोध्या FM है 101.9 पर और प्रसार भारती की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर। आइए सुनते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या इस पहले कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

0: 7376804090 लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी और साथ में होंगे आप ही के पसंद के फिल्मी गाने। इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में अभी कॉल कीजिए 7376804090 पर और कनेक्ट हो जाएं एजे अमरजीत सिंह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। ये अलबेला सजीला और दिलचस्प प्रोग्राम आपके अपने FM 101.9 और स्मार्टफोन पर आ चुका है। अवध की सुरीली धड़कन आकाशवाणी अयोध्या। आइए शुरू करते हैं फिल्मी गीतों और आपकी प्यारी बातों का ये सुहाना सफर।
1: तो क्या हाल चाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, हंसते गाते मुस्कुराते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी अयोध्या FM। अवध की शान है ये और आपके साथ भी इस प्रोग्राम में बाहर से आ जाती है आपकी फ़ोन कॉल्स यहाँ पर जहाँ पहुँचनी चाहिए 7376804090 नंबर मिलाकर। और शुरू में पहुँच चुका माइक्रोफोन के पास आपसे बातें करने के लिए आपका रेडियो मित्र अमरजीत, जो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा है और मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कंट्रोल रूम से आज मेरे साथ हैं इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। तो देखें यहाँ पर कॉल किसकी पहुँच गई है। जी आपका स्वागत है प्रोग्राम में, नाम बताइए।
2: नमस्ते।
1: अजी नमस्ते, आपने कहाँ से कॉल लगा दी इस प्रोग्राम में?
2: सर रिंकी पिंकी बोल रहे हैं जगदीशपुर सुयोगर जिला रायबरेली से।
1: तो ये अभी रिंकी की आवाज आ रही है कि पिंकी की आवाज आ रही है?
2: सर रिंकी की।
1: चलिए बढ़िया है, थोड़ी आपकी आवाज गूंज रही है, कहीं आपने हैंड फ्री तो नहीं किया हुआ मोबाइल पर अपने मेरी आवाज?
2: नहीं सर।
1: अच्छा ठीक है, तो ये बताइए आज गाना किस फिल्म का आपको सुनना है?
2: सर नसीम मूवी से।
1: नसीम मूवी का फिल्म का सुनवाएंगे आपको। और आप ये बताइए किस तरह के गाने आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं?
2: सर 90s सॉन्ग पसंद है।
1: अच्छा, तो वो जो उछलते कूदते वाले गाने हैं कि या सैड सॉन्ग है या फिर जीवन दर्शन से संबंधित एक गाने होते हैं वो आपको अच्छे लगते हैं?
2: सर सैड सॉन्ग भी पसंद है और मतलब जो 90s सॉन्ग होते हैं वो भी पसंद है।
1: चलिए बढ़िया है, तो प्रोग्राम सुना जा रहा है आपके पास, इतनी दूर पर भी आकाशवाणी अयोध्या को सुना जा रहा है। हम लोग बहुत खुश होते हैं कि जगदीशपुर में भी आवाज पहुंच रही है आपके पास, है ना?
2: जी सर।
1: तो और रेडियो सुनने के अलावा क्या काम होता है घर का?
2: घर पे रहते हैं, घर के काम करते रहते हैं, घर के रहते हैं, कॉल भी लगाते रहते।
1: जी हाँ, घर के भी काम कम नहीं होते हैं और काम के साथ साथ अगर रेडियो लगा रहे तो काम करने में और भी आनंद आता है कि नहीं?
2: जी सर बिल्कुल।
1: तो पिंकी पासी में है कहीं दूर है?
2: सर यहीं पे है। और सर आपके यहाँ का मौसम कैसा है आज?
1: मौसम तो आज तो बड़ी तेज धूप थी, बहुत ही गर्मी थी, लेकिन आज फिर न्यूज में आया है कि कल बारिश हो सकती है, आंधी तूफान आ सकता है।
2: सर हमारे यहाँ तो सर थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई है।
1: हाँ हाँ, देखिए बस लगा रहता है ये, क्योंकि अब मौसम एक जैसे नहीं रहे, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ना सबका मौसम भी बेटाइम हो गया इंसानों के तरीके। चलिए गाना आपको सुनाते हैं मेरे नसीब।

0: फिल्म का गाना नसी फिल्म का, ठीक है?
1: ठीक है सर। और सर ये गाना हम पूनम दीदी को और गुंजन तिवारी को और समा परवीन को डेडिकेट कर रहे हैं।
0: चलिए, सबके पास ये गाना पहुंच रहा है, रिंकी पिंकी की पसंद का, जगदीशपुर बस्ती कह रहे हैं, जगदीशपुर से।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: ऑर्डर। टेलीफोन लाइन में कभी कभी क्या होता है कि आपकी कॉल तो यहाँ लग जाती है, लेकिन जब यहाँ से पुकारा जाता है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। अभी अजिता रावत की कॉल बस्ती से लगी थी, लेकिन उन तक मेरी आवाज़ पहुँची नहीं, वो कॉल ड्रॉप हो गई। और इस बीच कोई और आ गया, वो भी हमारे बहुत ही नए श्रोता बने हैं अभी। आइए देखें कौन है लाइन पर। ये नाम बताइए अपना। हेलो।
1: माना कि हकीकत में मुलाकात नहीं होती है, ये भी माना कि आपसे बात नहीं होती है।
0: अच्छा,
1: खुश किस्मत है वो लोग जिनका फोन लग जाता है। चलो हमारा नहीं तो किसी का मुकद्दर जग जाता है। आदरणीय अमरजीत सिंह साहब को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: आपको भी मेरा नमस्कार। और ये लाइनें कितनी बढ़िया, मुझे लगता है कि आपने खुद लिखी है ये लाइनें।
1: जी मैंने लिखी है।
0: बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आई कि आप लोग इतने बड़े कला, हम लोगों से भी बड़े कलाकार हैं आप लोग।
1: जी नहीं, आपके मुकाबले में हम अभी नहीं हैं, तो आप लोगों से मैं सीखता हूँ। आप तो हमेशा लगाते रहते हैं, लखनऊ में भी सुनते रहते हैं।
0: हाँ, लेकिन
1: सोमवार को हमारा दीप्ति जोशी जब आती है तो उसमें मेरा लग जाता है।
0: जी तो अभी दीप्ति जोशी जी से मैं दोबारा बातचीत वहाँ करना चाह रहा था। मैंने करीब 300 कॉल लगाई, लेकिन फिर भी कॉल वहाँ लगी नहीं। ये होता है कभी कभी। जी
1: ऐसे होता है, जब बातचीत समाप्त होने पर हो तो आप कोशिश करते रहिए।
0: जी
1: तो लग जाएगा।
0: तो विजय पांडे जी, बहराइच से आपने कॉल की है ना?
1: बहराइच से पहले गए थे हम, तो वहाँ से किए थे फोन। आज तो घर पर ही हैं, बलरामपुर में।
0: अच्छा, हाँ, बलरामपुर से आप कॉल करते, ठीक, हमको याद आ गया।
1: जी
0: तो बलरामपुर और बहराइच तो पास ही पास है, उसी रूट पर है वो।
1: पास में ही है। बहराइच में गया था और हमारे दोस्त हैं शिव शंकर सिंह, तो उन्हीं से मिलने के लिए गया था। तो वहाँ बहुत कोशिश किया, मगर एक बार लगा घंटी गई, फिर दोबारा घंटी नहीं जा पाई।
0: तो विजय पांडे जी, आप तो अपनी शायरी के लिए पूरे इंडिया में मशहूर हो चुके हैं, रेडियो से, लखनऊ से भी। है ना? अच्छा लगता है।
1: ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है।
0: चलिए आज गाना बता दीजिए, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का भी। गाना कौन सा?
1: नाम है काला पत्थर और गीत के बोल है बाहों में तेरे मस्ती के घेरे में। ये गीत मैं अपने हर दिल

0: चीज यानी बाबा प्रेमदास जी के लिए, शिव शंकर सिंह के लिए, और वो है हसीना बेगम
1: जी, उनका भी कॉल आती है यहाँ पर
0: जी, और पूनम के लिए
1: जी जी,
0: ये भी समर्पित करना चाहूंगा।
1: चलिए सबको सुनवा रहे हैं विजय पांडे जी की ओर से ये गाना।
0: धन्यवाद आप
1: जी, शुक्रिया।

0: आज टेलीफोन लाइन कुछ साथ बढ़िया दे नहीं रही है। आपकी कॉल लगातार लग रही है लेकिन वहाँ से कोई, जी हाँ, आवाज़ नहीं आ रही। आपकी ये कॉल यहाँ पे और ड्रॉप हो गई है, लेकिन अब कोई लाइन पर है, वो भी काफ़ी धीमा बोल रही हैं। आइए देखें कौन है जी, नाम बताइए अपना। संज्ञा गुप्ता लहरापुर, ये अयोध्या में ही है
1: जी? हाँ,
0: अच्छा, सोहावल से आपने कॉल की है। और गाना साथी से किस, कौन सा सुनेंगे?
1: हुई
0: आँख नम। हाँ, ये गाना मिल गया आपका, बढ़िया है। और क्या करती वहाँ पर आप?
1: जी, बस घर का काम करती हूँ।
0: चलिए बढ़िया है। तो हाथ वाथ कोई बटाता है कि अकेली करती है घर का काम सारा?
1: अधिकतर तो नहीं है, चाचू माँ है और ससुर भी है, हमारे पति भी है, बच्चे भी दो हैं।
0: हाँ, देखिए घर में सब लोग जब थोड़ा थोड़ा काम में हाथ बटाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं?
1: जी।
0: तो चलिए आप,
1: अधिकतर ज्यादा पड़ता है अकेले ही करना पड़ता है।
0: हाँ, ये तो है, अकेले काम करने वाले को तो दिक्कत आ ही जाती है कि नहीं? क्योंकि घर संभालना जो है कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। घर में बच्चों को भी देखना है, कोई घर में मेहमान आया उसको भी देखना है, घर का काम भी देखना है, बहुत काम,
1: हर तरह से सबको देखना पड़ता है।
0: जी जी, चलिए आपका गाना चल गया, संज्ञा आपके पास पहुंच रहा है।
1: जी, जी, जी,

0: और अब किसकी बारी आ गई इस प्रोग्राम में, आइए उनको भी ले आए प्रोग्राम में और उनसे कहें जी बताइए अपना हाल चाल क्या है।
1: ठीक है साहब।
0: नाम बता दीजिए, कहाँ से कॉल मिलाई आपने इस प्रोग्राम में?
1: सचिन पाल मेरा नाम है।
0: सचिन पाल, और कॉल लगाई आपने
1: गुड़िया गुड़िया पर से।
0: ये कहाँ पर है, अयोध्या में है, कहाँ पर है?
1: नहीं साहब, वो पता है अम्बेडकर नगर में।
0: अम्बेडकर नगर से आप आए हैं, वाह भाई वाह। तो क्या करते हैं वहाँ पर, खेती थी करते हैं, कुछ काम करते हैं?
1: नहीं साहब, मैं गाड़ी बनाता हूँ राम अवतार के यहाँ से।
0: अच्छा, गाड़ी कौन सी, चार पहिया गाड़ी बनाते हैं कि दो पहिया बनाते हैं?
1: दो चक्का साहब, दो चक्का।
0: दो चक्के वाली गाड़ी बनाते हैं, बढ़िया है, क्योंकि दो चक्के की गाड़ी भी कभी कभी धोखा दे देती है ना, तो फिर सारा काम बिगड़ जाता है कि नहीं?
1: हाँ साहब, इंजन में बांधने में कोई कमी आ गई, कभी धोखा देती नहीं आज कम से कम 20-30 साल हो गया।
0: हाँ, लेकिन एक बात हम और जानते हैं कि मशीनरी लाइन में अगर आप मेंटेनेंस बराबर बना के चलेंगे ना, तो आपको फिर मशीनरी लाइन धोखा नहीं देगी, है ना?
1: नहीं साहब, राम अवतार नाम है ना, जिन्हें है वो हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं वो।
0: अच्छा, तो आपने कहा कि गाना कोई भी सुनवा दीजिए, तो गाना मैं इतना बढ़िया निकाल के लाया हूँ, भोजपुरी गाना है, फिल्म दंगल का गाना है, 1977 में वो आई थी, है ना?
1: ठीक साहब, ठीक साहब।
0: चलिए गाना सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या गाना सुनवाया आज मैंने।
1: ठीक साहब,
0: शुक्रिया,
1: नमस्ते साहब,
0: नमस्ते।

0: अब जी मेरे पास शिमला से जी मेरे राकेश जी आ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करें। जी क्या हाल चाल है आपका?
1: जी जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है और आपका प्रोग्राम सुन रहे थे।
0: जी आप देखिए वहाँ दिल्ली पंजाब हरियाणा कश्मीर सबको छोड़कर आप यूपी का अयोध्या सुन रहे हैं।
1: जी जी जी जी जी जी जी
0: अच्छा लगने लगा यहाँ का प्रोग्राम?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी केंद्र सुनते हैं और सभी केंद्र से साथ साथ अच्छा लगता है, लेकिन हम तो अंडमान निकोबार तक भी पहुंचे हुए तो उसको भी सुनते रहते।
0: जी तो आपने अपने पास एक लिस्ट भी बना ली होगी कहाँ कहाँ कौन कौन आरजे अच्छा है, अनाउंसर अच्छे हैं, उनके नाम आपको सबको पता होंगे।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना। चलिए
1: जी जी जी जी
0: तो आज गाना किस फिल्म का सुनने का मन कर रहा है?
1: आज मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है दिल का क्या कसूर और गाने के बोले मेरा सनम सबसे प्यारा है।
0: गाना तो बढ़िया पसंद किया आपने। ये बताइए आपके पास ट्रांजिस्टर भी है घर में, होगा आपके पास?
1: ट्रांजिस्टर नहीं है, पहले तो मेरे पास ट्रांजिस्टर उसमें जो है आकाशवाणी शिमला पकड़ता था, लेकिन जब से मेरे पास एक सैटेलाइट के माध्यम से डीटीएच आया तो उसमें जो है विभिन्न केंद्रों की जानकारी मिल जाती है, उस केंद्र पे हम जुड़ते रहते हैं।
0: ठीक है, लेकिन आजकल देखिए बड़े अच्छे अच्छे सेट आ गए हैं, डिजिटल सेट आ गए हैं रेडियो के, वो 1700-1800 के मिलते हैं। अभी हमारे एक श्रोता ने जौनपुर में 1800 का सेट लिया है, विजय कुमार यादव जी ने, तो
1: जी बिल्कुल बिल्कुल लिया है तो, लेकिन उसने मैं समझता हूँ कि उसमें बाकी जो हर राज्य के जो स्टेशन नहीं मिल पाते।
0: हाँ, ये बात तो आपकी सही है,
1: सही है।
0: नेट ने बहुत करीब कर दिया पूरा स्टेशन को, है ना?
1: जी जी जी जी जी
0: तो नेट में तो कभी किसी भी कोने का आकाशवाणी या पूरी इंडिया का लगा लीजिए, कहीं भी 250 केंद्र है उसके ऊपर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस नंबर होना चाहिए, जैसे जैसे कोई भी केंद्र का नंबर डायल करो फिर लगाते रहो, अपनी आवाज पहुंचाते रहो और सुनते रहो हर प्रोग्राम।
0: चलिए आपके पसंद का गाना मैंने यहाँ से चला दिया, शिमला में आपके पास गाना पहुँच रहा है राकेश जी, शुक्रिया,
1: धन्यवाद। ओके।

0: अच्छा सुनिए, मेरे पास अंश पांडे की कॉल आई खंडासा अयोध्या से। जैसे उनको मैंने होल्ड किया, यहाँ से कॉल ड्रॉप हो गई। आज टेलीफोन लाइन बहुत अच्छा साथ नहीं दे रही यहाँ पर, और अब मेरे पास कोई और भी आ गया। और आइए देखें कौन पहुँचा यहाँ पर। हेलो अयोध्या प्रोग्राम में, जी आपका स्वागत है, नाम बताइए।
1: हेलो सर, नमस्कार, गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत ही बढ़िया आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल साफ आवाज आ रही है मेरे कानों में, तो रेडियो में भी लोग सुन रहे होंगे। बढ़िया, बताइए आज कैसे याद आ गई आकाशवाणी अयोध्या की।
1: सर आपकी तो याद आती रहती है सर, आपकी आवाज ही पहचान है, मैं आपकी आवाज से पहचान गया। मैं कार्यक्रम लेट चालू किया था
0: जी,
1: आपकी आवाज सुनी सर, तो मैंने सोचा कि आज हमारे सर जी आए हैं तो उनसे क्यों नहीं बात की जाए।
0: जी एक बार आपकी भी कॉल यहाँ पे आई थी, मैं इधर से बोल रहा था, आपको सर सुनाई नहीं पड़ा, उधर से कोई आवाज ही नहीं आई मुझको।
1: जी सर आवाज क्या लाइन गड़बड़ थी सर, सुर की आवाज आ रही थी, मतलब सही आवाज कुछ भी नहीं आ रहा था
0: उसमें। हाँ।
1: आवाज जैसे वो रेडियो में रुकावट आ जाती है ना, इस प्रकार की आवाज आ रही थी।
0: तो आप कितने लकी हैं कि आपकी कॉल दोबारा लग भी गई यहाँ पर, तो हमको बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर रहे हैं।
1: हाँ सर, मैं हर आकाशवाणी पे जुड़ता हूँ पूरे भारत वर्ष की, तो सर मिल तो जाता है।
0: तो ये बताइए, गाना आपका हीरो नंबर वन फिल्म से था ना? हाँ
1: जी जी सर।
0: और क्या करते हैं वहाँ पर
1: सर? खेती किसानी करते हैं।
0: तो खेती किसानी अभी क्या लगा रखा है आपने?
1: सर अभी तो खेत खाली है, हकाई जुताई करके पटक दिए हैं सर, घाम खा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: इसी बरसात चालू होगी जब मक्का और सोयाबीन की फसल बोएंगे सर।
0: जी जी, एक चीज मैंने देखी, मध्य प्रदेश में मक्का की खेती बहुत होती है, वहाँ पे जलवायु मक्का के लिए बहुत अच्छी होती है मेरे ख्याल से।
1: जी हाँ सर, मक्का की पैदावार हमारे इधर अच्छी पैदा होती है, करीबन 25 से 28 क्विंटल तक पैदा हो जाती है।
0: अच्छा?
1: सर एक एकड़ में।
0: और आजकल तो कहते भी हैं कि मोटा अनाज खाने के लिए वो शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: जी जी।
0: तो हीरो नंबर वन से गाना कौन सा चलाएं यहाँ से?
1: सर गाने के बोले, तुम हम पे मरते हो हम तुम पे मरते,
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: हाँ, मिल गया गाना
1: आपको, डेलिकेट रहेगा सर जी।
0: जी और सब बढ़िया है, गाना सुनवाए फिर आपको?
1: सब बढ़िया है बिल्कुल सर, सुनवाइए, धन्यवाद आपका।
0: चलिए भगवान सिंह परमार जी, आपका गाना पहुंच रहा है परिहार जी।

0: और अब चलते हैं अगली कॉल की ओर, क्योंकि बस आप जब कॉल आपकी लग जाती है ना तो आप इंतजार भी ज्यादा कर नहीं पाते और ज्यादा देर आज कॉल रुक भी नहीं रही है, तो इसलिए कॉल ड्रॉप हो जाए इससे पहले आपको रेडियो पर ले आए। जी बताइए अपना नाम।
1: हेलो नमस्ते सर, मैं माही पांडे गोंडा से बात कर रही हूँ।
0: माही ने बड़ी जल्दी इस प्रोग्राम में कॉल लगा ली, कुछ दिन पहले तो आपसे बात हुई थी हमारी।
1: सर बहुत दिन बाद हूँ, पहले
0: चलिए मैं किसी को रोकता नहीं हूँ क्योंकि देखिए ये प्रोग्राम आप ही के लिए है। कितनी जी
1: सर, अब तो दोनों टाइम आता है, डेली आता
0: वही
1: है।
0: तो मैंने कहा जब इतना प्रोग्राम आ रहा है, खुला दरबार हो गया हेलो अयोध्या का, तो हम लोग रोकने वाले कौन होते हैं है ना। तो
1: सर पर मैं ना ब्रेक लेकर ही बात करती हूँ, आपसे कुछ दिन पहले बात की थी इसलिए 15 दिन का अंतराल लेकर।
0: अच्छा हो गया 15 दिन अंतराल हो गया तो बढ़िया है। तो बताइए गाना आज शूरवीर से कौन सा सुनेंगी आप?
1: सर पता हाल मेरी कॉल एक ही बार में लग गई आपसे।
0: अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो लोगों की कॉल लगने के बाद भी कट जा रही है आज।
1: सर आपसे बात करने से मैं सुबह से ही बोल रही थी मैं आज बात करूंगी करूंगी करूंगी, और मैंने शर्त भी लगाई थी कि आज हमारे सर आएंगे।
0: अच्छा ये आपको पता था पहले से ही?
1: मैंने कहा सर लगा लो 100 रुपए।
0: तो मैंने तो सोशल मीडिया पे कहीं अपने आप को अपलोड भी नहीं किया, वीडियो ना कोई पोस्टर लगाया, तो आपको पता लग गया सुबह ही आज।
1: बहुत आ रही थी।
0: अच्छा चलिए ठीक है, तो गाना तो बता दीजिए कम से कम यहाँ से चला दें।
1: शूरवीर मूवी का कोई भी।
0: शूरवीर मूवी का बता रही है ना?
1: यस सर।
0: इसमें एक गाना मुझको बहुत पसंद है, आवाज हमारी इसी वादी में रहेगी।
1: यस सर, मैं गाना बोलने वाली भी थी।
0: हाँ ये गाना बहुत ही बढ़िया है और मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे इसी गाने के साथ मुझको। चलिए कॉल करने के शुक्रिया माही।
1: थैंक यू सर।
0: जी गोंडा से आपने कॉल किया ना?
1: यस सर। बाय बाय।
0: बाय बाय।

0: पिछले प्रोग्राम में उनसे बातें साफ नहीं हो पा रही थी और टेलीफोन लाइन साथ नहीं दे रही थी, आज उनके साथ फिर से बातें होने जा रही है। जी बताइए, अपना नाम तो मैंने बता दिया, किस जिले से आप कॉल कर रहे हैं? त्रिपुरा से।
1: जी सर, त्रिपुरा से बात कर रहा हूँ, त्रिपुरा अगरतला से।
0: जी जी, तो करते क्या है वहाँ पर, क्या करते हैं सुमन
1: सर? मैं रबर का खेती करता हूँ, तो ट्यूब वगैरह गाड़ी का जो टायर वगैरह बनते हैं, रबर का खेती करता हूँ और शेयर बाजार पर भी काम करता हूँ।
0: अच्छा, तो आकाशवाणी अयोध्या के बारे में आपको पता कहाँ से लगा और ये फोन प्रोग्राम
1: यहाँ? बिल्कुल, हाँ, मेरा एक फ्रेंड है जो अभी थोड़ी देर कॉल किया था, शिंजा से राकेश जी और भगवान सिंह जो फोन किया था, वो मेरे को मैसेज किया था कि अयोध्या में अच्छा कार्यक्रम चलते है रात को,
0: जी
1: तो आप फोन कर सकते हैं, बोला था।
0: देखिए पिछली बार आपकी कॉल मेरे प्रोग्राम में लगी,
1: आपका जो प्रोग्राम है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, आपका जो बोलने का नजरिया जो है वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को।
0: जी जी जी, पिछली बार देखिए आपकी कॉल लगी थी, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही थी, आज सब लोग सुन रहे हैं आपकी आवाज, तो मुझको भी अच्छा लग रहा है आपसे बातें हो रही हैं इतनी दूर से।
1: जी,
0: तो आज गाना आपको कौन सा सुनवा दें कलाकार फिल्म से?
1: कलाकार फिल्म से गाना है किशोर कुमार जी का गाया हुआ, और नीले नीले अंबर पर चांद जब आते।
0: बहुत ही बढ़िया गाना है ये, मैं भी सुनता हूँ कई बार, और इसमें ये गाना फीमेल आवाज में भी है, इसको साधना सरगम ने भी गाया है, लेकिन आप किशोर कुमार की आवाज में सुनेंगे, ठीक है?
1: हाँ जी सर, और मैं कुछ दोस्तों को याद करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल, याद कर लीजिए जल्दी जल्दी।
1: भगवान सिंह जी है और राकेश जी है शिमला से, बस, और आप भी सुनेंगे और सारे लिसनर को सर, शुभ रात्रि सर।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल आपकी यहाँ पर आई, फिर से आइएगा।
1: थैंक यू।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे। किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रति

0: एक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन। योग दिवस की यही पुकार, खुद को स्वस्थ बनाने के लिए हो जाएं तैयार। योग न केवल हमारे मन मस्तिष्क को ताकतवर बनाता है बल्कि हर प्रकार के तनाव से मुक्त कर हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। योगाभ्यास से शरीर विभिन्न विकारों से दूर होकर स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बनता है। ये हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। नियमित दिनचर्या में योग को अपनाकर आप स्वस्थ और लंबा जीवन प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो चलिए ब्रेक के बाद मेरे पास अब जी कौन आ रहा है प्रोग्राम में, आइए उनके बात किया जाए। जी आपका स्वागत है, नाम बताइए अपना।
2: जय हो सर, मैं यज्ञनाथ यादव मान का पुरवा पारा ताजपुर से आज बोल रहा हूँ, जनपद अयोध्या से।
1: आप तो हमारे इतने पुराने श्रोता हैं कि आपकी आवाज ही पहचान बन चुकी है रेडियो पर अब। तो ये बताइए कि 8 जून को हम सब लोग आकाशवाणी के 90 साल पूरे करने जा रहे हैं, तो रेडियो से जुड़ी हुई आपकी कौन सी ऐसी याद है जो आप यहाँ बयां करना चाहते हैं?
2: सर, रेडियो तो मैं लगभग 1987 से सुन रहा हूँ और विशेष का कमेंट्री सुनता था, उसके बाद बीबीसी बहुत सुनता था और आवाज अगर कोई बोले तो मैं जान जाता था कि ये आज इनका प्रोग्राम है। और एक बार आकाशवाणी में आपके यहाँ अयोध्या में भी हमारा इंटरव्यू आपने लिया था।
1: जी जी,
2: इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, यही सब यादें हैं
1: जी। कभी आप आकाशवाणी अयोध्या आ जाइए समय निकाल कर। आपका स्वागत है
2: सर
1: जी। तो क्योंकि आप देखिए ना, 33 साल जो है ये आकाशवाणी अयोध्या फैजाबाद को भी पूरे होने जा रहे हैं 17 जून को।
2: जी जी सर,
1: 34वें साल में लोग दाखिल हो जाएंगे।
2: जी सर, और आज साइकिल दिवस भी है।
1: साइकिल पे मैंने गाना सुनवाया, साइकिल पे तो बहुत अच्छे अच्छे गाने थे, वो हमारे कंप्यूटर में थे नहीं, तो जो मुझे मिला मैंने वो चलाया।
2: जी सर, और आज हमें गाना सुनना है सर सीकली लाइफ का। सखी सैया तो खूब कमा से महंगाई डाइन खाए जाते।
1: बिल्कुल,
2: ने गाया है
1: एक जमाने में क्या, कुछ दौर पहले ये गाना बड़ा ही फेमस हुआ था और आज हालात ऐसे हो गए हैं कि ये गाना सुनने का मन भी कर रहा है सबका।
2: जी सर,
1: है ना।
2: जी सर,
1: चलिए गाना सुनवाते हैं। यदुनाथ जी कॉल करने के लिए शुक्रिया आपका।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: जी हाँ, महंगाई से बहुत ही बुरा हाल हो रहा है हर किसी का। और अब मेरे पास जी 7376 80 40 90 नंबर मिलाकर पहुंच कौन गया जी, नाम बताइए अपना। मेरे भाई, मेरे दोस्त, रेडियो की आवाज़ अगर कम नहीं करेंगे ना, मुझे शोर नहीं आना चाहिए, तभी आपकी कॉल हम रेडियो पर दे पाएंगे। पहले अपना शोर वहाँ कम करिए जी। रेडियो बंद कर दिया आपने?
1: जी।
0: हाँ, अब बताइए अपना नाम।
1: अंश पांडे।
0: अंश पांडे, अभी कुछ देर पहले भी आपकी कॉल लगी थी और अचानक ड्रॉप हो गई। आप भी बहुत लकी हैं कि आपकी कॉल यहाँ दोबारा लग गई। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
1: खंडारसा जिला अयोध्या।
0: अच्छा जी, तो फिर आकाशवाणी अयोध्या के और कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: जी।
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं और? देखिए, आप मेरी बात को सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर आप बहुत शोर भी आपने रखा हुआ है, आसपास आपके लोग भी हैं। आप जब तक मेरी ओर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तक मेरी बात आप नहीं सुन पाएंगे। देखिए, इस तरह से फोन प्रोग्राम अब आप हेलो लो करते रहेंगे क्योंकि आप मेरी आवाज़ सुनेंगे नहीं, आपके आसपास इतना शोर हो रहा है वहाँ पर। तो स्टंट मैन का गाना आप हम सुनवा रहे हैं, ठीक है ना? कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया। और बताइए, आप करते क्या, किस क्लास में पढ़ते हैं?
1: नाइन्थ।
0: अगली बार जब कॉल लगाएंगे ना मेरे दोस्त, तो ऐसी जगह से कॉल लगाइएगा जहाँ पे शोर कम हो, वहाँ पे लोग कम हो, ठीक है ना? गाना सुनिए। शुक्रिया कॉल के लिए।

0: और अब जी हेलो अयोध्या में आधे से ज्यादा का सफर तय हो चुका है, 22:19:57 जी आइए, टाइम हम आपको 24 आवर वाला बता रहे हैं। अभी बजे हैं 10:20 और अब मेरे पास कॉल किसकी आ गई जी, नाम बताइए। हेलो जी, आप आ गए हैं रेडियो पर, नाम बताइए वहां से। हेलो,
1: हाँ जी सर।
0: हाँ जी बोलिए, अब आप रेडियो पर आ चुके हैं, मुझसे बातें करिए, बताइए कहाँ से कॉल लगाई आपने।
1: मैं आपको बताया सर, जमुना में बोल रहा हूँ।
0: जमुना जी बोल रहे हैं कहाँ, कटरा से?
1: कटरा से, हाँ जी सर।
0: तो आज आपकी कॉल लगी इस प्रोग्राम में, तो आपको अच्छा लग रहा है ना?
1: बहुत बढ़िया लग रहा है।
0: तो वहाँ करते क्या है कटरा में?
1: सर ऐसा है कि हम कुछ भी खेती बाड़ी कर रहे हैं।
0: जी जी, अच्छा ये बताइए, उधर उस साइड मैं भी गया हूँ, गोंडा नवाबगंज साइड पर, वहाँ पे तंबाकू की खेती बहुत ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता उधर?
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तंबाकू इधर ज्यादा होता है, हमारे कटरा से इधर आगे बढ़ाऊ जितना नवाबगंज रोड पर।
0: जी जी,
1: गोंडा रोड पर तंबाकू बहुत लगाते हैं इधर सर।
0: अच्छा सुनिए, जब तंबाकू की लोग खेती करते होंगे, जब वहाँ उसको चुनते होंगे, तो उनको भी नशा हो जाता होगा कि नहीं?
1: सर ऐसा उनका आदत पड़ गया, हम लोग तो करते नहीं है यहाँ।
0: हाँ वैसे मुंह नाक बांध लेना चाहिए। जी जी,
1: सरजू से सटे हुए सर कटरा से, उसे आगे हम लोग, हमारे यहाँ नहीं होता इधर।
0: अच्छा, तो वही मैंने कहा कि
1: वाले उनकी लोगों की आदत पड़ गई, जैसे कटरा से नवाबगंज की तरफ चले या बस की तरफ चले थोड़ा सा। हाँ तो इन लोगों की आदत पड़े, जहाँ लोग मुस्लिम की आबादी जहाँ ज्यादा है वो तम्बाकू के मतलब ज्यादा।
0: जी जी जी, एक चीज और होती है ना, अगर किसी चीज की आदत जब पड़ जाती है ना, तो लोगों को पता भी नहीं चलता फिर उसका।
1: हाँ सर, मतलब वही है सब। और तो हम लोगों को ऐसा है कि तंबाकू हमारे सामने आ जाती है, ठीक आने लगती है वैसे ही।
0: हाँ नशा देखिए, कोई भी हो वो करना अच्छा नहीं होता है, तो
1: हाँ जी सर।
0: वैसे गीतों का नशा बढ़िया है, इंटरटेनमेंट बढ़िया है।
1: अब जिसके लिए अच्छा है तो अच्छा ही है, हम हाँ। लोगों के लिए तो नहीं ठीक है।
0: जी जी, तो गाने सुनने से जो है मन बहल जाता है, थोड़ा सा आदमी टेंशन मुक्त हो जाता है थोड़ी देर के लिए, है कि नहीं?
1: हाँ जी हाँ जी सर, बस।
0: तो जमुना जी गाना
1: आप ये समझ ली, समझ लो आप सर कि हम छोटी मोबाइल से बात कर रहे हैं, छोटी मोबाइल हमारा सुबह 5:55 से चालू होता है।
0: अच्छा, तो बड़ा बड़ा कमाल,
1: हम अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए नहीं अच्छा लगता, घंटे के लिए लगा देते हैं चार्जिंग पर।
0: लेकिन एक चीज है, मोबाइल आपका,
1: हमारा मोबाइल बंद नहीं रहता की पहली या
0: सुनिए,
1: कोई भी प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, मोबाइल आपका छोटा है लेकिन बड़ा कमाल का है, बातें बहुत बढ़िया करा रहा है। है ना? तो आपको सुनवा रहे हैं राजा जानी फिल्म का गाना, क्योंकि एक आध कॉल हम और अटेंड कर लें, लोग इंतजार कर रहे होंगे अपनी बारी का भी।
1: देख लो सर,
0: शुक्रिया शुक्रिया।

0: जी हाँ, प्रोग्राम का वक्त बड़ी ही जल्दी अब बीत रहा है। बस 5 मिनट का वक्त मेरे पास और बचा हुआ है। और ये नंबर जी हाँ लगा किसने लिया जी? नाम बताइए अपना।
1: जी सर, अनुरावत।
0: अनुरावत, आपने कॉल मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार आपसे बातचीत हो चुकी है। कहाँ से कॉल लगाई आपने? हाँ हाँ, बदन कपूरवा से। बिल्कुल लास्ट में उस दिन भी बात हुई थी और आज भी आप बिल्कुल आखिर में आई हैं, है कि नहीं?
1: सर आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल हम आज का मतलब वो देख रहे थे स्टूडियो फोन में, तो हम बहुत खुश हो रहे कि सर आज हम फिर से हमारी आपकी बात हो रही है।
0: तो ये जो मैंने वहाँ पे वीडियो लगाई थी फेसबुक पे, वो भी आपने देखी है क्या? आज मैंने प्रोग्राम समरी की लगाई हुई है।
1: जी सर, हम बहुत खुश हैं वही देख कर।
0: अच्छा, शुक्रिया। देखिए तकनीक कितनी बदल गई है, मैंने भी बचपन में सोचा नहीं था कि रेडियो से जो बोलता है उनसे कभी हमसे बातें भी करे वो करेंगे आरजे, है ना?
1: जी सर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप रेडियो में कब से आए थे?
0: ये रेडियो आकाशवाणी फैजाबाद जब खुला यहाँ पर 17 जून 1993 में, मैं उसी साल में आ गया था। 26 अगस्त को मैंने पहली ड्यूटी यहाँ किया था।
1: जी सर,
0: मैं पहले पैनल से ही हूँ। 13 जुलाई को पैनल बना था यहाँ पर पहला अनाउंसर्स का।
1: जी सर,
0: तो हम लोग को तो एक अरसा हो गया।
1: सर हम बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि कल हमने आपकी तस्वीर देखी थी फोन में, आज हमारी बात हो रही है।
0: चलिए, मेरी रिकॉर्डिंग भी वहाँ बहुत सी पड़ी हुई है आरजे अमरजीत सिंह के नाम से यूट्यूब के ऊपर, तो ये रिकॉर्डिंग भी आप
1: देख रहे थे कल। हम ये सोच रहे थे कि आप किसी दिन आए, हमारी बात हो जाए एक बार।
0: चलिए, तो आज भी आपकी बात हो रही है। गाना आपने बताया कौन सा?
1: जी सर,
0: लैला मजनू का। अच्छा ये बताइए, आप पुराने गाने सुनने में ज्यादा आपको अच्छा लगता है क्या?
1: जी सर,
0: है ना? क्योंकि लोग तो, आप नए जमाने की हैं तो आपको तो नई फिल्में देखनी चाहिए, नए गाने सुनने चाहिए।
1: नहीं नहीं सर, हम पुराने ही शौकीन।
0: चलिए बढ़िया, क्योंकि पुराने गानों में
1: एक बात चली थी जो आपने आकाश सुनाई थी, उसमें जो बासी की धुन थी वो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। प्रयास कीजिएगा दोबारा वो सुनने को मिल जाए हमें।
0: किस प्रोग्राम में? युवाणी की बात कर रही हैं?
1: जी सर,
0: युवाणी में तो मैं प्रोग्राम करता ही नहीं हूँ, कोई और बोल रहा होगा।
1: नहीं सर, एक बार कोई मतलब सुनवाया था, जल्दी में सोमवार को सुनवाया गया था।
0: क्या क्या चीज थी?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा था।
0: क्या चीज थी वो?
1: जी सर,
0: चलिए ठीक है, फिर कभी आप बताइएगा, आप लिख दीजिएगा आपकी बात प्रोग्राम में।
1: हेलो सर
0: जी, बताइए
1: सर। ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो, हमारा कभी आपसे मुलाकात हो।
0: बिल्कुल, आप तो आकाशवाणी अयोध्या के पास ही हैं, कभी भी आइए, मंडे टू फ्राइडे हम लोग मिल सकते हैं आपको, आप आकाशवाणी भी घूम के जाइए, ठीक है?
1: जी सर,
0: शुक्रिया जी, आपका गाना पहुंचा रहे हैं क्योंकि बस 2 मिनट का मेरे पास और वक्त बचा है।
1: जी सर, थैंक यू सर,
0: थैंक यू।

बस आज के प्रोग्राम से अपने रेडियो मित्र अमरजीत को इजाजत दीजिए। आप सब हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन आपको इसी प्रोग्राम जिसका नाम है हेलो अयोध्या। कंट्रोल रूम से आज हमारे साथ थे इंजीनियर स्वप्निल मिश्रा। तो अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती मुंबई से कार्यक्रम ढलती जाए रात, जिसमें पुराने गाने आपको सुनवाए जा रहे हैं। और इसके पहले आपने आकाशवाणी फैजाबाद अयोध्या से हेलो अयोध्या लाइव फोन इन प्रोग्राम सुना। फिलहाल इस समय आप विविध भारती के प्रोग्राम सुन रहे हैं।

0: विविध भारती मुंबई से अभी आपने ढलती जायरात प्रोग्राम में सदाबहार पुराने गाने सुने। विविध भारती के कार्यक्रम अब सुबह 6:05 से रिले किए जाएंगे। यह आकाशवाणी का अयोध्या एफएम है। थोड़ी देर में दिल्ली से समाचार होंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में।
1: ढलती जाए रात।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय

परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।